0: And now shifting focus back home, the Ram Mandir donation theft row is refusing to die down with the political temperature rising by the day. The RSS, the Congress and now the RSS chief himself have all been drawn into the controversy. Hours after the RSS issued its first official statement on the alleged Chanda Chori, RSS chief Mohan Bhagwat was asked about the controversy. But instead of responding, he simply said, Ram Ram, and walked away without answering the questions. Earlier, the RSS had termed the alleged theft unfortunate, said that devotees' sentiments had been hurt, called for strict punishment for the guilty, and also urged the Ram Mandir Trust to address administrative shortcomings. The Congress, meanwhile, has now escalated its attack. Senior leader Digvijay Singh claimed that his own donation had been looted, said he would file a case in Ayodhya and ensure those responsible are sent to jail. The party has also demanded a Supreme Court monitored probe, saying an SIT is not enough, and has asked Prime Minister Narendra Modi to break his silence on the controversy.
1: प्रति आस्था को कुछ लोग धक्का पहुंचा रहे प्रति आस्था को कुछ लोग धक्का पहुंचा रहे प्रति आस्था को कुछ लोग धक्का पहुंचा रहे
2: ऐसे सब चोर और उनके गिरोह के लोग पहचाने जाने चाहिए पकड़े जाने चाहिए और जेल जाने चाहिए यह दूसरी बात कही है तीसरी बात की इस घटना से शिक्षा लेकर के जल्दी से जल्दी वहाँ की व्यवस्थाओं को मजबूत किया जाना एक पैसे की भी चोरी नहीं हो सके ऐसे सिस्टम्स करना अधिक से अधिक सुविधा मिले यात्रियों को इसकी व्यवस्था करना और वहाँ का वातावरण पवित्रता और आध्यात्मिकता का हो
3: चंपत राय जी जिस जिन्होंने की ट्रस्ट का पूरा करता धरता बनाया उन्होंने 10-10, 15-15 हजार रुपए माहवार के लोगों को नियुक्ति दी और हर दिन जितना चंदा आता था उसमें से 10-20% गड्डियां गायब कर दी जाती थी उसमें बैंक के अधिकारी कर्मचारी भी शामिल हो गए तो अब ये तो बड़ी एक हमारे आस्था पर भगवान राम की आस्था के प्रति कुठाराघात है
4: सबसे पहली बात तो है कि कार्रवाई करने से रोका किसको है उत्तर प्रदेश की पुलिस तो उत्तर प्रदेश की सरकार के अंतर्गत आती किसने रोका है किस लिए एसआईटी की रिपोर्ट को आप सार्वजनिक नहीं कर सकते मतलब मोदी जी जाकर संसद में खड़े होकर इस बात की घोषणा करते हैं कि नया राम मंदिर ट्रस्ट बना है लेकिन एसआईटी की जब उसी राम मंदिर ट्रस्ट के करप्शन की बात आती है तो एसआईटी रिपोर्ट को खुफिया बना दिया जाता है गोपनीय बना दिया जाता है चंपत राय पर एक एफआईआर दर्ज करने से कौन रोक रहा है तो कार्रवाई होनी चाहिए तो ये हवा में आप अंधेरे में तीर मार दें आप सोचे कि थोड़ी बहुत लीपापोती हो जाएगी और खासतौर से जो इन्हीं के अंधभक्त हैं जो अब निकल निकल कर आ रहे हैं और कह रहे हैं हमारी भावनाएं आहत हुई हैं उनको थोड़ा कहीं ना कहीं शांत करने का काम है पर बहुत महत्वपूर्ण बात यह है हिंदू विरोधी ताकत अगर कोई है तो वो लोग हैं जिन्होंने राम के नाम पर चोरी की चंदे की और चढ़ावे की क्योंकि हिंदुओं की आस्था के साथ कुठाराघात करने वाले इस वक्त सबसे बड़े हिंदू विरोधी हैं और शर्म की बात यह है कि वो भाजपा और आरएसएस के लोग ही नजर आ रहे हैं तो इस पूरे मामले को डिविएट करने के लिए एक डाइवर्जनरी टैक्टिक है कि आरएसएस चिट्ठी निकाल दे विनय कटियार कह दे कि मोदी जी के साथ कानाफूसी हुई है मेरी अरे काहे कानाफूसी कर रहे हैं मोदी जी आए मोदी जी एक राष्ट्र के नाम संदेश दें इस बार मन की बात नहीं इस बार धन की बात करें और बोले अपने मुंह से कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा
0: And some more news coming in. Samajwadi Party releases song on Ram Mandir donation theft row. Akhilesh Yadav shares, Kya phir se chale gaye vanvas song? And the song suggests that Lord Ram left Ayodhya over donation theft. So Chanda Chori Rao now sparks political war. The political war is now only intensifying with each passing day. And Akhilesh Yadav has posted this song targeting the Chanda Chori Rao. And this has been released by the Samajwadi Party on the Ram Mandir donation theft row. And the lyrics say that Kya phir se chale gaye vanvas? Ram, and this essentially suggests that Lord Ram left Ayodhya once again over the donation theft. Listen in.

0: So that's the video of the song that has been posted by the Samajwadi Party attacking the BJP government in the state over the donation theft row. My colleague Santosh Sharma is now joining us with more details on this. Santosh, jo politics hai wo badhti ja rahi hai. Samajwadi Party ne ek naya attack kiya ye gana release karke ki kya fir se chale gaye vanvas pe Ram. Lekin jo BJP ki taraf se attack aata hai wo sirf ek aata hai ki jis party ne kar sevako pe hamla kiya tha us party ko to is mudde par chup hi rehna chahiye.
1: बिल्कुल, समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर पॉलिटिकल कहा जाए कि बीजेपी के ऊपर अटैक करने के उद्देश्य से ही उसने ये गाना सोशल मीडिया पर वायरल किया है. सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये गाना पोस्ट किया है जिसमें क्या राम अयोध्या छोड़ चले जाएंगे, वनवास चले जाएंगे. लेकिन समाजवादी पार्टी के तमाम काउंटर अटैक के बीच में जब बीजेपी का काउंटर आता है कि राम मंदिर पर के कार सेवकों पर गोली चलाने वाली समाजवादी पार्टी है तो उस वो एक सबसे बड़ा हमला होता है और जिस हमले का अभी तक समाजवादी पार्टी जवाब नहीं दे पाई. लेकिन इस बात को जरूर ध्यान रखना होगा कि बीजेपी चाहे जितना बड़ा हमला करे 2022 के लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए अयोध्या में, समाजवादी पार्टी ने अयोध्या सीट को जीती, तो वो कहीं ना कहीं ये बता रही है कि लोगों के बीच में जो परसेप्शन है, जो मैसेज है, वो देने में समाजवादी पार्टी भले ही पीडीए के फॉर्मूले से या संविधान बदलने के फॉर्मूले से या फिर बीजेपी के तमाम पॉलिसीज को अटैक करने के फॉर्मूले से काउंटर कर पाई है. और बीजेपी को ये बात बहुत अच्छे से एहसास है कि 2022 के चुनाव में जो नतीजे आए और अब ये राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का ये मुद्दा है वो उसके लिए मुश्किलें खड़ी करेगा और समाजवादी पार्टी लगातार इसी तरीके से घेरने की कोशिश में लगी हुई है.
0: जी संतोष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारी के लिए. सो द पॉलिटिक्स हैज आल्सो बीन इंटेंसिफाइंग ओवर दिस मैटर बिकॉज देयर इज अ अपकमिंग इलेक्शन इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड हेंस द अटैक्स एंड द काउंटर अटैक्स. बट डिस्पाइट समाजवादी पार्टी एवरीडे अटैकिंग द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ओवर द डोनेशन थेफ्ट राउ, द बीजेपी इन इट्स डिफेंस हैज जस्ट वन पॉइंट ओवर विच इट हैज बीन अटैकिंग द समाजवादी पार्टी, दैट द पार्टी दैट अपोज्ड द राम मंदिर मूवमेंट दैट अटैक्ड द कार सेवक दैट वॉज अगेंस्ट द राम मंदिर मस्ट not speak on this issue, must remain silent because it has no right to question the party that actually backed the Ram Bhaks and backed the movement. Now shifting focus, we're getting some breaking news from Thailand where 8 Buddhist monks were killed in a road tragedy. 11-year-old driving pickup hits pilgrim monks. Over 20 have been injured in Thailand pilgrimage accident. We're showing you the visuals. And the monks were on foot during religious pilgrimage and the crash occurred in Thailand's Mukdahan province. 34 monks and five lay followers were in this pilgrimage group and the pickup truck plows into the group of Buddhist monks. The Thai officials have confirmed 8 deaths and over 20 have been injured in this accident. There you see, that's the queue of the pilgrim monks and there's a pickup that comes and in which 8 monks have been killed. This has been confirmed by the Thai officials and the pilgrimage was headed to Ubon Ratchathani Temple. The investigation is now underway into this fatal Thailand crash. So 8 Buddhist monks were killed and more than 20 injured after being hit by a pickup truck driven by an 11-year-old boy. Imagine an 11-year-old boy was driving this pickup truck and that is when this accident happened in which 8 monks have been killed who were on a pilgrimage in Thailand's northeastern province of Mukdahan and they were mauled through the monks and the victims were part of a group of 34 Buddhist monks and 5 lay followers undertaking a pilgrimage from one temple in Mukdahan province to another in neighboring Ubon Ratchathani province and now 8 have been killed. There you can see that's a queue of monks who are walking on the footpath and that is when a pickup which was being driven by an 11-year-old boy that comes. And then this fatal accident takes place in which 8 monks, which has been confirmed by the Thai officials, were killed. So this is being reported from Thailand. And these are some disturbing images. Viewer discretion is advised.
2: Yes,

0: Next Friday is my last working day. So I thought, before leaving, it's my duty to tell you all how to survive corporate without losing your mind.
1: A woman who recently resigned from her corporate job has gone viral after sharing practical advice on surviving office life without burning out.
0: Finished my last week very, very peacefully. Please. Thank you. Now I'm sharing my knowledge that I didn't get 2 years. Corporate rule number one. Take that damn leave. तुम्हें 24 छुट्टी दी है तुम्हारे कंपनी वालों ने तो लो सारी पेड लीव एक बार भी अपने दिमाग में ख्याल नहीं आने तो कि मैं ज्यादा छुट्टी तो नहीं लिया नहीं क्या करोगे छुट्टी का स्पेशली अगर वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रही है और ना उसका कैश में कन्वर्जन हो रहा है तो तुम्हें छुट्टी लेना बंद मतलब भाई फ्लोटर लीव भी नहीं छोड़नी है जो दो मिलते हैं फ्लोटर लीव तुम ईस्टर बनाओ तुम मुहर्रम बनाओ तुम दिवाली बनाओ वो फ्लोटर लीव भी लो वो पूछेंगे कि तुम क्यों बना रहे हो तुम तो अरे हमारा मन के हम बनाने लगे भाई थोड़ा शांत हो जाते हैं पहले रूल नंबर टू कॉर्पोरेट लैंग्वेज सीखो काम बाद में सीखा जा सकता है बट पहले तुम कॉर्पोरेट लैंग्वेज सीखोगे अगर तुमसे किसी ने पूछा कि इसका क्या प्रोग्रेस है क्या तुमने ये देखा कभी ये मत बोलना कि मुझे नहीं पता ये क्या बात है नो
1: Her relatable tips on boundaries, mental health and work-life balance resonated with professionals across social media.
0: मंद बुद्धि हो आइडिया ही नहीं है क्या बात कर रही हो Let me check and get back to you. Easy. बहुत सारे corporate keywords हैं. Tension मत लो. तुम बस comment section पूछो. मैं धड़ाधड़ लिख दूंगी. But it's a very important guys. बहुत जरूरी tip दे रहे हैं. कभी भी free नहीं दिखना है. ऐसे पूरे time. Game खेल रहे हो. खेलो आराम से. But free मत दिखो. कोई भी कहीं से भी सबकी नजरें तुम पे ही होती है कोई भी आके धड़ाम से आपको काम दे देगा और आप उधर गए रूल नंबर थ्री डांट आपको पड़ती रहे आप समझ लो कि आप एकदम एक्सेप्शनल वर्क नहीं कर सकते हैं ठीक है और अगर आपने कर भी दिया तब भी आपको डांट पड़ेगी डांट कॉन्स्टेंट बट आपको एक मोटा चमड़ा बचाना है एक कान से सुने दूसरे कान से देखो वो काम ठीक कर लो बट ध्यान मत दो बोलते रहेंगे वहाँ पे सब बोलते रहेंगे ऐसा नहीं कि भाई फ्राइडे को डांट पड़ा संडे तक रोना धोना नहीं भाई फ्राइडे को पड़ा उधर ही छोड़ा और आगे बढ़ो यही सब आपको खुश रखेगा वरना आपने सीरियसली लेना शुरू कर दिया इन कौड़ी के लोगों को तो आप कहे मेरी कंपनी के एचआर ने देख लिया तो समझ जाना मेरी नोटिस पीरियड हो गई है कम और हम जा रहे हैं अर्ली वेकेशन ओके बाय
1: An Indigo employee who is deaf and mute has touched hearts after a passenger praised his warm smile and seamless assistance at the baggage check-in counter.
2: और मैं इसलिए communicate कर रहा हूँ bro इनसे easily मैंने अपना होगा boarding pass भी दे दिया thank you.
1: The wholesome interaction highlighted professionalism, inclusion, and the power of communication beyond words.
2: Lovely yeah.
1: Gurugram-based chartered accountant has reignited the cost of living debate after explaining why earning 1 lakh rupees a month no longer feels financially comfortable. His detailed expense breakdown struck a chord with many middle-class professionals facing rising everyday costs.
3: A spectacular lightning strike hitting the Eiffel Tower during a powerful thunderstorm has gone viral across social media. While the dramatic visuals stunned viewers worldwide, experts explain that the iconic moment is specially designed to safely withstand such lightning strikes. A residential community in China's Shaanxi province has introduced a rooftop mist cooling system that lowers temperature by up to 8 degrees within minutes. The innovative technology has gone viral as an effective solution for tackling extreme summer heat. A 14-year-old boy in Paris has sparked outrage after multiple viral videos showed him spraying cyclists and police officers with a water pistol and allegedly pushing a woman into a canal. The incident has triggered political debate and widespread criticism online. An e-rickshaw driver was allegedly forced to push his vehicle for nearly 3 kilometers after pranksters remotely disabled it using a mobile app. The viral incident sparked anger online, with users condemning content creators for targeting hard-working drivers for entertainment. Alia Bhatt and Sharvari have set social media buzzing after teasing songs from their upcoming film Alpha during road appearances in Mumbai and Jaipur.

0: And now shifting focus back home, the Ram Mandir donation theft row is refusing to die down with the political temperature rising by the day. The Congress, the RSS, and now the RSS chief himself have all been drawn into the controversy. Hours after the RSS issued its first official statement on the alleged Chanda Chori, RSS chief Mohan Bhagwat was asked about the controversy. But instead of responding, he simply said, Ram Ram, and walked away without answering the questions. Earlier, the RSS had termed the alleged theft unfortunate, said that devotees' sentiments had been hurt, called for strict punishment for the guilty, and urged the Ram Mandir Trust to address the administrative shortcomings. The Congress has now escalated its attack. Senior leader Digvijay Singh claimed that his own donation had been looted, and he said that he would file a case in Ayodhya and ensure that those responsible are sent to jail. The party has also demanded a Supreme Court monitored probe, saying that an SIT is not enough, and has also asked the Prime Minister to break his silence on the controversy.
1: प्रति आस्था को कुछ लोग धक्का पहुंचा रहे प्रति आस्था को कुछ लोग धक्का पहुंचा रहे प्रति आस्था को कुछ लोग धक्का पहुंचा रहे
2: सब चोर और उनके गिरोह के लोग पहचाने जाने चाहिए पकड़े जाने चाहिए और जेल जाने चाहिए यह दूसरी बात कही तीसरी बात कि इस घटना से शिक्षा लेकर के जल्दी से जल्दी वहाँ की व्यवस्थाओं को मजबूत किया जाना एक पैसे की भी चोरी नहीं हो सके ऐसे सिस्टम्स करना अधिक से अधिक सुविधा मिले यात्रियों को इसकी व्यवस्था करना और वहाँ का वातावरण पवित्रता और आध्यात्मिकता का हो
3: चंपत राय जी जिस जिन्होंने की ट्रस्ट का पूरा कर्ता धरता बनाया उन्होंने 10-10, 15-15 हजार रुपए माहवार के लोगों को नियुक्ति दी और हर दिन जितना चंदा आता था उसमें से 10-20% गड्डियां गायब कर दी जाती थी उसमें बैंक के अधिकारी कर्मचारी भी शामिल हो गए तो अब ये तो बड़ी एक हमारे आस्था पर भगवान राम की आस्था के प्रति कुठाराघात है
4: सबसे पहली बात तो है कि कार्रवाई करने से रोका किसको है उत्तर प्रदेश की पुलिस तो उत्तर प्रदेश की सरकार के अंतर्गत आती किसने रोका है किस लिए एसआईटी की रिपोर्ट को आप सार्वजनिक नहीं कर सकते मतलब मोदी जी जाकर संसद में खड़े होकर इस बात की घोषणा करते हैं कि नया राम मंदिर ट्रस्ट बना है लेकिन एसआईटी की जब उसी राम मंदिर ट्रस्ट के करप्शन की बात आती है तो एसआईटी रिपोर्ट को खुफिया बना दिया जाता है गोपनीय बना दिया जाता है चंपत राय पर एक एफआईआर दर्ज करने से कौन रोक रहा है तो कार्रवाई होनी चाहिए तो एक हवा में आप अंधेरे में तीर मार दें आप सोचे कि थोड़ी बहुत लीपापोती हो जाएगी और खासतौर से जो इन्हीं के अंधभक्त हैं जो अब निकल निकल कर आ रहे हैं और कह रहे हैं हमारी भावनाएं आहत हुई हैं उनको थोड़ा कहीं ना कहीं शांत करने का काम है पर बहुत महत्वपूर्ण बात यह है हिंदू विरोधी ताकत अगर कोई है तो वो लोग हैं जिन्होंने राम के नाम पर चोरी की चंदे की और चढ़ावे की क्योंकि हिंदुओं की आस्था के साथ कुठाराघात करने वाले इस वक्त सबसे बड़े हिंदू विरोधी हैं और शर्म की बात यह है कि वो भाजपा और आरएसएस के लोग ही नजर आ रहे हैं तो इस पूरे मामले को डिविएट करने के लिए एक डाइवर्जनरी टैक्टिक है कि आरएसएस चिट्ठी निकाल दे विनय कटियार कह दे कि मोदी जी के साथ कानाकूसी हुई है मेरी अरे काहे कानाकूसी कर रहे हैं मोदी जी आए मोदी जी एक राष्ट्र के नाम संदेश दें इस बार मन की बात नहीं इस बार धन की बात करें और बोले अपने मुंह से कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा
0: So as the investigation intensifies, so is the politics also with each passing day. The Congress has been attacking the Uttar Pradesh government and also the Prime Minister, questioning his silence on the controversy. The Congress is seeking that Prime Minister must speak on this alleged donation theft at the Ram Mandir. In fact, the RSS chief Mohan Bhagwat was also asked about this controversy, to which he did not speak on the controversy. He just said, Ram, Ram. Remember, this happened just hours after RSS had issued a statement on this alleged theft, and the RSS said that there should be thorough investigation, and it also termed the alleged theft as unfortunate, and it said that devotees' sentiments had also been hurt, and it called for strict punishment for the guilty, and also urged the Ram Mandir Trust to address the administrative shortcomings. Well, it's not just the Congress party that's attacking the BJP, but also the Samajwadi party, which has now released a song on the alleged donation theft, which essentially says that Lord Ram has again left from Ayodhya. He's left for Vanvas because of this alleged theft at the Ram Mandir. So that's essentially what Samajwadi Party is attacking the BJP. But the BJP has been countering all the attacks by the Samajwadi Party, saying that Samajwadi Party is the party that in fact had attacked and opened fire on the Kar Sevaks and was against the Ram Mandir movement. With that, it's a wrap on this bulletin. Thank you for watching India Today. More news and updates will continue on the other side.
5: You are watching India Today.
6: A burst pipe. A dead water heater. The AC calling it quits. Who do you call? HomeServe is an easy way to handle unexpected home repairs with plans covering stuff basic homeowners insurance usually won't. Instead of scrambling for a contractor, you make one call to get the repair process started. Join the millions of customers who trust HomeServe right now. Go to homeserve.com/audio for 50% less your first year. That's homeserve.com/audio. Savings compared to renewal price void in Florida.
7: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.

0: Welcome to the Dangal.
1: After a thunderous opening weekend, the Akshay Kumar starrer has officially stormed past the 100 crore mark at the worldwide box office. Directed by Ahmed Khan, the film has collected 8.50 crore net on its first Monday, taking its worldwide gross collection past the 100 crore milestone. The film also continued to perform well in international markets.
2: Our film army wali. और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है
3: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या
1: Interestingly, its total overseas gross has climbed up to 19.95 crore, pushing the film's worldwide gross collection to an impressive 106.48 crore in just 4 days.
4: ये आजादगंज को आजाद कराने आए हैं
5: अपने घर
6: इसको कच्चा रोल दे दिया तो हमें खा जाएगी
7: अरे वो पुरानी चावल है
8: मैं किस लिए फिल्म में
7: ग्लैमर
9: क्लाइमेक्स शूट कर ले क्या
10: तो कैसे करेंगे विलन चाहिए गुंडे चाहिए कहाँ से लाएंगे
11: इनको असलियत बतानी पड़ेगी
1: द बॉक्स ऑफिस जर्नी बिगैन विद 3.75 करोड़ नेट फ्रॉम पेड प्रीव्यूज followed by a solid 15.25 crore on its opening day. The momentum only gathered pace thereafter. Collections jumped to 20 crore on Saturday, while Sunday emerged as the film's biggest day, raking in an impressive 24.75 crore net.
12: बोला था तुम मेरे को वो देगा
13: क्या
12: अरे वो जो पिक्चर में हीरो को देता है
14: हीरोइन
15: अरे कैसी बात कर रहे हो ना ये पूरी फैमिली फिल्म है
12: नहीं रे ऐसा बोला ही नहीं मैं
16: वो क्या होता है जो कुएं के पास होता है ना
17: प्यासा
16: अरे प्यासा तो इधर है यार कुएं के ऊपर ऐसा रहता ना झुक के
17: घोड़ा
16: वे घोड़ा नहीं बे गधे वे बाल्टी मार के दूंगा तुम लोगों को
17: अरे यार जो तेरे हाथ में है वो यार
16: अन्ना बाल्टी
17: अरे बाल्टी थी
16: कब से बाल्टी बोल रहा हूँ कोई समझ ही नहीं रहा
1: डायरेक्टेड बाय अहमद खान वेलकम टू द जंगल इज द थर्ड इंस्टॉलमेंट इन द पॉपुलर वेलकम फ्रेंचाइज
18: लोगों की माँ बहन होती है आपकी बाप बहन हो गई है अब अच्छे खानदान का शरीफ लड़का कहाँ से मिलेगा
19: अपन पे जो हार्ट डालता है अपन उसकी फाड़ डालता है
1: द स्टोरी फॉलोज अ क्वर्की मिक्स ऑफ गैंगस्टर्स क्रिमिनल्स एंड एक्सेंट्रिक कैरेक्टर्स हुज लाइव्स कोलाइड इन अ जंगल नियर द बॉर्डर
12: कि हम लोग असली आर्मी वाले नहीं है
16: हमें जाने दो मालिक हम तो भांड है रोजी रोटी के लिए काम करते हैं
7: तेरी शक्ल कहीं देखी हुई है
16: आप फ्लॉप फिल्म में भी देखते हो
1: However, what begins as an operation resembling a film shoot soon snowballs into a series of chaotic adventure filled with comedy, action and confusion. The ensemble cast features Akshay Kumar, alongside Sunil Shetty, Disha Patni, Jacqueline Fernandez, Arshad Varsi, Jackie Shroff, Paresh Rawal, Raveena Tandon, Lara Dutta, among others in pivotal roles. Entertainment Bureau, India Today.
20: Trailer khatam.
21: Ash absolutely owns the screen in Toxic, a fairy tale for grown-ups, bringing unmatched intensity and control. Backed by a powerhouse ensemble, this trippy, high-octane thriller masterfully blends action, suspense, and style, cementing Yash's cinematic dominance. Take a look.
22: It's over. When I say it's over.
23: It's dark, it's trippy, and badass to say the least. Yash makes a striking entrance as Raya in Toxic, a fairy tale for grown-ups. Commanding every frame with confidence, intensity and authority. From his very first appearance, Raya sets the tone for a high-octane, gripping drama, moving not as a character seeking validation, but as one in complete control.
0: Daddy's home.
23: Set against visually striking backdrops that seamlessly blend suspense and action, the film delivers a cinematic experience that keeps audiences on edge. The ensemble cast adds depth and nuance to the story, featuring Kiara Advani as Nadia, Huma Qureshi as Elizabeth,
8: fighting for her scraps of devotion,
23: Nayantara as Ganga, Tara Sutaria as Rebecca, and Rukmini Vasan as Melissa.
9: Ladies and ladies, Wabavre Bartira, Vattak Bartira.
23: Each bringing their own flair to the film's high-stakes narrative. Directed and co-written by Geetu Mohandas alongside Yash, Toxic was simultaneously shot in Kannada and English. With dubbed versions in Hindi, Telugu, Tamil, Malayalam and several other languages, reflecting its global ambition.

0: stealing the donations. So details regarding the interrogation of Avinash Shukla have now emerged. And during the interrogation, Avinash Shukla was shown the CCTV footage covering 45 days of thefts, after which he broke down. The moment he saw himself stealing money in the CCTV footage, and he also admitted to habitually stealing from the temple offerings, and so he has finally admitted that yes, he stole the donations. In fact, he also revealed how he had purchased a Brezza car in his brother's name using the stolen donation money. He bought the car in his brother's name, who is a government teacher, to avoid raising any suspicion. And as soon as the theft came to light, he had the Brezza car moved to his home in Pratapgarh. So it was then moved from Ayodhya to Pratapgarh. And remember, Avinash Shukla was arrested, and his brother Abhishek Shukla was also questioned during the police custody remand. And my colleague Santosh Sharma is now joining us with more details on this. Santosh, ek bahut bada update samne aa raha hai. Avinash Shukla ne ye maan liya hai ki haan, usne paise churaye the aur inhi churaye hue paiso se Brezza car bhi kharidi thi.
1: बिल्कुल, अविनाश शुक्ला ने माना, लेकिन ये बहुत आसानी से नहीं माना. 13 घंटे के पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान पहले तो वो कहता रहा कि नहीं, वो पैसे नहीं चुरा रहा था. लेकिन जब पुलिस ने उसको 45 दिनों के वो सीसीटीवी दिखा, जब उसने चोरी की और एक एक दिन के सीसीटीवी दिखाया कि ये तब जाकर के वो टूटा, उसको पता चल गया कि पुलिस के पास सबूत है. और उसके बाद उसने तमाम कहानियां सामने ला दी. इसके साथ ही उसने बताया कि वो कैसे दसूरी करते थे, वो एक सुनसान इलाके में जाकर मीटिंग करते थे. सभी को पता, सबसे बड़ी बात, 13 घंटे की पीसीआर के दौरान अविनाश शुक्ला ने कहा कि सभी को पता था कि कौन कैसे चोरी कर रहा है. यानी कि सारे लोग मिले हुए थे, सभी लोग चोरी कर रहे थे और एक सुनसान इलाके में ये लोग मीटिंग करते थे. अविनाश शुक्ला ने चोरी की रकम से अपने बड़े भाई अभिषेक के नाम पर एक सेकेंड हैंड Brezza कार भी खरीदी थी. कहा जाए कि चोरी की रकम से इसमें अभिषेक के नाम पर ये Brezza कार इसलिए खरीदी ताकि अभिषेक चूंकि सरकारी टीचर, उस पर शक ना हो. ये तमाम बातें सामने आई हैं पुलिस 13 घंटे के पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान, और अब पुलिस आगे की कार्रवाई करने में जुट गई है.
0: जी, संतोष हमारे साथ बने रहिए. सो दैट्स द लेटेस्ट दैट्स कमिंग इन. अविनाश शुक्ला, हु इज वन ऑफ द अक्यूज्ड आउट ऑफ द 8 अक्यूज्ड हु हैव बीन अरेस्टेड, ही इज फाइनली एडमिटेड दैट यस, ही स्टोल द डोनेशंस. एंड दिस वाज आफ्टर, दिस कन्फेशन केम आफ्टर ही वाज शोन द सीसीटीवी फुटेजेस इन व्हिच इट वाज क्लियरली विजिबल दैट ही वाज स्टीलिंग द डोनेशन मनी. एंड बेस्ड ऑन अविनाश शुक्लाज इन्फॉर्मेशन, अयोध्या पुलिस हैव ऑल्सो रिकवर्ड द Brezza कार. इंडिया टुडे गेट्स यू दिस ग्राउंड रिपोर्ट ऑफ द मोमेंट द कार वॉज सीज्ड. टेक अ लुक.
2: In Ram Mandir donation theft case, now the Ayodhya police has recovered a vehicle which is owned by one of the main accused, Avinash Shukla brother Abhishek. This is the Brezza car number UP42AP6054, which has been recovered by the Ayodhya police during the police custody remand of 13 hours. During this PCR, Ayodhya police interrogated Avinash Shukla and also done a search operation, or we can say the identification of those places which are connected by this whole incident, and two places were identified. And after the interrogation, police has recovered this vehicle. This is the Brezza car, and which is owned by Abhishek Kumar. This is the second-hand car, but the police sources claim this car was purchased by that donation theft money which was used by Avinash Shukla, and this is the, he is the main accused from whom earlier Ayodhya police recovered the maximum cash of more than 20 lakhs. With camera person Sandeep, this is Santosh Kumar for India Today.
0: In fact, some more news coming in on this story. It has now been revealed the Mandir Chanda Chori split formula is now out and open. There has been a massive revelation by accused Avinash Shukla during the interrogation. The donation theft money was shared equally by all the accused. Avinash reveals that there was a money sharing formula that was in place. The police say that Tinnu Yadav called the shots. So Tinnu Yadav, remember, the close aide of Champat Rai, he called the shots, and the accused had no fear as they knew the CCTV was to be deleted, and hence the alleged theft went on, and without any fear, because they were sure that CCTV was to be deleted, and hence there will be no proof to prove the robbery. In fact, the stolen cash was used to buy SUV and also build house. This has been admitted by Avinash Shukla himself. And Shukla's kin also got share of the stolen cash. That is his brother, Abhishek Shukla. And the CCTV tampering was to cover up this alleged theft. And now the probe shows that a control room used to erase the evidence, and that is exactly why this theft continued for so long, because they knew that the CCTV footage will be deleted. There will be no evidence to show the theft, and the cops are now probing the CCTV deletion bit also, and the police are saying that some CCTV footages were deleted. My colleague Santosh Sharma continues to stay with us. Santosh, so it has now been revealed that there was a मनी शेयरिंग फॉर्मूला, और ये भी सामने आ चुका है कि जो पैसा चुराया जाता था वो सब में बांटा जाता था, सब के सब मिले हुए थे.
1: बिल्कुल, सब के सब मिले थे. इनका एक मनी शेयरिंग फॉर्मूला इन लोगों ने बना लिया था कि जिसका जो पैसा कौन कैसे चुराया गया, एक दूसरे की ना सिर्फ छिपाते थे बल्कि मदद भी करते थे. और ये धड़ल्ले से चोरी इसलिए कर रहे थे क्योंकि इनको ये पता था कि सीसीटीवी 45 दिन के बाद डिलीट कर दिया जाता है, और यही वजह है कि इस पूरे मामले में जो काउंटिंग रूम था, जिसकी जिम्मेदारी सीसीटीवी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी जो रेडियो मेंटेनेंस ऑपरेटर अर्जुन देव था उसके ऊपर थी, और एसआईटी ने भी अर्जुन देव की भूमिका के ऊपर सवाल खड़े किए, और जिसको अब ट्रांसफर कर दिया गया है, और ये सबसे और गोरखपुर ट्रांसफर कर दिया गया, हटा दिया गया है. तो ये कहा जाए कि इस पूरे मामले में एसआईटी की रिपोर्ट ने पहले ही कहा था कि इसमें सर्विलेंस, इसमें सिक्योरिटी मेजर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया, जिसकी वजह से इन लोगों को भी मौका मिला, जितने भी आरोपी हैं, कि ये अपने न सिर्फ चोरी को करते रहे बल्कि एक दूसरे की मदद भी कर रहे थे. और अब जब अविनाश शुक्ला की पुलिस कस्टडी रिमांड में, तमाम खुलासे हो रहे हैं कि ये सारे लोग मिले हुए थे, एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे के साथ मिलकर ये चोरी करते थे, अभी ये साफ हो चुका है.
0: जी संतोष, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये भी उठता है कि ट्रस्ट क्या कर रहा था, क्योंकि जब इतने धड़ल्ले से चोरी हो रही थी, सीसीटीवी फुटेजेस डिलीट करी जा रही थी, और ये चोरी इतने टाइम से कंटिन्यू हो रही थी बिना किसी डर भय के, और सब में आपस में बट भी रहा था, सबको पता था कि कौन क्या कर रहा है, तो ट्रस्ट क्या कर रहा था?
1: ट्रस्ट सिर्फ चंदा ले रहा था और कुछ नहीं कर रहा था. चंदे की अगर रखवाली की बात है वो नहीं कर पाया, और यही वजह है कि धड़ल्ले से चोरी हो रही थी. जो सेफ्टी मेजर्स हैं, जो बेसिक सेफ्टी मेजर्स हैं किसी भी वैल्यूएबल जगह पर जाने के लिए, कि जो भी व्यक्ति वहां पर जाएगा वो एक नो पॉकेट ड्रेस में जाएगा जिसमें कोई पॉकेट नहीं होगी, ये लोग घरेलू ड्रेस में जाते थे, घरेलू ड्रेस में ही आ जाते थे. इनकी कोई चेकिंग फ्रिस्किंग नहीं होती थी, ना जाते समय ना आते समय. तो आप ये बेसिक रिक्वायरमेंट जब कर रहा था, ट्रस्ट निगरानी रखने में फेल हो गया. जो काउंटिंग रूम था उसकी जिम्मेदारी उन्होंने एक रिटायर्ड अधिकारी, बैंक कर्मचारी सुभाष चंद्र श्रीवास्तव को दे दी. बैंक के साथ एमओयू करके ट्रस्ट बैठ गया कि अब सब बैंक संभालेगा. बैंक ने सिक्योरिटी वालों को ये जिम्मेदारी दे दी. सिर्फ बर्डन ट्रांसफर हुआ, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उसको ट्रांसफर किया गया. कोई अपना काम सही ढंग से नहीं किया, जिसकी वजह से ये चोरी हुई और लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ.
0: बिल्कुल संतोष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारी के लिए. सो इट हैज नाउ बीन रिवील्ड दैट देयर वाज अ प्रॉपर मनी शेयरिंग फॉर्मूला. इन फैक्ट द मनी दैट वाज स्टोलन फ्रॉम द राम मंदिर यूज्ड टू बी शेयर्ड इक्वली अमंग ऑल द अक्यूज. एवरीवन वाज अवेयर ऑफ ईच अदर्स रोल. दे वर वेरी मच अवेयर ऑफ दिस अलेजेड थेफ्ट फ्रॉम द डोनेशंस. एंड इन फैक्ट दिस वेरी मच हाईलाइट्स हाउ द ट्रस्ट ऑल्सो फेल्ड इन इंश्योरिंग द प्रॉपर प्रोसेस. देयर वर नो सिक्योरिटी चेक्स दैट वर बीइंग कंडक्टेड, नो फ्रिस्किंग दैट वाज बीइंग डन ऑफ दीज काउंटिंग ऑफिशियल्स. So the Ram Mandir donation theft row is refusing to die down, with the political temperature rising by the day. The Congress, the RSS and now the RSS chief himself have all been drawn into the controversy. As the probe in the matter intensifies, the key accused, Avinash Shukla, has confessed to the crime after police showed him CCTV footage of the theft. The accused bought a car with stolen money and also told the police that all the accused knew each other and held a meeting at 14 Kosi Parikrama Marg to distribute the looted money. Hours after the RSS issued its first official statement on the alleged Chanda Chori, RSS Chief Mohan Bhagwat was asked about the controversy. But instead of responding, he simply said, Ram Ram and walked away without answering the questions. Earlier, the RSS had termed the alleged theft unfortunate. It said the devotee's sentiments had been hurt. It also called for strict punishment for the guilty and also urged the Ram Mandir Trust to address the administrative shortcomings. The Congress has now escalated its attack. Senior leader Digvijay Singh claimed that his donation had been looted. He said that he would file a case

0: in Ayodhya and ensure that those responsible are sent to jail.
1: प्रति आस्था को कुछ लोग धक्का पहुंचा रहे प्रति आस्था को कुछ लोग धक्का पहुंचा रहे प्रति आस्था को कुछ लोग धक्का पहुंचा रहे
2: ऐसे सब चोर और उनके गिरोह के लोग पहचाने जाने चाहिए पकड़े जाने चाहिए और जेल जाने चाहिए यह दूसरी बात कही है तीसरी बात की इस घटना से शिक्षा लेकर के जल्दी से जल्दी वहाँ की व्यवस्थाओं को मजबूत किया जाना एक पैसे की भी चोरी नहीं हो सके ऐसे सिस्टम्स करना अधिक से अधिक सुविधा मिले यात्रियों को इसकी व्यवस्था करना और वहाँ का वातावरण पवित्रता और आध्यात्मिकता का हो
3: चंपत राय जी जिनको की ट्रस्ट का पूरा कर्ता धरता बनाया उन्होंने 10-10, 15-15 हजार रुपए माहवार के लोगों को नियुक्ति दी और हर दिन जितना चंदा आता था उसमें से 10-20% गड्डियां गायब कर दी जाती थी उसमें बैंक के अधिकारी कर्मचारी भी शामिल हो गए तो अब ये तो बड़ी एक हमारे आस्था पर भगवान राम की आस्था के प्रति कुठाराघात है
4: हिंदुओं की आस्था के साथ कुठाराघात करने वाले इस वक्त सबसे बड़े हिंदू विरोधी हैं और शर्म की बात यह है कि वो भाजपा और आरएसएस के लोग ही नजर आ रहे हैं तो इस पूरे मामले को डिविएट करने के लिए एक डाइवर्जनरी टैक्टिक है कि आरएसएस चिट्ठी निकाल दे विनय कटियार कह दे कि मोदी जी के साथ कानाकूसी हुई है मीडिया अरे काहे कानाकूसी कर रहे हैं मोदी जी आए मोदी जी एक राष्ट्र के नाम संदेश दें इस बार मन की बात नहीं इस बार धन की बात करें और बोले अपने मुंह से कि निर्मल मन जल सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा
0: And amid the ongoing probe, Akhilesh Yadav has now taken a dig at the Chanda Chores and released an AI video song. Listen in.

0: alleged donation theft row at Ram Mandir. Now, the SIT has intensified probe. SIT probes the melted gold angle in the theft case. So, as per SIT, jewellery may have been melted into gold biscuits. Raids yield no stolen jewellery. Investigators deepen the gold trail probe. So, SIT is questioning the temple officials over the gold-silver donation records. And the records of jewellery and valuables and mint transactions are now under scanner. SIT is seeking the details of metals which were sent to banks and government mint for processing. The trust's gold, silver stock records have now come under investigation. The SIT flags lack of detailed gold, silver inventory in the trust meetings. 944 kg silver sent to government mint for inspection and melting, as per sources. And trust had earlier disclosed receipt of 20 kg gold and 13 quintals silver in donation. So now the lens is on the gold and silver donation. Now what has been suspected is that it must have been melted and it must have been turned into gold biscuits, because so far they have not been able to find the jewellery. And now the gold trail probe is deepening. SIT is questioning the temple officials over the gold and silver donation records, because the records of jewellery and valuables and mint transactions are now under scanner. And remember, this comes after the accused, Avinash Shukla, who's one of the eight accused. He has also confessed that, yes, he was part of stealing the donations. He has confessed that he stole the donations. And in fact, this was a process that went on for very long, because they had no fear, because they were sure that the CCTV footages will be deleted. And in fact, everyone knew about what was happening, and they all knew who was doing what. And in fact, everyone used to get equal share of the money that was stolen. And now what we're learning is that the lens is also on the gold and silver that has been stolen. Santosh Sharma, my colleague, now joins us with the latest. Santosh, ab ye bhi samne aa raha hai ki jo sona aur chandi chori hua tha, uska kuch ata pata nahi mil pa raha, jis pe ki ye kaha ja raha hai ki shayad usko biscuits mein pigla ke biscuit mein turn kar diya, aur isliye uska kuch pata nahi chal pa raha hai, aur kya jankari mil rahi hai?
1: देखिए, एसआईटी की जांच का जो दायरा है वो 15 दिन बढ़ा दिया गया। उसके बाद से जब दान में जो कैश चोरी का मामला तो आया ही, लेकिन कई लोग ऐसे थे जिन्होंने उस डोनेशन बॉक्स में ज्वेलरी भी डाली। ऐसे में जो ज्वेलरी जाती थी, तो जो एसओपी बनाई गई राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से भी, कि जो ज्वेलरी इकट्ठा हुई या ज्यादा ज्वेलरी इकट्ठा हुई तो उसको पिघला करके उसको बिस्किट्स में कन्वर्ट किया जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो बिस्किट्स और में कन्वर्ट किया जा रहा था, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, लेकिन वो बिस्किट कितने की ज्वेलरी, कितने लोगों की ज्वेलरी पर ये बनाया गया, इसका कोई हिसाब किताब भी अब एसआईटी तलाश रही है। तो गोल्ड और सिल्वर के बिस्किट्स बनाने की बात तो सही है, और जो राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा भी एसओपी बनाई गई थी, लेकिन वो ज्वेलरी कितनी डोनेशन में आई और उस ज्वेलरी के डोनेशन में जो आई उसको कन्वर्ट किया गया कि नहीं, या फिर इन लोगों के द्वारा चोरी कर लिया गया, क्योंकि अविनाश शुक्ला के पास से कुछ पैसा भी बरामद हुआ, और पैसे के साथ साथ 20 लाख रुपए से ज्यादा के साथ साथ डॉलर और सोने चांदी के जेवरात बरामद हुए। यानी कि जो डोनेशन बॉक्स में सोने चांदी के जेवरात डाले जा रहे थे वो इनके द्वारा चोरी किए गए। तो ऐसे में सवाल उस ज्वेलरी पर भी है जो डोनेशन बॉक्स में डाली जा रही थी। तो वो डोनेशन बॉक्स में डाली गई ज्वेलरी टोटली ब्रिक्स में कन्वर्ट कर ली गई, बिस्किट्स में कन्वर्ट कर ली गई, या उसमें से भी एक बड़ा हिस्सा चोरी किया गया है, यह भी एसआईटी इस मामले में जांच कर रही है।
0: लेकिन संतोष, अगर इसका कोई प्रॉपर रिकॉर्ड ही नहीं है कि कितना सोना या चांदी गायब हुआ, कितना चढ़ाया गया था, तो एसआईटी कैसे पता लगाएगी? क्योंकि ये ज्वेलरी भी अब पिघला के बिस्किट्स में कन्वर्ट कर दी गई है, तो इसका पता कैसे चलेगा कि कितना सोना या चांदी चुराया गया है?
1: देखिए, ट्रस्ट की तरफ से कहा गया कि जो ज्वेलरी, जो भी ऑर्नामेंट्स या अगर मेटल फॉर्म में किसी ने डोनेट किया तो उसकी लिखा पड़ी हुई है। सवाल उठाए गए एक काक भुसुंडी, जो एक कहा जाए कि एक जो चांदी का दिया गया था, तो वो उसके बारे में चोरी भी की बात सामने आई, लेकिन उसको ट्रस्ट की तरफ से सामने लाया गया कि नहीं, वो है प्रतिमा जो काक भुसुंडी की, वो रखी हुई है। तो ऐसे में जो छोटे ज्वेलरी जिनको कन्वर्ट किया गया उसका हिसाब अब ट्रस्ट को देना है। 5 साल का जो ऑडिट करवाया गया ट्रस्ट के द्वारा, उस ऑडिट का भी ऑडिट कर रही है एसआईटी कि जो ऑडिट में जो चीजें शामिल की गई वो सफिशिएंट थी कि नहीं, उनके पास डॉक्यूमेंट थे कि नहीं, जो ज्वेलरी को कन्वर्ट भी किया गया तो उसका डॉक्यूमेंटेशन हुआ कि नहीं। यही तमाम चीजें हैं जो एसआईटी अब खंगाल रही है, तलाश रही है, पूछताछ कर रही है। जी
0: जी संतोष, हमारे साथ बने रहिए। सो दैट्स द लेटेस्ट दैट्स कमिंग इन, द लेंस इज नाउ ऑन द गोल्ड एंड सिल्वर डोनेशंस आल्सो बिकॉज देयर इज नो प्रॉपर रिकॉर्ड दैट एग्जिस्ट एंड सो द एसआईटी इज नाउ प्रोबिंग द ज्वेलरी एंगल आल्सो। सम मोर न्यूज कमिंग इन ऑन द स्टोरी। In fact, now donation deposit spike deepens the Ram Temple theft probe. SIT probes the 6 to 8 lakh daily donation shortfall. The daily deposits have jumped to 24 to 26 lakh rupees after the theft revelation. So as per sources, the pre-theft deposits stood at somewhere around 16 to 18 lakh per day. And after this alleged theft was reported, after that, the deposits have been reported and it has jumped to somewhere around 24 to 26 lakh after this revelation of the theft. So SIT is now suspecting that there was a daily diversion of approximately 6 to 8 lakh rupees before the case surfaced. Every day, 6 to 8 lakh rupees were being stolen from the donations. 10 bank officials, including SBI manager, have also been questioned by the SIT. The bank records, the transaction documents have been seized for examination. And as per sources, SIT is scrutinizing the suspicious role of 2 to 3 individuals. In fact, the financial trail now emerges as key focus of the Ram Temple theft probe. My colleague Santosh Sharma continues to stay with us. Santosh, बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि जो donations हैं उनमें एक बहुत बड़ा इजाफा देखने को मिला है। जब से ये केस चोरी का केस सामने आया तब से 6 से 8 लाख रुपए ज्यादा donations में रिकॉर्ड होने लग गए। तो क्या इसका ये मतलब है कि इससे पहले भी 6 से 8 लाख रुपए रोज चोरी किए जा रहे थे डोनेशन से और इसलिए वो जो डोनेशन रिकॉर्ड हो रहा था वो कम हो रहा था?
1: देखिए, ये अभी कह पाना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर है इस समय पर जो इतने दिनों से हम अयोध्या में हैं तो लोगों का कहना है कि फुटफॉल पे डिपेंड करता है। श्रद्धालु इस समय, गर्मी की छुट्टियां हैं, आसपास के लोग हैं, अपने बच्चों को लेकर के आ रहे हैं, टूरिस्ट प्लेस है, इस समय पर लोगों की जो आवाजाही है वो ज्यादा है, श्रद्धालुओं की संख्या भी ज्यादा है, तो हो सकता है कि उसकी वजह से भी ये जो डोनेशन है, जितने ज्यादा श्रद्धालु आएंगे डोनेशन आएगा। लेकिन इतना जरूर है कि ये सवाल लाजमी बनता है कि जब ये श्रद्धालु, ऐसा नहीं कि पहली बार आ रहे हैं, पिछले साल भी आए होंगे, उससे पहले भी आएंगे, और उससे पहले जनवरी महीने में जो कुंभ हुआ उस कुंभ ने भीड़ के तमाम जो रिकॉर्ड थे तोड़ दिए। वो भीड़ यहाँ पर वाराणसी प्रयागराज के साथ साथ वाराणसी और अयोध्या भी आई, तो उस समय डोनेशन जो आया वो बहुत ज्यादा आया, और ऐसे में जाहिर सी बात है कि ये चोरी जब हो रही थी तो इनके द्वारा ज्यादा चोरी गई है। और इसका एक पीछे तर्क भी है कि लवकुश मिश्रा ने जो मकान खरीदा वो अक्टूबर में उसने एग्रीमेंट कराया, फरवरी में बनवाना शुरू किया, फरवरी का ये वो महीना था जब कुंभ आ रहा था, और मार्च में उसने ये दाखिल खारिज करा लिया, 8,80,000 का मकान खरीद लिया, 12,000 रुपए की नौकरी करने वाले लवकुश मिश्रा ने। तो ये तो बिल्कुल तय है कि जब चढ़ावा ज्यादा आ रहा था तो चोरी ज्यादा हो रही थी, और चोरी ज्यादा हो रही थी यही वजह है कि इन लोगों के पास पैसे मिले, कि अविनाश शुक्ला के पास से ही 20 लाख से अधिक का कैश मिल गया, डॉलर मिल रहे हैं, सोने चांदी के जेवरात मिल रहे हैं, तो चढ़ावा अधिक तो चोरी अधिक ये जरूर हो रही थी, इस बात के लिए कोई संशय नहीं है। कुंभ के दौरान भी ज्यादा चढ़ावा आया, इस समय पर भी चढ़ाया, अब तो चोर पकड़े जा चुके हैं, आरोपी जेल में है, तो स्क्रूटनी हो गई होगी, सिक्योरिटी बढ़ाई गई होगी, लेकिन जो पहले के जो फुटफॉल था, जो श्रद्धालुओं की जो संख्या बढ़ रही थी, तो ऐसे में इनकार नहीं किया जा सकता कि ये चढ़ावा अगर बढ़ रहा था तो चोरी भी बढ़ रही थी। जी
0: जी संतोष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारी के लिए। सो दैट्स द लेटेस्ट दैट्स कमिंग इन। देयर हैज बीन अ स्पाइक इन द donations that are being recorded at Ram Mandir, and there has been a spike of 6 to 8 lakh rupees. Now, the SIT suspects that this is the amount that was being stolen every day before this case was reported, the alleged theft was reported. But it's also being said that because it's summer vacation time and there's more footfall, and that is also what could have led to the spike, the possible spike in the donations. With that, it's a wrap on this bulletin. Thank you for watching India Today. More news and updates will continue on the other side.
2: are watching India Today.
3: What's up, everybody? It's Bretzky, and America is turning 250. And I can't think of a better way to celebrate that than playing on an American-owned social casino, SpinQuest.com. With all of your favorite games, live craps, bubble craps, live blackjack, there's no better place to play for free and win real cash prizes. SpinQuest.com.
4: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.

0: All those people who think कि फीकी चाय पीने से वो बहुत healthy choices ले रहे हैं, घर का खाना खाने से वो कैसे unhealthy हो सकते हैं, उन सब को वो काफी करारा जवाब देती हैं।
1: ज़्यादातर हमारे parents में मैंने देखा average, they have got a pouch, ठीक है, and बाजू पतली होती है, टांगे पतली होती हैं, so that means there is a muscle wasting, ठीक है। और आजकल ना मेरी मदर को ना सारे बोल रहे हैं, अरे तुम तो कमजोर हो गए बिकॉज उनकी ये पतली है। मैंने कहा मम्मी नहीं, आप ओवरवेट हो, पेट आपका बाहर निकला है।
0: yeah.
1: उस चक्कर में वो और खाना खा रहे हैं।
0: तुम्हारी जनरेशन के साथ ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इतना ये खाना है, हमें तो ऐसा खाना मिलता था, हम खा लेते थे।
1: बोला हालत देखो, बोना बात का नजर, मामा बताओ मासी का क्या हाल है, बुआ का क्या हाल है, मामा का क्या हाल है, चाचा का क्या हाल है, चाची का क्या हाल है, सबको पता चल जाए,
0: सबकी रिपोर्ट दिखाओ मुझे।
1: सत्संग कीर्तन में ज्यादातर जाते, इट्स नॉट बैड, बट उसके बाद खाते क्या है? समोसा मिल जाएगा, गुलाब जामुन मिल जाएगा, जलेबी मिल जाएगी,
0: प्रसाद में डायबिटीज मिलता है। इंडियन खाने में हमारे क्या बुराई है?
1: जिस तरह से हमारे भरवे करेले बनते हैं ना भैया, ठीक है, घंटा घंटा लग के तेल में फ्राई करके, एक बार फ्राई करके, दो बार फ्राई करके, फिर तीसरी बार जाकर के आपके सामने आता है। इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू कि घर का खाना हेल्दी है। प्यार पता है कैसे झलक रहा है? एक चम्मच घी, दो चम्मच घी, तीन चम्मच घी, दैट्स लव।
0: Give me tips. How do I explain parents the importance of rethinking their food?
1: एक balance word ना मुझे लगता है पुरानी generation में है ही नहीं। कितना खाना है, ठीक है? Healthy तो केले भी होते हैं। Bananas are healthy. इसका मतलब दिन में तुम 20 केले खाओगे।
0: When you have a small kid at home,
1: yes.
0: जितने लोग वो coming, सब chocolates लेकर आ जाते हैं। So and you are shamed for that कि कैसी माँ हो?
1: कैसी माँ हो? हाँ, बड़े होकर के तो खा लेंगे ना। I said बड़े होकर के तो बच्चा alcohol भी पिएगा। दे दूँ अभी से क्या? हमारे अगर यहाँ पे तुम किसी को चाय के साथ मखाने सर्व कर दो, तो उनको लगेगा यार सूखा सूखा सूखा सूखा।
0: Oh God, my dad will tell me, मैं तो बस क्या दो रोटी चावल खाता हूँ, दाल लेता हूँ, और जो सब्जी बनती है एक हमारे यहाँ जैसे प्रॉपर नॉर्थ इंडियन यूपी का खाना बनता है, तो एक गीली सब्जी बनेगी, एक सूखी सब्जी बनेगी, उसके साथ दाल होगी, उसके साथ अचार होगा, उसके साथ पापड़ होगा, उसके साथ आपको दो रोटी और चावल। एंड कभी कभी मैं वो खाना देखती हूँ, मुझे लगता है मैं पूरे दिन में इतना नहीं खाती हूँ जो वो एक मील में खा लेते हैं।
1: लोग समझते हैं दाल इज अ प्रोटीन। यस, आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट अ प्रोटीन, इट इज प्रोटीन प्लस कार्ब्स।
0: Is there a way to make your शादी का खाना on what you're eating little bit healthy?
1: अगर suppose मैं घर से निकलने से पहले ही मैं दो अंडे खा करके गई हूँ, suppose, ठीक है, तो my body is satiated, उसको जो nutrients चाहिए थे वो मिल गए।
0: 3-4 बजे की मेरी craving होती है चाय के साथ, के लिए मुझे कुछ स्नैक चाहिए।
1: देखिए ऊपर
0: पर आपका कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है ना, वो चाय के साथ नहीं जाएगा। Is there a way to make healthy choices when you're ordering food? क्या हमें क्विजींस कुछ हैं जो ज्यादा अनहेल्दी होती हैं, कुछ नहीं हेल्दी होती हैं? वेजिटेरियंस क्या खा सकते हैं? देयर आर सम बुरीटो ऑप्शन, ओके, देयर इज हनी ओट आल्सो, रोस्ट गार्लिक आल्सो, वाइट इटालियन आल्सो, पार्मेसान ओरिगानो आल्सो। नो, ऑफिस के डब्बे में कैसे हेल्दी खाना रखा जाए?
1: प्लीज यूज फ्रोजन फ्रूट्स एंड वेजीज अगर आपको लगता है तो। आपके कैंड चिकपीज आते हैं, कैंड बीन्स आते हैं, उनको यूज करो। अब मुझे पता है मैं ये सब चीज बोल रही हूँ, काफी लोगों को लगेगा
0: ये तो बिकी हुई है, इनको किसी ने पैसा दिया ऐसा बोलने के लिए।
1: एनीवेज मेरे पास कोई है
0: नहीं मिला, बाय द वे मैं क्लैरिफाई कर दूं, हमें किसी ब्रांड से कोई पैसा नहीं मिला ये करने के लिए।
1: ब्रांड का नाम ले तो मैं बोलूँ ना, ब्रांड का तो मैं नाम ही नहीं ले रही हूँ।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज डॉक्टर वर्सेस इंटरनेट। आज हमारे साथ एक इंटरनेट की ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने काफी मिथ्स बस्ट करे हैं, सिर्फ आपकी और मेरी जनरेशन के लिए नहीं, हमारे माँ बाप की जनरेशन के लिए भी। ऑल दोज पीपल हु थिंक कि फीकी चाय पीने से वो बहुत हेल्दी चॉइसेस ले रहे हैं, घर का खाना खाने से वो कैसे अनहेल्दी हो सकते हैं, उन सबको वो काफी करारा जवाब देती हैं। तो हमने सोचा आज उनको बुलाते हैं और एवरी डे के आपके और मेरे जो न्यूट्रिशन क्वेश्चन होते हैं, डायट्री क्वेश्चन होते हैं, उसका हम सोल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने हमारा पहला पॉडकास्ट जो था फूड पर डॉक्टर अनूप मिश्रा के साथ देखा था, lot of love came on that podcast, but also a lot of questions कि हम इसे डे टू डे लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करें। सो हमने आपके लिए बनाया है ये पॉडकास्ट। अगर आप एयरपोर्ट पे हैं तो आपको क्या खाना चाहिए, अगर आप शादी में जा रहे हैं तो आपको क्या खाना चाहिए, अगर फ्रेंड्स आर कमिंग ओवर एंड यू वॉन्ट टू सर्व देम समथिंग नाइस, हाउ डू यू मेक हेल्दी चॉइसिस, इफ यू आर गोइंग आउट टू ईट, which cuisines are relatively easier, and then what everybody wants to know, alcohol ke saath kya khana karna chahiye, alcohol ke next day kya khana karna chahiye. And for all those people jo office goers hain, aapko tiffin mein kya bana sakte hain jo quick and easy ho but healthy bhi ho, jo aap apne bacche ke liye bhi lag sakein, to ye sari cheeze humne sirf ek podcast mein cover kari hain. So with that, let me introduce Riti. Hello and welcome, how are you?
2: Thank you, Sonal. I'm super excited for this podcast.
0: So am I. Welcome to India.
2: Thank you.
0: कैसी लग रही है आपको हमारी हवा और हमारी गर्मी?
2: इसके बारे में ना ही बात करें तो अच्छा है, प्लीज.
0: पर आप दुबई से आ रही हैं, आपको गर्मी की आदत होनी चाहिए.
2: नहीं यार, नहीं होती है इतनी गर्मी वहाँ पे. लोगों को पता नहीं क्यों कॉन्सेप्ट है कि दुबई में इतनी गर्मी होती है. नहीं हाँ. होती है, आपको पता भी नहीं लगता है. एंड बाय द वे, मैं वैसे भी जुलाई, अगस्त, सितंबर कभी दुबई में होती नहीं हूँ. आई ऑलवेज स्किप दोस मंथ्स. बट उसको छोड़ के इट्स अमेजिंग. इट्स बेटर देन हियर, ट्रस्ट मी. ये लोगों का मिथ है कि दुबई में बहुत गर्मी होती है. हाँ. उससे गर्मी तो हमारे जम्मू में है जहाँ पे मैं अभी हूँ. ट्रस्ट मी.
0: Oh God.
2: Yeah, so it's not like that, you know.
0: So इतना गर्मी नहीं है. यूरोप में तो आप जा नहीं सकते समर, क्योंकि वहां पर बहुत गर्मी है. सो आई थिंक इंडिया में ही बैठना चाहिए.
2: निकल सकते हो. सॉरी,
0: दुबई तक जा सकते हो.
2: मॉरिशस जाओ.
0: That's also a good idea.
2: I was in
0: but ये travel का podcast नहीं है, खाने का podcast है. Let's come back to that. Let me start with the basic question.
2: Okay.
0: लोगों को ये लगता है, और मैं अपने घर में ये बहुत सुनती हूँ, ठीक है. अभी मैं कानपुर लखनऊ होकर आ रही हूँ समर हॉलीडेज बिता के वहाँ पर, तो मैंने वहाँ बहुत सुना कि तुम्हारी जनरेशन तो पिज्ज़ा बर्गर खाती है, बहुत अनहेल्दी हो तुम लोग. हमें देखो, हम घर का खाना खाते हैं, उसकी इसीलिए हमारी सेहत इतनी अच्छी है.
2: ओके.
0: पर अच्छी है का मतलब है उन सबको डायबिटीज़ है,
2: ठीक है,
0: उनको हाइपरटेंशन है, उनको थायराइड है, उसमें से आधी महिलाओं के नी रिप्लेसमेंट थेरेपीज हो रही हैं.
2: ओके.
0: कोई मेनोपॉज से डील कर रहा है. Men have this massive thing कि सुबह सुबह उठ के सबको बहुत गुस्सा आता है. Cortisol levels are out of control. तो ये सारी चीजें हैं, but they love to talk about कि हमारी generation
2: कितनी healthy है,
0: कि हमारी generation, मेरी generation की eating habits बहुत बुरी हैं और उनकी बहुत अच्छी है क्योंकि वो घर का खाना खा रहे हैं. तो क्या ये सबसे बड़ा myth है कि घर का खाना मतलब healthy खाना?
2: मैं ये नहीं बोलूंगी कि घर का खाना unhealthy है, but it's not ऑलवेज ट्रू कि घर का खाना हेल्दी है. जिस तरह से हमारे घर वाले बनाते हैं, बैलेंस्ड नहीं होता है. आप देखते हो ना करेले कैसे बनते हैं हमारे. करेला इज वेरी गुड, बट जिस तरह से हमारे भरवे करेले बनते हैं ना भैया, ठीक है, घंटा घंटा लग के तेल में फ्राई करके, एक बार फ्राई करके, दो बार फ्राई करके, फिर तीसरी बार जाकर के आपके सामने आता है. राइट. सो हमारे, यू टॉक अबाउट दाल मखनी, ठीक है, लोग जब क्लाइंट्स मेरे से पूछते हैं मैम दाल मखनी खा लें, मैंने कहा वर्ड सुनो, दाल मखनी.
0: हाँ.
2: राइट. अब हमारे घर वाले घर पे बनाते हैं दाल मखनी, ये मैंने घर पे बनाई है, उस पे बटर कितना गया है, आप ये सब चीजें लोग ना कैलकुलेट ही नहीं करते हैं. तो घर का खाना ऑटोमेटिकली हेल्दी नहीं बन जाता है, और बाहर का खाना ऑटोमेटिकली अनहेल्दी नहीं बनता है. ये कॉन्सेप्ट लोगों को समझना चाहिए. एक बैलेंस वर्ड ना मुझे लगता है पुरानी जनरेशन में है ही नहीं. मतलब माई वे और द हाईवे.
0: हाँ.
2: ये मुझे लगता है.
0: ये तो काफी लोगों के साथ प्रॉब्लम है.
2: लोगों के साथ है. आप जैसे अभी बोल रहे थे कि आपके घर वालों को लगता है कि हम लोग अच्छा खाना खाते हैं. मैं अभी जम्मू में हूँ, ठीक है. सो हमारे वहाँ पे मोहल्ले होते हैं, लाइक डिफरेंट. ऐसा नहीं है कि कमेंट लाइक वी डोंट स्टे इन बिल्डिंग्स, लाइक मोहल्ले, ठीक है. मुझे पता है मेरे पूरे मोहल्ले में अगर सपोज अगर इस पूरी लाइन में अगर 100 लोग रहते हैं ना, और 60 प्लस एज में ना आउट ऑफ 100 ना 90 लोगों को तो प्रॉब्लम है ही है. और जो 10 बच्चे हैं ना उन्होंने शायद से कभी टेस्ट कराया नहीं. मुझे पता है उनको भी है. सो और ये लोग एक्सेप्टेंस के लिए रेडी नहीं है. उनको लगता है बीपी शुगर ये ना 60 के बाद होना ही है.
0: हाँ.
2: यार मैं जापान में थी, मेरा तो रोंगटे खड़े हो गए जब मैं वहां पे लोगों को देखती थी ना. 70 प्लस लोग, 80 प्लस लोग, राइट, वो कभी लटक रहे हैं, सुबह उठ के डांस करे, मैंने उनके साथ वीडियोस भी बनाए हैं.
0: हाँ.
2: ठीक है. एंड दे वर सो लाइवली. उनके खाने में क्या होता था, ग्रीन टी, सांचा टी अलोंग विद चेरी टमेटोस, कुछ फ्रूट्स. और हमारे घर वाले जब जाते हैं, एक तो पहले जाते हैं यू नो सत्संग कीर्तन में ज्यादातर जाते हैं, इट्स नॉट बैड, बट उसके बाद खाते क्या हैं? मेरी मदर इन लॉ जाती है काफी
0: प्रसाद में, डायबिटीज मिलता है.
2: यस, ठीक है. एक तो समोसा मिल जाएगा, गुलाब जामुन मिल जाएगा, जलेबी मिल जाएगी, ठीक है. ये होता है प्रसाद, राइट. सो आई एम नॉट सेइंग कि तुम ये खा ही नहीं सकते हो, ठीक है, बट जब ये तुम्हारी लाइफ का पार्ट बन जाता है ना, देन इट्स अ प्रॉब्लम. आई लव समोसास, आई ईट गुलाब जामुन, ऐसा कुछ नहीं है, बट ये मेरी लाइफ का पार्ट नहीं है, ये मेरी लाइफ में डे टू डे नहीं आता है. अब हमारे घर वाले कहीं पे भी जाते हैं, उनको यही चीजें सर्व होती हैं. अब स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट द स्मॉल टाउन्स, अगर आप किसी के घर पे जा रहे हो, अगर तुम्हें चाय के साथ समोसे या पकोड़े सर्व नहीं किए ना, तो तुम्हारा निरादर हो रहा है. ठीक है, तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, राइट?
0: नो, उसके पहले भी शुरू हो जाता है ना. अभी मैं कितने लोगों के घर पे गई, अरे घर जा रहे हैं, खाली हाथ नहीं जाएंगे, मीठा लेकर चलो. एंड आई वाज लाइक, भाई मैंगो का सीजन है, मैंगो ले लो, वो भी मीठा ही है. तो वो भूल गए हैं लोग कि आप फ्रूट्स दे सकते हैं, आप फ्लावर्स दे सकते हैं, ये मीठा ले जाने का कॉन्सेप्ट क्या है, आई डोंट अंडरस्टैंड, लाइक व्हाई यू गिफ्टिंग समबडी डायबिटीज.
2: अनफॉर्चुनेटली उनकी गलती नहीं है, उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ गया है. ठीक है, वो जैसे बोलते हैं ना, जैसे काफी आजकल एक्सपेरिमेंट्स भी आए हैं कि आप एक ऑफिस में जाते हो, जैसी बेल बजती है, दो लोग खड़े होते हैं, तीन लोग खड़े होते हैं, उसके बाद जितने लोग आते हैं वो खड़े होते रहते हैं, जस्ट विदाउट नोइंग कि क्या हो रहा है, राइट?
0: हर्ट मेंटालिटी.
2: क्योंकि हर्ट मेंटालिटी हमारे पेरेंट्स के साथ या पुराने लोगों के साथ भी यही हो गया है कि भैया किसी के घर जाना है वो ऑटोमेटिकली मिठाई लेंगे, किसी के घर जाने वो ऑटोमेटिकली उनको सर्व करेंगे. जैसे हमारे अगर यहाँ पे तुम किसी को चाय के साथ मखाने सर्व कर दो, तो उनको लगेगा यार सूखा सूखा सूखा सूखा, ये सूखा,
0: I heard it so many times.
2: ये सूखा वर्ड मतलब उनको चाहिए तेल में निकला हुआ. इट्स लव, यू कांट से तेल और फैट, इट्स लव, राइट? तो प्यार मुझे लगता है फूड से ही लोग जुड़ते हैं. जैसे मेरे घर वाले, मेरे बच्चे भी नाना नानी के पास हैं, प्यार पता है कैसे झलक रहा है? एक चम्मच घी, दो चम्मच घी, तीन चम्मच घी, दैट्स लव. ठीक है, मैं कहीं पे भी बाहर जा रही हूँ तो मेरे पापा चोरी से बच्चों को चॉकलेट दे रहे हैं, लव.
0: ओह गॉड,
2: मैंने कहा वर्कआउट करो इनके साथ, सुबह से उन्होंने कुछ नहीं किया, राइट? फॉर देम यू नो, वो उसको समझते नहीं है शायद से. मैं जब ग्रैनी बनूंगी, राइट, आई विल मेक श्योर कि मैं उनको सुबह वर्कआउट के लिए लेकर के जाऊं. आई विल मेक श्योर दैट आई फीड माई ग्रैंड किड्स हेल्दी फूड. I'll make sure.
0: Yes.
2: Right?
0: And that is true. And it's particularly difficult when you have a small kid at home.
2: Yes.
0: Jitne log wo are coming and you know, you feel so nice. They mean well. They're coming to see you. They want to wish well to your child. Wo sab chocolates lekar aa jate hain. Aur mujhe sabse bola lagta hai, no S-U-G-A-R, no S-U-G-A-R. Main puri trip mein yahi bolti rahi hu ki bhai nahi de sakte, nahi de sakte. So, and you are shamed for that. Ki kaisi maa ho to?
2: Kaisi maa ho, haan. Kabhi kabhi dene se kya hota hai?
0: Haan.
2: Aur main ye kitni baar bolti hu, जैसे कई लोग मेरे को टॉन्ट भी मारते हैं, बड़े होकर के तो खा लेंगे ना. आई सेड, बड़े होकर के तो बच्चा अल्कोहल भी पिएगा, दे दूं अभी से क्या? बच्चों की वाटर बॉटल में डालना शुरू कर दें कि बड़े होकर के बच्चा वोडका पिएगा, चलो अभी से दे दे. नो, वी डोंट.
0: आई एम गोना यूज दैट लाइन, आई एम गोना यूज दैट लाइन. या
2: या या, राइट? यू ऑलवेज प्रोटेक्ट योर किड्स, राइट? जो चीजें उनके लिए खराब है. ऑनेस्टली बताओ, मुझे लगता है आजकल इतने लोग डायबिटीज से मर रहे हैं, ठीक है, मर रहे हैं, राइट? और लोग उसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कि इससे हो गया, और लोगों को पता नहीं चलता डायबिटीज से मरा है. बिकॉज अल्टीमेटली जब आपकी डायबिटीज बढ़ती है, आपकी किडनीज खराब होती है. पूरी दुनिया बोलती है प्रोटीन मत खाओ, किडनीज खराब हो जाएगी, बट आपको पता है मैक्सिमम डायबिटीज में जो डेथ्स होती है, इट्स बिकॉज ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी.
0: यस,
2: किडनीज खराब की वजह से. उसके बारे में नोबडी टॉक्स. कोई नहीं बोलते कि शुगर मत खाओ, तुम्हारी किडनी खराब हो जाएगी. सुना आज तक कभी? भैया प्रोटीन का तुमने दो अंडे खा लिए तो घर वालों को लगता है भैया अब मेरी बेटी भैया गई हॉस्पिटल, इसने दो अंडे खा लिए, राइट? सो कॉन्सेप्ट मुझे लगता है लोगों की अभी भी बहुत पुराने हैं, मतलब अवेयरनेस बहुत ज्यादा चाहिए.
0: या एंड यू नो, आई कम टू थिंक ऑफ इट, समटाइम्स आई फील उनकी गलती नहीं है. आई थिंक मेरे पेरेंट्स की जनरेशन वो थी जिनके पास वॉशिंग मशीन नहीं थी, जिनके पास कपड़े धोने की लिए आपको जाके मेहनत करनी पड़ती थी, राइट? आपको अगर चटनी पीसनी है तो मिक्सी से नहीं आ रहा था, सिलबट्टे पर ही काम हो रहा था, राइट? आप बैठ के घंटों यूवर झाड़ू पोछा घर में हो रहा था. वो लाइफ स्टाइल सिर्फ एक जनरेशन में इतनी ड्रामेटिकली शिफ्ट हो गई है दैट वो सेम खाना खा रहे हैं व्हेन देयर लाइफ स्टाइल इज नॉट इवन 1/10 ऑफ व्हाट इट यूज्ड टू बी.
2: एब्सोल्युटली.
0: सो जब वो कंपेयर करते हैं कि हमने तुम्हें भी तो बचपन में यही करा था, आई टेल देम बट लिसन, आई वॉज, हमारे घर में खंड होते थे, जैसे आप बता रही है ना मोहल्ले, मैं भी वैसी मोहल्ले में यू नो पैदा हुई हूँ, कानपुर में. एंड वहां पर ऐसी होता था, हम दिन रात ऊपर नीचे कर रहे हैं. अब हमारे बच्चे क्या अपार्टमेंट में है, वो मैक्सिमम एक रूम से दूसरे रूम जा रहे हैं.
2: यस.
0: और आई हैव टू फॉर एक्सरसाइज सेंड देम आउट, इट इज एन एफर्ट.
2: और वो भी लिफ्ट से.
3: वो भी लिफ्ट से जा रहे हैं एंड दैट ऑल्सो इज अ यू हैव टू पुट इन एन एफर्ट फॉर एक्सरसाइज. आपकी दिनचर्या में वो एक्सरसाइज नहीं हो रही है तो लोग ये नई बात समझ पाते हैं और इसको पेरेंट्स को समझाना तो भाई बहुत मुश्किल है. सो गिव मी टिप्स हाउ डू आई एक्सप्लेन पेरेंट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ रीथिंकिंग देयर फूड बिकॉज वो पूरा रीथिंक करने की ज़रूरत है. उनको सिर्फ वो जो खा रहे हैं उसमें फेरबदल नहीं करना है, उनको अपनी लाइफ स्टाइल में पूरी तरह से एक रीथिंक चाहिए.
2: अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हम लोग यूजुअली यही सोचते हैं कि सिर्फ हमारे पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं. आपको पता है हमारी जनरेशन भी काफ़ी ऐसे ही है बिकॉज आई हैंडल सो मैनी पेशेंट्स इन अ डे राइट जो कि हु आर इन देयर 40s राइट. और उनकी सोच भी ऐसी है, वो भी दाल चावल पे ही जी रहे हैं, वो भी ज्यादा प्रोटीन खाएंगे तो किडनी खराब. आई एम टॉकिंग अबाउट द यंगस्टर्स आल्सो.
3: या ओके, मिस इन्फॉर्मेशन. नो,
2: क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन हमें वहां से मिली है. ठीक है, हम लोग थोड़े से अवेयर क्यों हैं, माइट भी हम उस फील्ड में आ गए हैं राइट, एंड माइट भी अपने आप को थोड़ा सा ओपन भी है अपने आप को चेंज करने के लिए. सो इट्स नॉट द प्रॉब्लम ऑफ ओनली ओल्डर जनरेशन, इवन जो यंगर जनरेशन है उनमें भी यही प्रॉब्लम है. और वो सेम चीजें आप अपने बच्चों को दे रहे हो. आप बच्चों की कभी बर्थडे पार्टीज पे गए हो?
3: ओह गॉड,
2: यंग पेरेंट्स ही होते हैं ना, उनके पेरेंट्स कोई 60-70 साल के तो है नहीं, एक्सेप्शंस आर देयर. ओके ओके राइट, सबके यंग पेरेंट्स होंगे राइट. क्या होता है क्यों, और रिटर्न गिफ्ट्स में भी क्या होता है, चॉकलेट्स स्कूल में क्या होता है, चॉकलेट्स राइट. तो मुझे लगता है वो पैटर्न ब्रेक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट. इट्स नॉट द प्रॉब्लम ऑफ ओनली आवर पेरेंट्स, इवन हमारी जनरेशन भी सेम चीज सफर कर रही है बिकॉज एज आई सेड इट्स हर्ड मेंटालिटी. सो डोंट थिंक दैट वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट पेरेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटायर नेशन. और जो हम बात कर रहे हैं ना कि आजकल के लोग अवेयर हैं प्रोटीन खाने के लिए, 1-2% आज भी यंग जनरेशन भी सोचते हैं कि प्रोटीन ज्यादा खाएंगे तो गर्मी हो जाएगी, किडनी में प्रॉब्लम होगी. एक्सेप्ट आई सेड पीपल हु आर एजुकेटेड एंड ओनली अबाउट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन.
3: तो कुछ बेसिक्स हैं जो कोई भी फॉलो कर सकता है इफ दे वांट टू अल्टर. से हमारी सो अ लॉट ऑफ पीपल आर टी जी बाय द वे, हमारे हेल्थ वेल्थ को जितने लोग फॉलो करते हैं, अ लॉट ऑफ देम आर अबव 45.
2: ओके,
3: सो आई एम सीइंग अ ड्रामेटिक शिफ्ट बिटवीन 45-55 ईयर ओल्ड्स हु वांट टू मेक बेटर चॉइसेस, पर उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. ऑल्सो हो क्या रहा है घरों में, अब हर जनरेशन के लिए अलग खाना बन रहा है. ठीक है, क्योंकि घर में आपका जो बेटा बहू है वो कुछ या तो वीगन हो गए हैं या वो कीटो डाइट पर है, तो उनके लिए अलग खाना बनता है, माँ बाप के लिए अलग खाना बनता है. सो एवरीबडी सेइंग that basically I have to bring in some sanctity. तो अगर हम सिर्फ वो 45-60 की बात करें, क्या कोई basics हैं और thumb rules हैं जो वो nutrition और food wise apply कर सकते हैं?
2: Yes. So मैं आपको बताती हूँ, हम जब भी lifestyle change करते हैं, जब अपने clients को भी समझाती हूँ, we do step by step. Okay. Don't try to change them overnight.
3: Yes.
2: अगर आज तुम्हारे parents दाल चावल खा रहे हैं, तुम कल से उनको किनवा करी और साथ में टोफू भैया, तूफान आ जाएगा. ठीक है, एंड नॉट ओनली अबाउट पेरेंट्स, इवन फॉर पीपल लाइक अस इट्स डिफिकल्ट राइट,
3: यू हैव टू टेपर इट इन.
2: या ओके, सो अगर जैसे सिंपल दाल चावल खा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा पनीर ऐड कर दो, चावल कम कर दो राइट. अगर सैलड्स बिल्कुल नहीं खा रहे हैं, जस्ट ऐड लिटिल बिट ऑफ क्यूकम्बर, स्टार्ट स्लोली. ओके, फर्स्टली स्टार्ट वन मील अ डे, दैट्स इट. आपको पूरी लाइफ उनकी चेंज करने की जरूरत नहीं है ओवरनाइट. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने आप चेंज हो जाएंगे. जैसे मैं अपने पेरेंट्स का करती हूँ, मेरे पापा की प्लेट में वही होता है, दाल चावल भर के. ठीक है, प्लेट दो, चावल निकालती हूँ, एक कटोरी दही और रख देती हूँ, थोड़ा सा सैलेड रख देती हूँ, सेम वही प्लेट, पेट भी भर गया उनका, कोई प्रॉब्लम नहीं राइट, बट इट बिकम मोर बैलेंस्ड. ये सिंपल सिंपल है. सो मेक श्योर कि प्लेट में प्रोटीन के सोर्सेस अच्छे से दिखने चाहिए. और अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को समझाओ ये प्लेट में होना चाहिए राइट. स्टार्ट विद वन मील, इट्स फाइन.
3: या दैट्स अ गुड आइडिया. सो आई यू स्पोक अबाउट योर फादर्स प्लेट, लेट मी टेल यू माय फादर्स प्लेट. ठीक है, एक को सुबह उठ के बोलते हैं तुम्हारा आईएफ क्या है, मेरा भी तो आईएफ ही होता है, मैं तो अपनी पहली चाय बस पीता हूँ सुबह. दो बिस्किट के साथ okay. या एक टोस्ट के साथ
2: okay.
3: उसके बाद तो मैं खाना सीधे लेटी खाता हूँ, उसमें मम्मी तुम्हारी स्प्राउट्स देती है, मैं वो खाता हूँ.
2: ठीक है.
3: चाय में तो अब मैंने फीकी पीना शुरू कर दिया है, हो जाता है. ठीक है. और उसके बाद मैं सीधे लंच खाता हूँ. लंच देखो थोड़ा लेट हो जाता है, कभी कभी कोई आ गया यू नो शॉप पर या कुछ हो रहा है तो फिर ये हो जाता है कि कभी कभी समोसा वगैरह हो जाता है, वरना चाय मेरी 2-3 हो जाती है, पर फीकी पीता हूँ मैं, बिना चीनी की लेता हूँ. और फिर रात को मैं बस घर पे जो मम्मी दे देती है वही खाना खाता हूँ.
2: सिंपल
3: बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है.
2: और हल्का
3: बहुत हल्का होता है जी, ये तो घर का है. एंड माय डैड विल टेल मी, मैं तो बस क्या 2 रोटी चावल खाता हूँ, दाल लेता हूँ और जो सब्जी बनती है एक हमारे यहाँ जैसे प्रॉपर नॉर्थ इंडियन यूपी का खाना बनता है, तो एक गीली सब्जी बनेगी, एक सूखी सब्जी बनेगी, उसके साथ दाल होगी, उसके साथ अचार होगा, उसके साथ पापड़ होगा, उसके साथ आपको 2 रोटी और चावल. एंड कभी कभी मैं वो खाना देखती हूँ, मुझे लगता है मैं पूरे दिन में इतना नहीं खाती हूँ जो वो एक मील में खा लेते हैं.
2: कैलोरीज कितनी हाई चले जाती हैं एंड जस्ट कार्बोहाइड्रेट. अच्छा, अब आपकी मैं दाल वाली बात पे थोड़ा सा बात करती हूँ. लोग समझते हैं दाल इज अ प्रोटीन. यस, आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट अ प्रोटीन. इट इज प्रोटीन प्लस कार्ब्स.
3: यस,
2: प्लस कार्ब्स. ठीक है. सो हमारी एक आंटी थी तो मोहल्ले में, वही तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना खाना छोड़ दिया कि मैं वो नहीं खाऊंगी, मैं सिर्फ दाल पीऊंगी. और वो दाल का वो जो बड़ा वाला पतीला सा होता है ना, वो पीते थे. And I was like, इससे कुछ नहीं होगा था ना, explain.
3: The serving bowl.
2: Yeah, yeah, yeah, big one.
3: हाँ.
2: Because her appetite is huge,
3: हाँ.
2: right?
3: हाँ.
2: So she thought कि दाल पीने से और सब्जी खाने से, इतनी बड़ी दाल पी रहे थे,
3: हाँ.
2: और साथ में सब्जी अच्छी खासी खा रहे थे, ठीक है? और सब्जी में भी ऑयल.
3: Right? तो टेक्निकली वो देखिए सही काम कर रही है, उन्होंने कार्ब्स कम कर दिए हैं, पर वो किस तरह से कर रही है, प्रॉब्लम.
2: As I said, awareness, ठीक है? और फिर देन मैंने बात की, उन्होंने मेरे को बताया पूरी की पूरी चीज है कि ये है. मैंने कहा उसमें ना तेल बहुत ज्यादा है आंटी. बच्चा मैं ऑलिव ऑयल यूज करती हूँ. उस टाइम पे तो मेरा दिल बैठ गया, मैंने कहा अब मैं समझ गई कि मैं किन लोगों से बात कर रही हूँ. सो मुझे लगता है एज आई सेड यू नो लोग समझते हैं ऑलिव ऑयल हेल्दी है, बट व्हाट डू यू मीन बाय हेल्दी, कितना खाना है. ठीक है, हेल्दी तो केले भी होते हैं. बनाना सर हेल्दी, इसका मतलब दिन में तुम 20 केले खाओगे? नो. एनीथिंग अगर आप एक्सेस में खाते हो, इट्स नॉट फॉर योर बॉडी. आपकी बॉडी उसको बाय बाय बोलना शुरू कर देती है. यू नीड टू अंडरस्टैंड योर बॉडी ऑल्सो.
3: तेल मैं यही बोलती हूँ हमेशा घर पर भी, वही अच्छा है जो आप कम मात्रा में यूज करें.
2: कुछ भी यूज,
3: कोई भी यूज कर लीजिए,
2: कुछ भी यूज करो,
3: कम मात्रा में यूज करो,
2: कम मात्रा में यूज करो. पीपल आर फाइटिंग ओवर इंटरनेट, यू नो, या इस ब्रांड मत यूज करो, ये मत यूज करो,
3: सीड ऑयल यूज करो, बहुत बड़ा डिबेट है.
2: अगर तुम एक चम्मच यूज कर रहे हो इतना मैटर नहीं करता, बिकॉज दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 or 5 पीपल, राइट. अब हमारे यहाँ पे तेल यूज होते हैं कड़छी, मतलब मेरी मॉम, मतलब वो जो बड़े वाले वो जो कड़छी होती है, वो यूज करती है ऑयल के लिए, राइट. अब तो चलो मैंने थोड़ा सा कम करवाया, बट दैट्स अ नॉर्मल, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग. और लोगों
3: तो इसका मेरे पास एक हैक है, एंड आई डोंट नो इफ यू अप्रूव ऑफ इट. मैंने अपनी मॉम को बोल दिया है कि आपके घर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको पता नहीं आप कितना तेल डाल रही हैं, क्योंकि अंदाजे से डाला जाता है.
2: अंदाजे से,
3: ठीक है. आप अगर देखेंगी संजीव कपूर के वीडियोस जो हमारे घर में देखे जाते हैं और रेसिपीज रिक्रिएट करी जाती हैं, वो बोलते हैं 1 tablespoon. Nobody is taking out 1 tablespoon to measure. ओके, वो टीस्पून भी बोलेंगे तो कोई मेजर नहीं कर रहा है, वो अंदाजे से ही डाला जाता है. सो आई टोल्ड हर, आप बस एक स्प्रे बॉटल ले आइए, आपको कभी भी यूज करना है बस आप एक स्प्रे करिए, ठीक है, उसमें आपका काम चल जाएगा. तो उन्होंने पहले 2-3 दिन ट्राई करा, शी वाज लाइक यार राइट, बट उनके पास एक प्रॉब्लम आई, वो कहती तुम मुझे तो ट्रेन कर दोगी, लेकिन जो अब खाना बनाने वाली आएगी उसको कैसे ट्रेन करें. आई वॉज लाइक दैट्स अनदर हैक, कि आपको सिर्फ अपना कंटेनर नहीं चेंज करना है, आपको घर में जो खाना बना रहा है उसका माइंडसेट क्लीन करना है. सिर्फ अपनी माता जी का ठीक करने से काम नहीं चलेगा.
2: एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही बोला, दिस इज अ वेरी गुड हैक.
3: या
2: एक तो ऑयल स्प्रे और एक टीस्पून. एक और चीज जो मैं अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ जिनके घर में कुक्स बनाते हैं खाना, क्योंकि आप उन पे कंट्रोल ही नहीं कर सकते, नहीं कर सकते आप, ठीक है. सो व्हाट आई टेल देम, यू जस्ट कीप 250 ml बॉटल आउटसाइड, बाकी तेल लॉक कर दो. एक्सेस मत दो, अगर होगा तो वो यूज करेंगे, एंड देख लो कि कितनी देर में खत्म हो रहा है. आपको तो आइडिया मिल ही जाएगा ना, अगर आप 500 ml की बॉटल ले रहे हो, 250 ml की बॉटल ले रहे हो, और आपकी हेल्पर अगर अगले दिन बोल रही है खत्म दीदी, तो समझ जाओ कि वो कहाँ गया है.
3: कहाँ गया है, राइट
2: राइट. हाँ, वो घूम रहा है तुम्हारे हार्ट के अंदर, आएगा भी तुम्हारे पास बहुत जल्दी.
3: वो भी 10 घरों में जाके खाना बनाती है, उनको चाहिए जल्दी जल्दी. हाँ, जल्दी जल्दी बन जाए, हाई फ्लेम में खाना बन जाए. Absolutely. तो वो भी तेल डाल के फटाफट कर रही है, उनको फर्क नहीं पड़ता कि क्या जा रहा है.
2: मुझे लगता है सुनील, जो कुक्स है ना, वो ऑयल ज्यादा यूज करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल खाना जल्दी बनता है, दूसरा टेस्ट ज्यादा बनता है।

0: And now shifting focus to the Ram Mandir donation theft case. Ram Mandir now overhauls donation counting system, and it is now mandatory that there will be a double layer security check for the counting staff. Pocketless dark blue uniform has been made compulsory now. No mobiles, cameras or bags inside the counting hall, and the donation counting will be done sitting on the floor, and no chairs or tables will be used. The staff will be removing the footwear before entering the counting hall. So the strict protocols have been implemented to boost the security and also the transparency. So major changes have been introduced in the Ram Temple donation counting system. This includes that staff members are now permitted to enter the counting hall only after undergoing strict security measures and a double-checking process. According to sources, a new dress code has also been introduced for the counting staff. It is now mandatory for the staff members to wear a dark blue uniform that has no pockets. And before entering the counting hall, every staff member must undergo a two-stage security check. And the counting process will now be conducted while sitting on the floor rather than at tables and chairs. My colleague Santosh Sharma is now joining us with more details on this. Santosh, काफी strict rules जो हैं वो अब implement कर दिए गए हैं जो donation counting है उसको लेके, पर इनमें से कई rules तो पहले भी थे लेकिन इनको follow नहीं किया जा रहा था, तो क्या guarantee है कि अब इन्हें follow किया जाएगा?
1: देखिए बिल्कुल, जो एसओपी पहले बनाई गई थी वो पालन नहीं हो रहा था. ड्रेस कोड पहले भी था लेकिन पालन नहीं हो रहा था. ड्रेस कोड कोई पहनता नहीं था ड्रेस जो बनाई गई थी. लेकिन अब इतनी बड़ी घटना के बाद जो सख्त जो नियम बनाए गए हैं उनका सख्ती से पालन कराना बेहद ज़रूरी है. अब जो लोग जाएंगे वो ड्रेस कोड पहनकर ही जाएंगे. जो लोग उस काउंटिंग रूम में जाएंगे तो उनका फ्रिस्किंग होगी, चेकिंग होगी, इसके साथ ही निगरानी होगी. उनके मोबाइल ले जाने पर पाबंदी होगी. तमाम निगरानियाँ रखी गई. जब वो लोग घर वापस जाएंगे अपने ड्यूटी ऑफ करके तो उनकी चेकिंग फ्रिस्किंग होगी. तो एक तरीके से निगरानी बढ़ी है. लेकिन ये सब कुछ हुआ है तब जब राम मंदिर से चढ़ावा चोरी का मामला दुनिया भर में उजागर हो गया. 8 लोग गिरफ्तार कर लिए गए, 6 लोगों के पास से 80 लाख रुपए बरामद हो गए. यानी कि जब चढ़ावा चोरी का मामला पूरी तरीके से दुनिया के सामने आ गया तब ये तमाम चीज़ें एसओपी बनाई गई. एसओपी पहले भी थी लेकिन पालन नहीं हो रहा था. अब इन एसओपी को बनाने के बाद इनका सख्ती से पालन कराना बेहद ज़रूरी है. लेकिन अब देखना होगा कि ये पालन तो होगा ही क्योंकि इतनी बड़ी घटना हो चुकी है. इनका सख्ती से पालन करवाया जाएगा. जो प्रोफेशनल्स हैं उनको हायर किया जा रहा है. तो सिक्योरिटी को लेकर के जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो अब अमल में लाए जा रहे हैं. जी
0: जी संतोष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारी के लिए. सो स्ट्रिक्ट मेजर्स हैव नाउ बीन इम्प्लीमेंटेड एज फार एज द डोनेशन काउंटिंग प्रोसेस इज कंसर्न. देयर इज आल्सो अ स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड दैट नाउ नीड्स टू बी फॉलोड, विच इज अ पॉकेटलेस नेवी ब्लू यूनिफॉर्म दैट नीड्स टू बी वर्न बाय द काउंटिंग स्टाफ. इन फैक्ट नो फोन्स, नो कैमराज कैन बी कैरीड इन साइड द काउंटिंग हॉल, एंड स्ट्रिक्ट डबल सिक्योरिटी चेक्स विल बी डन, फ्रिस्किंग विल बी डन ऑफ द स्टाफ. So the Ram Mandir donation theft row is refusing to die down. New revelations are coming to light every day. Now the key accused, Avinash Shukla, confessed to the crime after police showed him CCTV footage of the theft. The accused bought a car with stolen money and also told the police that all the accused knew each other and held a meeting at 14 Kosi Parikrama Marg to distribute the looted money. Avinash also told the probe team that the money was equally distributed among all. SIT is also probing that if the arrest accused also stole ornaments from the temple. Investigators say that around 1,300 kilograms of silver and 20 kilograms of gold are currently accounted for in the Mandir treasury, but the probe is on to find if the accused stole the ornaments and tried to convert it into biscuits to destroy the evidence. The donation theft has ignited a massive political storm, and now the RSS is also caught in the controversy. Hours after the RSS issued its first official statement on the alleged Chanda Chori, RSS chief Mohan Bhagwat was asked about the controversy. But instead of responding, he simply said Ram Ram and walked away without answering the questions. Meanwhile, Akhilesh Yadav has taken a dig at Chanda Chors and released an AI video song.
2: प्रति आस्था को कुछ लोग धक्का पहुंचा रहे. प्रति आस्था को कुछ लोग धक्का पहुंचा रहे. प्रति आस्था को कुछ लोग धक्का पहुंचा रहे.
3: अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी के दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों को भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है तथा इस घटना से हम सभी आहत हैं। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो यह सुनिश्चित करना आवश्यक है।
4: देश में गुस्सा है इस तरह की घटना को लेकर के, जो भगवान राम के भक्त लोग हैं उनको ठेस पहुंची है, इसमें तो दम है। इस बात में सरकार की तरफ से जो ट्रस्ट ने डिमांड रखी तो SIT गठित हो गई। प्रथम दृष्टया SIT ने 8 लोगों के खिलाफ जांच में दोषी पाया, 8 लोगों को जेल भेज दिया। पूछताछ हो रही है, SIT अपना और आगे कदम बढ़ा रही है।
5: चंपत राय जी जिनको की ट्रस्ट का पूरा कर्ता धर्ता बनाया, उन्होंने 10-10, 15-15 हजार रुपए माहवार के लोगों को नियुक्ति दी और हर दिन जितना चंदा आता था उसमें से 10-20% गड्डियां गायब कर दी जाती थी। उसमें बैंक के अधिकारी कर्मचारी भी शामिल हो गए। तो अब ये तो बड़ी एक हमारे आस्था पर, भगवान राम की आस्था के प्रति कुठाराघात है।
6: टिन्नू यादव हो चाहे कोई भी आरोपी हो, हर आरोपियों के घरों में पुलिस जा रही है, जांच चल रहा है। और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है दूध का दूध पानी का पानी होगा। और मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी साजिश है। अयोध्या भगवान राम के मंदिर में आस्था जुड़ा हुआ है सबका, और कहीं ना कहीं आस्था के साथ खिलवाड़ करने में कुछ लोग लगे हुए हैं।
7: निश्चित रूप से SIT टीम और प्रशासन लगातार छापेमारी, एक से एक तथ्य, एक से एक जो है दरपदर जो है परत दर परत खुलते जा रहा है। जो आरोपी थे वो अपना दोष सिद्ध कर रहे हैं, अपना दोषी मान रहे हैं। उनके द्वारा जो कुकृत किया गया वह अत्यंत निंदनीय घृणित कुकृत किया गया, वो आज कबूल रहे हैं प्रशासन के डंडे के बल पर। मुझे विश्वास है एक भी आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे, बुलडोजर भी चलेगा और सनातनियों को न्याय मिलेगा। हमारे आस्था जो अडिग हुआ है वह फिर से जो है वह असनातन की अक्षुण्णता, सनातन की जो है गौरव गाथा विश्व के मानचित्र पर स्थापित करेंगे। योगी जी,
0: and some more breaking news coming in. BJP poll strategy sharpening push in Uttar Pradesh ahead of the assembly elections. BJP chief Nitin Naveen on 2-day visit to Uttar Pradesh. Chief Minister Yogi Adityanath welcomes Nitin Naveen in Lucknow. BJP chief is on a 2-day organizational visit to the state, and there's a mega roadshow also planned in Lucknow. So Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath received BJP National President Nitin Naveen as he arrived in Lucknow, and the state BJP President Pankaj Chaudhary was also present with the Chief Minister to welcome Nitin Naveen, who is on a 2-day organizational visit to the state starting today. And this is also his first visit to Uttar Pradesh after the formation of the new team of the state BJP. And it is expected that the poll strategy might be discussed during this visit. Ashish Srivastav, my colleague, is now joining us with more details on this. Ashish, ye 2-day visit hai Nitin Naveen ka Uttar Pradesh ko, jo ki elections se bhi pehle aa raha hai. Kya poll strategy discuss ki ja sakti hai in 2 dinon mein?
8: बिल्कुल अंजलि, देखिए ये पहली विजिट है नितिन नवीन की उत्तर प्रदेश में और लखनऊ में, जहां पर वो पोल 2027 में चुकी यहां पर चुनाव है, और ऐसे में उस चुनाव के लिए कर जो तैयारियां हैं बीजेपी की वो भी डिस्कस की जाएंगी। इसी क्रम में जो कार्यकर्ता हैं उनके अलग अलग विंग्स हैं, फिर चाहे माइनॉरिटी विंग्स हो या इसके अलावा अगर हम बात करेंगे अलग अलग जो मोर्चे हैं उन सभी मोर्चों से भी मुलाकात होगी। शक्ति केंद्र के जो स्थापक उनसे भी मुलाकात होगी, इसके साथ चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के साथ भी मुलाकात है, डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ भी मुलाकात है, और संगठन पर भी चर्चा है क्योंकि संगठन में जुड़े हुए उन सभी पदाधिकारियों से भी। 2027 का चुनाव है, बहुत अहम है उत्तर प्रदेश में, और ऐसे में माना जा रहा है कि ये 2 दिन की जो विजिट है जिसमें वो पूरे स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं स्ट्रांग करेंगे, मजबूत करेंगे। नितिन नवीन चूंकि पहली बार अब उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं, लखनऊ पहुंचे हैं, तो इसलिए उनका पार्टी के
9: कार्यकर्ताओं ने स्वागत अलग अलग किया, अलग अलग ग्रुप्स ने, फिर चाहे वो कायस्थ सभा हो, यादव सभा हो, ब्राह्मण सभा हो, ये सभी सभाएं समाज के लोगों ने अलग अलग कैंप लगाकर उनका स्वागत किया है फूलों से। और वो यहाँ पर जब पहुंचे तो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। आज रथ पर सवार होकर वो तकरीबन 8 किलोमीटर लंबा जो ये दूरी है भाजपा कार्यालय से लेकर एयरपोर्ट तक, जगह जगह उनके स्वागत किए जा रहे हैं फूलों से, जगह जगह रुक कर वो लोगों का वार्म वेलकम ले रहे हैं। क्योंकि ये माना जा रहा है कि जिस समय 2027 के पूरे चुनाव मोड में आ चुका है, और ऐसे में बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है वो यही है कि हर वर्ग को कैसे संगठन।
0: बिल्कुल आशीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारी के लिए। सो द बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नबीन इज ऑन अ 2-day विजिट टू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। दिस इज हिज फर्स्ट विजिट आफ्टर द न्यू स्टेट टीम ऑफ द बीजेपी इन उत्तर प्रदेश, एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड इज दैट द पोल स्ट्रेटजी कुड ऑल्सो बी डिस्कस्ड। एंड ऑफकोर्स दिस विजिट कम्स अमिड द डोनेशन थेफ्ट कंट्रोवर्सी ऑफ द राम मंदिर इन उत्तर प्रदेश। And now shifting focus, heavy rain slash parts of Mumbai and Navi Mumbai streets are flooded after heavy rain slash the maximum city. The Mumbai civic body BMC has declared a holiday for schools. So holiday has been declared for schools and the colleges as well. The IMD has issued red alert for Navi Mumbai also. Heavy to extremely heavy rain warning has been issued by the IMD. The BMC meanwhile has declared a holiday for the schools and colleges, and this is for BMC undertaking schools and colleges, and the IMD has declared a red alert for the next 3 hours. So after heavy rainfall in Mumbai, an underpass in Sanpara faces severe waterlogging, posing significant inconvenience to the commuters. In fact, not just in Sanpara, but in different several areas of Mumbai, especially the low-lying areas where waterlogging is being reported, be it Thane, be it Mumbai, be it Navi Mumbai. A red alert has also been issued forecasting very heavy to extremely heavy rainfall. And we also spoke to my colleague Dipesh Tripathi, who joined us from Mumbai just a while ago, who was telling us about the current situation. The rains are still continuing. The rains haven't stopped, and the next 3 hours are also critical because the red alert has been issued already. There's knee-deep to waist-deep water in several areas and parts of the maximum city. With that, it's a wrap on this bulletin. Thank you for watching India Today. More news and updates will continue on the other side.
10: Are watching India Today.
11: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries, it's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
12: 5600-65465. The action never stops, and neither do we. From breaking updates to match analysis, from big moments to bigger conversation. This is where sports comes alive. Fast, sharp, unfiltered. For the fans who want every update, every story, every headline first, welcome to Sports Today, your destination for everything sports. Press that bell icon and subscribe now.

0: Hello and welcome. I'm Pooja Shali. The Ram Mandir donation theft has shocked the country. It's been throwing up fresh, startling details every stage of the investigation. For the past 1 month, you must have seen on a daily basis, there have been multiple arrests. Investigators are now even claiming that the accused have confessed, revealing that they allegedly exploited security loopholes inside the temple complex, exposed an alleged nexus that helped the stolen donation money change hands. So we have a special report coming up on what exactly happened and how the faith of millions of devotees have clearly been now put in question.
1: Early June, police raided the residence of Avinash Shukla, associated with the cash counting process at the temple. Throughout the month, the house was raided a few more times by different teams. Opposition leader and former Chief Minister of Uttar Pradesh, Akhilesh Yadav, raised the issue of alleged chanda chori of 7 to 7.5 crores. Initially, Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust's General Secretary, Champat Rai, fiercely rejected the allegations.
2: And Prime Minister Modi is in Rajasthan, and let's listen in to him.
3: कि भाजपा सरकार के प्रयासों पर आपका विश्वास कितना बुलंद है। मैं समर्थन और स्नेह के लिए राजस्थान की माटी का रणी हूं भाइयों बहनों ये धरती अनगिनत वीरों के शौर्य की साक्षी रही इस रण के कण कण में कण कण ने हमें स्वाभिमान को सर्वोपरि रखने की सीख दी है और स्वाभिमान व्यक्ति का या फिर स्वाभिमान देश का वो तभी ऊंचा हो रह सकता है जब वो आत्मनिर्भर हो दूसरों पर कम से कम निर्भर हो आज राजस्थान की धरती से भारत ने विकसित होने आत्मनिर्भर होने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है ये रिफाइनरी यहां हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूं साथियों आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं 2 महीने पहले यहां जो हादसा हुआ उसके बाद इतनी तेजी से काम पूरा कर लेना ये भी परिश्रम की पराकाष्ठा का उदाहरण है आप सबने दिखा दिया है चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी और अप्रत्याशित क्यों न हो नया भारत अपने संकल्पों से न पीछे हटता है और न ही अपनी रफ्तार कम करता है भाइयों बहनों, आज राजस्थान में विकास के कई और भी कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। आज ही जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है और मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि नए टर्मिनल का आर्किटेक्चर, इंटीरियर ये सोशल मीडिया में छाया हुआ है। चारों तरफ राजस्थानी राजस्थान दिख रहा है। साथियों, ये मारवाड़ में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को नई गति देगा। इस कार्यक्रम में जो लोग जोधपुर से जुड़े हैं, मैं उनका विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है। भाइयों बहनों, शेखावटी क्षेत्र के जल संकट को दूर करने का इंतजार भी अब खत्म होने जा रहा है। मैं इन सभी प्रोजेक्ट के लिए राजस्थान के मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज राजस्थान के करीब 54,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र भी मिला है। मैं नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उनका युवा मन राजस्थान के उज्जवल भविष्य को और मजबूती देगा। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज राजस्थान की इस धरती से मैं देश के एक और सामर्थ्य की चर्चा करूंगा। आप भी देख रहे हैं, पश्चिमी एशिया में युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। हर देश त्रस्त है। इस युद्ध ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया। बड़े बड़े देश आज ईंधन की किल्लत से जूझ रहे हैं, लेकिन साथियों, 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट पर 21वीं सदी के नए भारत की इच्छा शक्ति और भारत के प्रयास इस संकटों पर भारी पड़े हैं। भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है। साथियों, जब सार्वजनिक तौर पर कुछ ताकतें अफवाह और आशंका फैलाने में व्यस्त थी, तब किस स्केल पर दिन रात काम हो रहा था, किस तरह स्थिति को संभाला जा रहा था, वो मेहनत, वो प्रयास, वो धैर्य नीतिगत स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर उठाए गए एक एक संवेदनशील कदम कभी न कभी इतिहास लिखेगा, ये सब अभूतपूर्व है। मैं एक उदाहरण देता हूं, रसोई गैस यानी एलपीजी के विषय में हम सब जानते हैं हमारी जरूरतों की करीब 60% एलपीजी अन्य देशों से आयात की जाती थी और इसमें से भी 90% एलपीजी गल्फ देशों से आ रही थी, हॉर्मुज से होकर के आ रही थी और अचानक से युद्ध के हालातों ने उस सप्लाई को लगभग बंद कर दिया। आप अंदाज लगा सकते हैं हमारे देश में कितना बड़ा हाहाकार मचने जा रहा था, लेकिन राजस्थान की इस धरती ने हमें चुनौतियों को भी चैलेंज देना सिखाया है और इसलिए हमने संकट शुरू होते ही रिफाइनरीज के सामर्थ्य पर फोकस किया, औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी उसकी जगह रिफाइनरीज को रसोई गैस एलपीजी बनाने के लिए कहा गया और 7 दिनों के भीतर भीतर एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। पहले जो 35,000 मैट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन देश में होता था, संकट के दौरान वो 54,000 मैट्रिक टन बढ़ गया। जिन रिफाइनरीज ने पहले कभी एलपीजी नहीं बनाया था उन्हें भी इसके लिए कन्फिगर किया गया। साथियों, रसोई गैस की डिमांड का पूरा लोड एलपीजी पर न पड़े, सरकार ने इसका भी ध्यान रखा। पीएनजी कनेक्शन यानी पाइप से रसोई गैस के कनेक्शन बढ़ाने का अभियान चलाया गया। बहुत ही कम समय में भारत ने करीब 11 लाख से ज्यादा घरों को गैस का पीएनजी कनेक्शन से जोड़ दिया। भाइयों बहनों, हमने एक और सप्लाई को सुनिश्चित किया। दूसरी ओर घरेलू उपभोक्ताओं पर बहुत बोझ भी नहीं पड़ने दिया। जो हालात थे उनमें घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 2,000 रुपये तक जा सकती थी। बड़े बड़े मार्केट एक्सपर्ट यही आकलन कर रहे थे, लेकिन हमारे यहां अभी भी घरेलू एलपीजी सिलेंडर 950 रुपये से भी कम में दिया जा रहा है। गरीबों को तो उज्ज्वला सिलेंडर 650 के भी भीतर पड़ रहा है। अब से 2 दिन पहले सरकार ने कमर्शियल गैस की कीमतों में भी बहुत बड़ी कटौती कर दी है। ये दिखाता है कि हमारी सरकार कितनी संवेदनशीलता से काम कर रही है। साथियों, युद्ध की वजह से डीजल पेट्रोल पर आया संकट भी बहुत बड़ा था। हमारे देश में तेल के बड़े बड़े कुएं नहीं हैं। जब ये संकट बढ़ा तो क्रूड ऑयल की कीमतें $70 प्रति बैरल से $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। आयात के रास्ते भी बंद थे। दुनिया के कई देशों में डीजल पेट्रोल की कीमतों में 40 से 50% का इजाफा हो गया। कई देशों में तो डीजल पेट्रोल कोटे के आधार पर मिलने लगा था, लेकिन भारत में एक दिन भी ऐसे हालात नहीं आए। अफवाहें बहुत फैलाई गई, लोगों को डराया गया, भड़काया गया, राजनीति के खेल खेले गए, लेकिन जिनके इरादे गलत थे वो सफल नहीं हो पाए। दूर सुदूर इलाकों में भी छोटी मोटी अड़चनों के अलावा सप्लाई की कोई बड़ी चुनौती नहीं आई। अप्रैल से जून के बीच ही अकेले डीजल पेट्रोल में 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा कंपनियों को उठाना पड़ा। यानी एक नई रिफाइनरी बन जाए इतना घाटा सहना पड़ा, और इस घाटे को पूरा करने की जिम्मेदारी सरकारी खजाने से उठाई गई। हमने प्रति लीटर 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी भी कम की, और बहुत ज्यादा बोझ जनता पर नहीं पड़ने दिया। साथियों, युद्ध के इसी समय में भारत की दूसरे देशों के साथ जो दोस्ती है ना, वो दोस्ती भी बहुत काम आ गई। जब ये संकट शुरू हुआ था उससे पहले भारत 25-26 देशों से ही ईंधन का, ऊर्जा का आयात करता था, लेकिन संकट के समय भारत की डिप्लोमेसी का जलवा दिख गया। दूसरे देशों के साथ हमारे अच्छे संबंध इस संकट की घड़ी में बहुत काम आए। युद्ध के दौरान ही भारत 40 से ज्यादा देशों से ईंधन मंगाने लगा। भारत ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि हमारे लिए राष्ट्रहित और राष्ट्र के नागरिकों का हित सर्वोपरि है। नागरिक देवो भव, ये हमारा मंत्र है। साथियों, इतनी अप्रत्याशित चुनौती से देश ऐसे ही नहीं उभरा। इसके पीछे हमारी एक दशक से चल रही दूरदर्शी नीतियों की सफलता भी है। आज हम राजस्थान रिफाइनरी का उद्घाटन यहां कर रहे हैं। हमने 2017 में इसके लिए एमओयू साइन किया था, लेकिन 2018 से 2023 तक राजस्थान में कांग्रेस सरकार रही। कांग्रेस के असहयोग के कारण यहां का काम लगभग ठप ही रह गया, लेकिन जैसे ही डबल इंजन सरकार आई, इसका काम तेजी से आगे बढ़ा और आज हम इसका लोकार्पण भी कर रहे हैं। और आप तो जानते हैं मेरी कार्यशैली, जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका लोकार्पण भी हम ही करते हैं।

इसी तरह भारत ने अपनी रिफाइनरी क्षमता को लगातार बढ़ाया है। अमेरिका में पिछले 50 वर्षों में एक भी नई रिफाइनरी नहीं बनी है। यूरोप की रिफाइनरी क्षमता लगातार कम होती गई है, वहीं भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी रिफाइनरी क्षमता वाला देश बन चुका है। और हम यहां रुकने वाले नहीं है, आने वाले वर्षों में ये क्षमता और भी बढ़ने वाली है। इन्हीं प्रयासों के कारण भारत सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट से लड़कर उभरा है। साथियों, दुनिया में युद्ध और अशांति से हमारे किसानों के लिए भी चुनौतियां पैदा होती हैं। अभी वेस्ट एशिया क्राइसिस, खाड़ी के देशों का संकट और इसके पहले यूक्रेन युद्ध के कारण दुनिया में खाद का बड़ा संकट भी पैदा हुआ, फर्टिलाइजर के लिए समस्या पैदा हो गई। यूक्रेन युद्ध के बाद एक समय एक यूरिया की बोरी की कीमत 3000 रुपये से भी ऊपर पहुंच गई थी, लेकिन हम अपने किसानों को जो दुनिया के बाजार में 3000 की बोरी थी, हम मेरे देश के किसानों को हम सिर्फ 300 रुपये में देते रहे। और इसके लिए खजाने से लाखों करोड़

मजबूती की। साथियों, इसी तरह हमने हमारे उद्योगों का, एमएसएमई का भी ध्यान रखा। एमएसएमई को बढ़ती लागत का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए हम इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का एक नया चरण लेकर आए। इस स्कीम के तहत बैंकों ने एमएसएमई को 20% तक का अतिरिक्त लोन दिया और सरकार ने एमएसएमई के इन सभी लोन के लिए 100% गारंटी, और ये मोदी की गारंटी है, इसका बहुत लाभ लघु उद्योगों को मिला, कुटीर उद्योगों को मिला। ऐसे ही अनेक फैसलों का नतीजा है कि आज हमारे छोटे बड़े उद्योग खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार ने निरंतर निर्णय लिए, क्योंकि हमें भारत के सामर्थ्य पर भरोसा था, हमें हमारे देशवासियों की क्षमताओं पर, उनकी सूझबूझ पर हमारा 100% भरोसा था। और आज मैं 140 करोड़ देशवासियों का आभार प्रकट करता हूं। मैं देशवासियों को नमन करते हुए धन्यवाद कहता हूं, जिस तरह वो इस मुश्किल समय में देश के साथ मजबूती से खड़े रहे, जिस तरह देशवासियों ने अफवाह, डर और भ्रम फैलाने वालों का सामना किया, देश में अस्थिरता फैलाने की साजिशों को नाकाम किया, देश उसी विश्वास के भरोसे आगे बढ़ पाया है। जो लोग भारत को असफल होते देखना चाह रहे हैं, इसके लिए भविष्यवाणी भी करने लग गए थे, वो जरूर आज निराशा की गर्त में पड़े होंगे। साथियों, आज विकास परियोजनाओं के लोकार्पण, शिलान्यास के साथ ही मुझे यहां एक पेड़ मां के नाम खेजड़ी का पौधा लगाने का सौभाग्य भी मिला है। मैं जानता हूं कि राजस्थान में खेजड़ी का कितना महत्व है। बढ़ते रेगिस्तान को रोकने में इसकी बहुत सार्थक भूमिका रही है, इसलिए ये वृक्षारोपण हमारी कार्य संस्कृति का उदाहरण भी है। हमें प्रगति की नई ऊंचाइयों को भी छूना है और हमें पर्यावरण का संरक्षण भी करना है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार ऊर्जा के दूसरे स्रोतों पर भी काम कर रही है, खासकर राजस्थान पर सूर्य देवता की कुछ ज्यादा ही कृपा है, इसलिए यहां विश्व स्तरीय सोलर पार्क बनाने का काम चल रहा है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत भी राजस्थान में 1.5 लाख से ज्यादा घरों को सोलर से जोड़ा जा चुका है। पीएम कुसुम योजना के तहत भी राजस्थान में किसानों को 65,000 से ज्यादा सोलर पंप भी दिए गए हैं। साथियों, कठिन से कठिन लगने वाले संकल्प भी सिद्ध हो जाते हैं अगर उनके पीछे की नीयत साफ हो। यही बीजेपी और कांग्रेस में एक बहुत बड़ा अंतर है। साथियों, राजस्थान में पानी से जुड़ी परेशानियों का समाधान इसका एक और बड़ा उदाहरण है।

0: आप सब जानते हैं कांग्रेस की सरकारों ने कभी राजस्थान के जल संकट को दूर करने के लिए कोई ठोस काम नहीं किया, लेकिन बीजेपी क्षेत्रवाद और बंटवारे की सियासत नहीं करती। बीजेपी राष्ट्र प्रथम की भावना पर चलती है। हमने जब गुजरात में पानी पहुंचाने की योजनाओं पर काम किया था और राजस्थान को पानी देने की बात आई थी, मुझे बराबर यह हिंदुस्तान के हर कोने में एक राज्य दूसरे राज्य से पानी के लिए लंबे अरसे से लड़ाइयां चल रही है। राजस्थान के लोगों को भी लगता था कि पता नहीं गुजरात नर्मदा का पानी देगा कि नहीं देगा, लेकिन हमारा सौभाग्य था कि राजस्थान में भी बीजेपी सरकार, गुजरात में भी बीजेपी सरकार, उस समय मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था, यहां बहन वसुंधरा जी यहां मुख्यमंत्री थी, और हम दोनों ने मिलकर बिना कोई संघर्ष, बिना कोई वाद विवाद, बिना कोई आंदोलन, बिना कोई लड़ाई गुजरात से नर्मदा का पानी राजस्थान के साथ साझा किया और राजस्थान के कई गांवों तक मां नर्मदा का पानी पहुंच रहा है। अभी भजनलाल जी बड़े भावुक होकर पानी की इस काम का वर्णन कर रहे थे। भाइयों बहनों, अब जब राजस्थान और हरियाणा दोनों राज्यों में भाजपा सरकार है तो पहली बार आपसी सहमति से समाधान निकाले गए। अब राजस्थान और हरियाणा सरकार मिलकर शेखावटी तक पानी पहुंचाएंगे। हाल ही में दोनों राज्यों के बीच समझौते पर मोहर भी लग चुकी है। इस समझौते के तहत हथनी कुंड बैराज से पानी राजस्थान लाया जाएगा, इसके लिए अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसका लाभ सीकर, चूरू, झुंझुनू और आसपास के पूरे शेखावटी क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। इस परियोजना पर लगभग 34,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथियों, आने वाले समय में अपर यमुना बेसिन में रेणुका, लखवाड़ और किशाऊ बांधों का निर्माण पड़ा होने पर राजस्थान को पानी का और लाभ होगा। गांवों में नल से जल पहुंचाने का काम भी तेजी से आगे बढ़ा है। राम जल सेतु परियोजना भी इसी सोच का परिणाम है। साथ ही राजस्थान में जल संरक्षण के लिए जल संचय जनभागीदारी भी बड़ी भूमिका निभा रही है। देश में इस अभियान के तहत जल संरक्षण के लिए करीब करीब 25 लाख सॉक पिट्स बने हैं। राजस्थान में भी 1.25 लाख से ज्यादा सॉक पिट्स बनाए गए हैं। इससे पानी संरक्षित हो रहा है, ग्राउंड वाटर का स्तर सुधर रहा है। मैं इन प्रयासों के लिए केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकारों को और शेखावटी क्षेत्र के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज जब देश कोई संकल्प लेता है, कोई लक्ष्य बनाता है, तो राजस्थान उसके केंद्र में होता है। आज राजस्थान में तेज गति से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण हो रहा है। नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। आज जयपुर मेट्रो फेज टू की आधारशिला और जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन, ये राजस्थान के विकास को और गति देंगे और नई उड़ान देंगे। जयपुर में फेज टू पूरा होने के बाद जयपुर का कुल मेट्रो नेटवर्क 50 किलोमीटर से अधिक हो जाएगा। पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण मेट्रो नेटवर्क एक दूसरे से जुड़ जाएगा। इससे स्थानीय लोगों को आसानी तो होगी, पर्यटकों के लिए सुविधा भी बढ़ेगी। साथियों, आने वाले समय में हमें विकास के और भी नए आयाम छूने हैं। मुझे पूरा भरोसा है आप सब इसी तरह डबल इंजन सरकार को आशीर्वाद देते रहेंगे। हम साथ मिलकर राजस्थान के नए भविष्य का निर्माण करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं एक बार फिर राजस्थान रिफाइनरी के लिए, अन्य विकास कार्यों के लिए देशवासियों को, राजस्थान वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। दोनों मिट्टी ऊपर करके राजस्थान की ताकत नजर आए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: So that was Prime Minister Narendra Modi speaking in Balotra in Rajasthan after inaugurating the petrochemical complex, and he's also highlighting how, given the current situation and the global energy crisis that the world witnessed during the West Asia war, it becomes even more significant. Such a complex becomes even more significant. He also spoke on the fuel, petrol, diesel crisis, the LPG crisis, and he spoke about how the government tackled the situation, how Indians were also united backing the government, and how government absorbed the shock and did not let the Indians suffer. And he also spoke about the situation, and due to the crisis the domestic LPG could have reached the 2000 rupees mark also, but the government did not let that happen, and the prices were well below 1000 rupee itself. In fact, he also spoke about the petrol and diesel prices, how 75,000 lakh crore loss was incurred by the oil firm so that the common man does not suffer because of the crisis. And he also, in fact, attacked the opposition for spreading misinformation and panic during the crisis, the energy crisis. With that, we're now slipping into a very short break. Stay with us.
2: Watching India Today.
3: Tune in's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?

0: And well ahead of Prime Minister Narendra Modi's visit to Australia, death threat targeting Prime Minister surfaces. The threat that appeared beneath.
1: भाषा के हर पहनाव के हर खानपान के लोग यहाँ हैं. यानी कि अलग सा माहौल मैंने अनुभव किया. एग्जीबिशन विजिट के दौरान भी मैंने कई बेटे बेटियों से बातचीत की और एक बात जिसको मैं बड़े गर्व से उल्लेख करना चाहूंगा, इन बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल जिस आत्मविश्वास से वो बातें कर रहे थे, टेक्नोलॉजी के संदर्भ में जो उनका विश्वास था कहने का, कम से कम मैं तो इंप्रेस हो गया. साथियों, सीजी सेमी का ये प्लांट भारत, जापान और थाईलैंड के हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स के साझा प्रयासों का भी प्रतीक है. ये केवल एक बिजनेस वेंचर नहीं है, ये टेक्नोलॉजी भरोसे और साझेदारी का ऐसा मॉडल है जो भारत की सेमीकंडक्टर जर्नी को नई गति देने वाला है. बीते सवा दो सालों में आप सभी ने स्क्रैच से स्केल तक इस पूरी फैसिलिटी को आकार दिया है. आज हम इसके कॉमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत कर रहे हैं. मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी. 20 करोड़, आपको लगता होगा कि मोदी जी ने गलती कर दी, 20 लाख को 20 करोड़ बोल दिया. इधर ताली बजाने में देर हो गई. 20 करोड़. और मुझे बताया गया, आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं, आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है.

0: मिमी।
1: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।

0: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included.
1: Oh yeah.
0: So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
2: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
3: To right field, and it will leave.
2: From the first pitch of the season to the stretch run,
3: and that's the ball game.
2: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
4: Are watching India Today.
5: ने साल भर आपसे बहुत क्रिटिकल सवाल पूछे.
6: Can we trust the pollution numbers in Delhi?
7: AQI in the National Capital Regions has gone up to 900 to 1000.
8: मैं तो सुन ही रही हूँ तब से आपकी बात. मैं बस कहना चाह रही हूँ.
7: Who do Indians blame? For Delhi's toxic air. कोई और होता तो शायद इस इंटरव्यू के लिए आज अग्री नहीं करता, लेकिन आप यहाँ बैठी हैं, हमारे सवालों का जवाब देना चाहती हैं, सो कूडोस टू यू. ईवी पॉलिसी क्वेश्चन मार्क अब इम्प्लीमेंटेशन पर है.
9: वी आर रेडी फॉर दैट. आपको चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर से कहीं दिक्कत आने वाली नहीं.
7: 33% अभी भी जो पोल्यूशन आता है वो कमर्शियल ट्रक्स का है. उस पर आपकी ये पॉलिसी इतनी अग्रेसिव क्यों नहीं हो पाई?
9: आज जितना हम कर रहे हैं क्या पिछली किसी सरकार ने इतना किया? ऑड इवन, रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ, इंजन ऑफ, इसके अलावा क्या किया पिछली सरकारों ने?
7: समर टाइम पर गैप लग रहा था. अगर आप रोड पर जाएं तो आपको दिखता है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है. दिल्ली पुलिस आपके पास है नहीं, कैसे करेंगे आप?
9: पॉल्यूशन 2 महीने करने का काम नहीं है, ये साल भर करने का काम है. बहुत ही सख्ती से इनको लागू किया जाएगा.
7: You have the unique opportunity to really change the face of Delhi.
9: हमारी नियत भी साफ है और हमारी नीतियां भी स्पष्ट है.
7: रेखा गुप्ता का फर्स्ट टर्म एज चीफ मिनिस्टर एंड होते होते
9: ये सवाल आपने मुझसे पहले भी पूछा था, तो आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, हम लोग देखते हैं.
7: हेलो एंड वेलकम टू दिस स्पेशल ब्रॉडकास्ट. पिछले कई महीनों और सालों में हम लगातार आपके पास खबर लेकर आ रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण कितना बढ़ गया है. हमने सक्सेसिव सरकारों में, चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, लगातार सवाल उठाए. ऑड इवन चलता है कि नहीं चलता है, स्मॉग टावर काम करता है कि नहीं, आर्टिफिशियल रेन से कितना फर्क पड़ेगा, सब पर हमने काफी क्रिटिकल क्वेश्चन उठाए सरकार को. बट टूडे, टू गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, वी हैव अमंग्स अस एक ऐसी पॉलिसी जो एक बहुत पिविटल रोल प्ले करने वाली है फॉर दिल्ली's फ्यूचर. दिल्ली के पास एक नई अब ईवी पॉलिसी है. ये पॉलिसी पहले भी थी, लेकिन इस बार जो उसके चेंजेस आए हैं वो अलग क्यों हैं और क्यों इम्पॉर्टेंट हैं? क्योंकि ये सिर्फ इंसेंटिव्स नहीं देती, ये एक हार्ड डेडलाइन लगाती है कि कब आईस व्हीकल्स जो है, पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स हैं, फेज आउट हो जाएंगे दिल्ली से. ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि अगर एक बड़ा चेंज दिल्ली में आया था सीएनजी पॉलिसी के चक्कर में, सीएनजी पॉलिसी के थ्रू जो शीला दीक्षित लेकर आई थी, तो ईवी पॉलिसी उससे ज्यादा या डेफिनेटली उससे कम इम्पैक्ट नहीं लाने वाली है. और वो लेकर आई हैं रेखा गुप्ता, जो हमारे साथ आज बैठी हुई हैं. वेलकम टू द प्रोग्राम मैम.
9: थैंक यू सो मच.
7: आई हैव टू से दिस आउट राइट इन द बिगनिंग कि हमने साल भर आपसे बहुत क्रिटिकल सवाल पूछे. कोई और होता तो शायद इस इंटरव्यू के लिए आज अग्री नहीं करता, लेकिन आप यहां बैठी हैं, हमारे सवालों का जवाब देना चाहती हैं, सो कूडोस टू यू.
9: थैंक यू.
7: मेरा पहला सवाल आपसे ये है, ईवी पॉलिसी के जो इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है, पॉलिसी का जो है इसके बारे में, इवन जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उन्होंने काफी प्रेस करा है, काफी आपको लोगों ने बताया होगा, फीडबैक जो हमें भी मिल रहा है, हम जितने एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं सबने काफी अच्छे से रिसीव करी है ये पॉलिसी. क्वेश्चन मार्क अब इम्प्लीमेंटेशन पर है. और मेरे रिसर्च के हिसाब से तीन चीजें हैं जिस पर ये इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड करता है. नंबर एक, आप इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर किसे बढ़ाकर लाएंगी. नंबर दो, क्या आप ईवी जो व्हीकल्स हैं वो प्रोवाइड कर पाएंगी. और नंबर तीन, क्या आप ईवी व्हीकल्स वो जो हैं सही दाम पर, एक कंपेटिटिव प्राइस पर लोगों को दे पाएंगी. पहले वाले से शुरू करते हैं, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या आपके एग्जीक्यूशन प्लान्स हैं?
9: ये बात बहुत सही है सोनल कि इस ईवी पॉलिसी की सक्सेस बहुत बड़ी मात्रा में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है और वी आर रेडी फॉर दैट. हमने पूरी तरीके से उसको प्लान किया, उसमें जितने भी स्टेक होल्डर है उसको पार्टी बनाया. वैसे तो जनरली लोग अपने प्राइवेट व्हीकल के लिए घरों से ही चार्जिंग करता है मैक्सिमम, पर फिर भी पब्लिक प्लेसेस पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए. उसमें हमने ओईएम्स को इन्वॉल्व किया है, उसमें हमने सोसाइटीज के लिए, उसमें सरकार के द्वारा डीटीएल, हर एक एजेंसी इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में मदद करे. और उसके लिए बहुत ही ट्रांसपेरेंटली हमने सिंगल विंडो सिस्टम, ताकि लोग इसमें जो अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें ईवी के लिए, उसमें उनको कहीं पे भी हर्डल फेस ना करनी पड़े. सरकार उनको पूरी तरीके से फैसिलिटी देगी, सिंगल विंडो क्लियरेंस देगी, मोटिवेट करेगी, सपोर्ट देगी. और अभी वर्तमान में 9000 चार्जिंग पॉइंट हमारे पास हैं. हमारा टारगेट 32000 तक जाने का है और उसके लिए लगातार हमने उसको नोडल एजेंसी डीटीएल को बनाया है. हम काम कर रहे हैं, ओईएम्स को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर किया है कि उनको भी अपने जितने भी कस्टमर्स हैं उनके लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, इवन सोसाइटीज को, और कॉमन प्लेसेस पे भी हम इसको लगाने वाले हैं. तो मैं श्योर करती हूं दिल्ली की जनता को कि आपको चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर से कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है.
7: जी, पॉलिसी में लिखा है कि 32,000 चार्जिंग पॉइंट्स बनेंगे मार्च 2030 तक. अब चार्जिंग पॉइंट्स के लिए आपको सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर देना नहीं होता है, आपको लैंड भी प्रोक्योर करनी होती है. और दिल्ली बहुत ही पिक्यूलियर स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है. लैंड कई बार आपकी नहीं है, कभी एमसीडी की है, कभी किसी और अथॉरिटी की भी है, कभी एनडीएमसी की है. ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है. आप कॉन्फिडेंट हैं कि ये नंबर रीच हो पाएगा?
9: मैं आपको इस बात को जरूर ध्यान दिलाऊंगी कि जब बात होती है कि डबल इंजन सरकार की, आज दिल्ली स्टेट में जो गवर्नमेंट है, सेंटर में, स्टेट में, एमसीडी में, सभी एजेंसीज एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हैं. और जब हमने आरोग्य मंदिर खोले तो हमने बाकी एजेंसीज की लैंड को भी यूटिलाइज किया, इवन डीडीए, एनडीएमसी, ड्यूसिप, सबने अपनी लैंड दी. और इसी तरीके से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी हमने लैंड ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं. एजेंसी से वो जमीन लेना, किसके जिम्मे क्या काम होगा, एवरीथिंग इज प्लान्ड. और कहीं पे भी एटलीस्ट लैंड की कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है. और ये सारा काम कोई एक दिन में नहीं हुआ है, एक साल से इस पॉलिसी पे काम किया जा रहा है. डिफरेंट स्टेक होल्डर से बात की गई है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, यहां तक कि जीरो से लेकर के एंड पॉइंट तक, ए टू लेकर जेड तक, सारे के सारे कामों को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा. जहां हमने अपनी पॉलिसी में इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचा तो वहां हम उस बैटरी के डिस्पोजल की भी बात कर रहे हैं, ई वेस्ट की भी बात कर रहे हैं. तो इन फ्यूचर हमको ई वेस्ट डिस्पोजल का एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिएगा, उसके लिए भी आज से काम हो चुका है.
7: जी जी, पूरी पॉलिसी में करीब 7000 करोड़ की बात हुई है जो आप एक तरह से वेवर दे रही हैं. लॉन्ग टर्म अगर आप देखें तो उसमें 8000 करोड़ और हैं. टोटल 15000 करोड़ की ये स्कीम है. इसमें से आप क्या करेंगी कि ये टू वी व्हीकल्स जो हैं, टू व्हीलर्स हैं बेसिकली, ईवी व्हीकल्स, वो अफोर्डेबल हो जाएं? क्योंकि अभी देखिए क्या हो रहा है, अडॉप्शन में आपको कहां दिक्कत आएगी कि जो टू व्हीलर चलाने वाले लोग हैं वो जो एक आइस व्हीकल खरीदते हैं या वो पेट्रोल या डीजल लेते हैं, वो कम दाम पर आती है, आपकी ईवी जो है वो महंगी है. इसमें से क्या वो मैच कर पाएंगी? क्योंकि अडॉप्शन तो तभी होगा, आदमी खरीदेगा तभी जब उसे लगेगा कॉस्ट बेनिफिट मिल रहा है.
9: देखिए, एडॉप्शन जो है बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है. एडॉप्शन इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि आप कितनी आसानी से वो सब्सिडी का जो कैश बेनिफिट है वो कस्टमर तक पहुंच पाता है और हमने अपनी इस पॉलिसी में खाली सब्सिडी नहीं दी, स्क्रैपिंग का भी इंसेंटिव दिया है। तो ये टू वे चीज है और फिर जो इंसेंटिव है वो डीबीटी के माध्यम से कस्टमर को मिलने वाला है, वो भी टाइम बाउंड मैनर में। आपको अपनी आरसी लेने के 30 दिन के अंदर अप्लाई करना है और 60 दिन के अंदर आपको वो कैश जो डीबीटी पहुंच जाए ये हम एंश्योर करने वाले। तो ये सारी की सारी चीजें जो इस ईवी पॉलिसी में लाई गई है वो एडॉप्शन के लिए बहुत ही परफेक्ट है, लोगों के लिए मोटिवेटिंग है कि आपको सब्सिडी भी मिल रही है, आपको स्क्रैपिंग वैल्यू भी मिल रही है। और जब एक एक व्हीकल पे यानी टू व्हीलर का अगर मैं एग्जांपल लूं तो 30,000 रुपए आपको सब्सिडी दे रहे हैं जो कि पूरे देश में कहीं नहीं है, इतना बड़ा अमाउंट सब्सिडी का। फिर स्क्रैपिंग पे हम 10,000 रुपए दे रहे हैं, तो आप सोचिए कि जब रोड टैक्स माफ है, रजिस्ट्रेशन फी माफ है, आपको स्क्रैपिंग मिल रहा है, आपको सब्सिडी मिल रही है, तो हर कोई लेना चाहेगा। इस दिल्ली शहर के लिए जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है उतनी यहाँ की जनता की भी है, तो हम मैंडेट भी कर रहे हैं और मोटिवेट भी कर रहे हैं।
5: अगर हम लास्ट पोल्यूशन रिपोर्ट उठाएं, टेरी की रिपोर्ट ही ले लेते हैं, सरकार भी उसी को देखती है, उसके बाद से कोई कॉम्प्रिहेंसिव पोल्यूशन रिपोर्ट बनी भी नहीं है मेरे ख्याल से, उसमें अगर आप उस रिपोर्ट को देखें तो करीब 46% दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स से आता है, जिसको आपने इस पॉलिसी में काफी अच्छे तरीके से टैकल करा है, आपने काफी इंसेंटिव्स दिए हैं एंड देयर इज अ डेडलाइन कि अगले साल से स्टार्टिंग जनवरी ऑफ 2027 देयर विल बी अ फेज आउट, नई थ्री व्हीलर्स नहीं रजिस्टर होंगी, टू व्हीलर्स नहीं रजिस्टर होंगे, वो सारे आपके आपने बताई है। लेकिन इसमें से 33% अभी भी जो पॉल्यूशन आता है वो कमर्शियल ट्रक्स का है, उस पर आपकी ये पॉलिसी इतनी अग्रेसिव क्यों नहीं हो पाई?
9: दो कारण है इसमें। एक तो हमारी ये जो पॉलिसी है वो कॉमन मैन ओरिएंटेड है, उसमें जो बड़ा सेगमेंट जैसा आपने टैरी की स्टडी पे बताया कि जो बड़ा सेगमेंट अगर हम पॉल्यूशन को समझें कि जो एमिशन फ्री की तरफ हमें जाना है, तो उसमें बड़ा सेगमेंट है टू व्हीलर का और थ्री व्हीलर का, उसके बाद में 46% आप ही ने बताया, और उसके बाद 33% है जो N2 हमारे ट्रक्स हैं। N2 ट्रक्स का 33% इन्वॉल्वमेंट हम मानते हैं, तो हमने उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है कि जो 1 जुलाई टू 30 सितंबर जितने भी N2 ट्रक्स अपने आप को ईवी में कन्वर्ट करेंगे, उस अर्लियर जो पहले के शुरू के 1,000 ट्रक्स को हम दिल्ली में 24 आवर्स का जो नो एंट्री जोन था उसमें अलाउ करेंगे। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है जो कि स्टेक होल्डर ने भी माना और वो इस बात पे राजी हुए कि हाँ ये हमारे लिए बेनिफिट है। सेकेंडली, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से भी इसमें बहुत सारे रिलीफ दिए जा रहे हैं जो दिल्ली एनसीआर के पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए है, कि ये N2 व्हीकल्स पर सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से 8% OEMs के माध्यम से डिस्काउंट दिया जा रहा है और 5% जो है उनको इंटरेस्ट में वेवर दिया जा रहा है, ताकि ये जितने लोग भी N2 ट्रक्स के मालिक हैं उनको ये बेनिफिट मिले और वो भी ईवी पे आए।
5: अब मैं N2 के लिए जस्ट क्लैरिफाई कर दूं क्योंकि ऑडियंस को शायद समझ में आया, N2 आपके N1 हो गई आपके, वो छोटा हाथी जिसे बहुत बोला जाता है कॉमनली दिल्ली में, और N2 आपकी हो गई जो बड़ी कार्गो ट्रक
9: बड़ी होती है जो 3.5 टन से 12 टन तक का वेट लेकर के चलते हैं, दैट इज N2
5: जी। बट मैम ये बात आप और हम दोनों जानते हैं कि जितनी हमारी दिल्ली में गार्बेज कलेक्शन ट्रक्स हैं, जो पुरानी ड्रग्स हैं, जो चाहे दिल्ली पुलिस यूज कर रही हो, जो पुरानी MCD की ट्रक्स हैं, जो बाकी वाटर स्प्रिंग एक्सेट्रा के लिए भी जो यूज होती है, असली पोल्यूशन तो इतनी पुरानी है वो उन्हीं से निकलता है, उस पर आपको नहीं लगता है कुछ और देना चाहिए था?
9: आपको ये जानकर के खुशी होगी और दिल्ली की जनता को भी बहुत अच्छा लगेगा कि ये पॉलिसी केवल पब्लिक के लिए नहीं है, ये केवल प्राइवेट सेक्टर के लोगों के लिए नहीं है, सरकार ने भी पूरी तरीके से इसको फॉलो करने के लिए हर चीज को अडॉप्ट किया है। हमने दिल्ली में जो मैकेनिकल स्वीपिंग के लिए MRS मशीनें खरीदने के लिए जो टेंडर लगाए वो भी दैट इज ओनली फॉर ईवी व्हीकल, हम ईवी ही ले रहे हैं। हमने अपने मैंडेट में ये भी रखा है दिल्ली सरकार भी जो भी नए व्हीकल जो है परचेज करेगी या लीज करेगी वो सब ईवी होने चाहिए। आज की डेट में हमारे वाटर स्प्रिंकलर हो, हमारी MRS मशीनें हो या जो भी अदर व्हीकल्स हैं, उन सबको सरकार भी ईवी की ओर जा रही है, अपने प्राइवेट व्हीकल भी हम लोग ईवी खरीद रहे हैं, तो कहीं से कहीं तक भी
5: 100%
9: और हम सब मिलकर के वो प्राइवेट स्कूल स्कूल्स हों, वो हमारे ट्रक्स हों, टू व्हीलर्स हों, थ्री व्हीलर्स हों, गाड़ी हो, सब ने मिलकर के जब ये ठान लिया है कि दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री करना है तो उसमें दिल्ली सरकार भी एक बड़ी यूनिट है और हम अपने सारे व्हीकल्स को ईवी की ओर लेके जा रहे हैं।
5: ग्रिड इतना पावरफुल है कि इतना चार्जिंग प्रोवाइड कर पाएगा हमारा,
9: ये भी एक और डायमेंशन है जिसमें कि पूरी तरीके से हमारे ग्रिड्स, हमारे सब स्टेशंस को मजबूत किया जा रहा है। उसका भी लॉन्ग टर्म प्लान हमने बनाया है कि पीरियोडिकली हम उस पर कितना खर्च करने वाले हैं, अपने सब स्टेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपने पावर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी, नो डाउट। आज यदि हम 9000 मेगावाट पे खड़े हैं तो हमें ये डिमांड लगातार बढ़ेगी, तो उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है उसको हम कर रहे हैं और दिल्ली की जनता को कहीं पे भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ये सारे डिपार्टमेंट पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं और उसको काम करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ चुकी है।
5: आपने विंटर पॉलिसी की बात करी तो उस पर आ जाते हैं। आपने एक विंटर पॉलिसी निकाली है जिसमें आप मैंडेटेड रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे। अभी तक ही ग्रैप पर डिपेंड करता था, जब पोल्यूशन लेवल ज्यादा जाते थे तो वो पॉलिसीज लगती थी, जब नहीं थे तो वो रिस्ट्रिक्शंस हट जाते थे। तो क्या आप ये समझना चाहिए कि ये पॉलिसीज रहेंगी फ्रॉम नवंबर 1st टू फरवरी 28th और ग्रैप अब नहीं लगेगा?
9: देखिए, पिछले साल की वर्किंग में हम ये समझ पाए कि ये ग्रैप जो है कभी दो दिन लग गया, एक दिन छूट गया, फिर इस तरीके से लगातार दिल्ली के लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, ना काम हो पाता है ना ही पॉल्यूशन पे कोई इफेक्टिव रिजल्ट आता है। इस बार हमने बहुत ही टाइमली यानी कि जुलाई माह में ही विंटर एक्शन प्लान अनाउंस किया है जिसमें कि डेट वाइज हमने ये बताया है कि क्या डूज एंड डोंट्स हैं, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। दिल्ली के लिए बता दिया गया है कि आपको पीयूसी के बिना पेट्रोल नहीं मिलेगा, पूरे साल नहीं मिलेगा, उस टाइम पीरियड में भी नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको वर्क फ्रॉम होम की बात की गई है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में आप उस समय नहीं कर सकते आउटडोर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। आप
5: 10th of December से जनवरी 20th तक कोई कंस्ट्रक्शन कंप्लीट बैन है,
9: कंप्लीट बैन होगा। और इसी तरीके से ग्रैब भी समझ लीजिए कि ये नोटिफाई हो गया है, इसके बाद अलग से कोई और सूचना आपके पास नहीं आएगी। उस दौरान जो भी एक्टिविटीज बैन थी वो आप नहीं कर पाएंगे,
5: पर बाकी के साल में जो ग्रैब की एक्टिविटीज है वो चलती रहेंगी,
9: वो एज इट इज
5: चलती रहेंगी। लेकिन मैम, हम क्योंकि ग्रैप की बात कर रहे हैं, आई हैव टू आस्क यू दिस। ग्रैप में प्रॉब्लम ये है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है, राइट? आपके पास दिल्ली पुलिस नहीं है, वो जाके सड़कें, आप सड़कों पर गाड़ियों को नहीं रोक पाती हैं, आप कंस्ट्रक्शन पे बैन्स नहीं लगा पाते हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया पोस्ट आते हैं, कैसे प्रिवेंट करेंगी?
9: देखिए, जब इतना बड़ा प्लान हम लेकर के आए हैं और इतनी सीरियसनेस हर लेवल पर है, दिल्ली सरकार के लेवल पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर, तो हमने सारी एजेंसीज को एक प्लेटफॉर्म पे ला करके उस तरीके से तैयारी शुरू की है। हमने अपनी एजेंसीज को स्ट्रेंथन किया है, हमने लोग रिक्रूट किए हैं, ऑफिसर्स रिक्रूट किए हैं जो कि इस पूरे के पूरे प्लान को ऑब्जर्व करेंगे, उस पर जो कार्रवाई करनी है उन सबको करेंगे। पुलिस हो, ट्रैफिक पुलिस हो, हर व्यक्ति उसके ऊपर काम करेगा और पूरी सख्ती के साथ में हम जितनी भी नोटिफिकेशंस जारी हुई हैं उसको हम लागू करेंगे।
5: आप ऑप्टिमिस्टिक हो रही हैं, पर दिल्ली के लोग जुगाड़ू हैं। ऑड एंड इवन लगा था, सबने अपने घर में एक एक गाड़ियां रख ली, अब आपने ईवी करी है, सब बोलेंगे सेकंड कार ईवी कर लेते हैं, पहली कार तो अभी भी ईवी नहीं करेंगे। लोग कुछ ना कुछ तो पेज ढूंढ लेते हैं। देखिए, दिल्ली के लोग अपना दिमाग खूब लगाते हैं, तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कोऑर्डिनेशन कैसे होएगा? आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम दैट यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर दिल्ली पुलिस, तो क्या बातचीत होती है बैक चैनल में? आप कैसे इंश्योर करेंगे इन्फोर्समेंट हो, क्योंकि उसके बिना ये पॉलिसी नहीं काम कर सकती।
9: हमने पीछे ही अपनी डीपीसीसी को ऐसे वॉलंटियर्स लगाए, ऐसे हमने लोग अडॉप्ट किए वहां पर जो कि पूरी तरीके से वायुदूत का हमने उनको नाम दिया, जो इस काम को देखरेख करने वाले हैं। और मैंने आपको बताया कि हमारी सारी एजेंसीज इसमें लगने वाली हैं और हर तरीके से, चाहे हमारा पीडब्ल्यूडी हो, चाहे हमारा एनवायरमेंट विभाग है, इस काम को करने वाले हैं। और पुलिस हो, ट्रैफिक हो, हर एजेंसी को हमने इस कॉमन एजेंडा पे लेके आए हैं, सबको इसे फॉलो करना होगा। और दिल्ली का पोल्यूशन केवल सरकार की प्रॉब्लम नहीं है, जनता की भी तो प्रॉब्लम है। आप आपने कहा कोई व्यक्ति दो गाड़ी ले सकता है, जरूर रख सकता है, पर एट ए लार्ज हमने जो ईवी पॉलिसी दिल्ली में लॉन्च की है वो उस मध्यम वर्गीय लोगों के लिए की है जो टू व्हीलर पे चलता है, जो 30 लाख से नीचे की गाड़ी लेके एक सिंगल गाड़ी ही उसका अपना जिंदगी भर की कमाई होती है जिसको वो लेके चलता है। हो सकता है घर में 4 गाड़ी हो सकता है किसी के लिए ईवी की ऑप्शन एक सेकेंडरी ऑप्शन हो सकती है, जरूर हो सकती है, हर वर्ग का व्यक्ति यहां रहता है, परंतु एट ए लार्ज हमें लोगों को उस तरफ मोटिवेट करना है, उसी के लिए हम मैंडेट भी लाए हैं और वही हमारा प्रयास भी है, और व्यक्ति प्रयास करते हुए इसको बेहतर खूब से बेहतर की ओर लेके जाने का हमारा निश्चय है और वो हम कर रहे हैं, हमारी नीयत भी साफ है और हमारी नीतियां भी स्पष्ट है।
5: मैम, आई लव दैट यू आंसर ऑल क्वेश्चंस विद अ स्माइल ऑन योर फेस, आप ऑप्टिमिस्टिक बहुत हैं इसके बारे में, तो एक ऑप्टिमिज्म ही नंबर मुझे दे दीजिए कि लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में आपके हिसाब से आफ्टर ईवी पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेड, हम 27 का नंबर लेकर चलते हैं जनवरी, हाउ मच ऑफ पोल्यूशन विल कम डाउन?
7: आप ये देखिए परसेंटेज में या टाइम में अगर हम पोल्यूशन को बांधेंगे तो मैं यही कहूंगी कि पोल्यूशन तो भाई बंधने वाली चीजों में तो नहीं है। इस ईवी पॉलिसी के साथ और ईवी पॉलिसी के अलावा भी जो मेजर्स हम लोग कर रहे हैं, हम 70 लाख पेड़ पौधे इस एक साल में लगाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हम अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को ईवी पे लेकर के जा रहे हैं, हमने डस्ट मिटिगेशन पे बड़ा काम किया है, और इस सब चीजों को जोड़ते हुए जब सारी चीजें अलग अलग डायमेंशन में काम करते हुए भी हम जब एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जितनी तादाद में जनता ईवी को अडॉप्ट करना शुरू करेगी उतना ही धीरे धीरे करके बाकी सारे एफर्ट्स करते हुए हम पॉल्यूशन को कम करते हुए जाएंगे। आज पूरी तरीके से दिल्ली हर सेगमेंट पे काम कर रही है, हर सेक्टर पे काम कर रही है।
5: आपके दिमाग में कि इतना परसेंटेज होगा, कैलकुलेशन करा होगा,
7: जब पॉल्यूशन
5: आपके दिमाग में होगा कि 29 के बाद आप देखेंगे डिप होना शुरू हो जाएगा, क्लियर नहीं होगा पर डिप होना शुरू हो जाएगा।
7: क्या आप किसी भी एक दिन में आप ये बता सकती हैं कि पॉल्यूशन कितनी मात्रा में आपके पास आ जाएगा, किस दिन कितना होगा? क्या इस सवाल को आप बांध सकती हैं, आप मुझे बता सकती हैं कि इतना पॉल्यूशन होगा? आप कहेंगे इतना इस दिन होगा तो मैं कहूंगी इतना इस दिन कम हो जाएगा।
5: नहीं, पर आपके दिमाग में एक गोल होगा ना कि इस साल तक मेरे फर्स्ट टेन्योर, ये बता दीजिए, चलिए रेखा गुप्ता का फर्स्ट टर्म एज चीफ मिनिस्टर एंड होते होते,
7: ये सवाल आपने मुझसे पहले भी पूछा था जब आप मुझे समय में बांधना चाहती थी, तब भी मैंने कहा था कि बोलूंगी कम और काम ज्यादा करके दिखाऊंगी। मैं आज भी कह रही हूं कि मुझे वायदे बड़े नहीं करने, काम ज्यादा करना है। जिस एक साल की बात मैं कह रही हूं, जो आपने मेरे मुख्यमंत्री बनते ही मुझसे प्रश्न किए थे, आज यहां मैं बैठ करके आपको उन सारे सवालों का जवाब दे रही हूं कि मैंने क्या क्या किया। मेरे हाथ में अपना काम करना है, दिल्ली को बेटर फ्रेमवर्क में लेके आना है, उन पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन में एग्जीक्यूशन को करना है, मेरा दायित्व है, उसके बाद में रिजल्ट आना जनता पे, लोगों की इन्वॉल्वमेंट पे और नेचर पे डिपेंड करता है। पर एक भी सेक्टर छूटा नहीं है जिसपे हम काम कर रहे हैं, हमने कूड़े के पहाड़ कम किए, हमने वाटर बॉडी को रिवाइव किया, हमने वॉल टू वॉल रोड्स बनाकर डस्ट मिटिगेशन किया, हमने प्लांटेशन के साथ में ग्रीन कवर बढ़ाया, हमने फॉरेस्ट नोटिफाई किए, हर एक सेगमेंट पे काम हो रहा है, तो दिल्ली आगे बढ़ रही है, दिल्ली पॉल्यूशन कम करने की दिशा में रोज एक कदम आगे बढ़ाती है।
5: और मैंने इसीलिए स्टार्टिंग ऑफ द इंटायर इंटरव्यू में मैंने आपसे बोला था कि मैं ये बेबाक बोल सकती हूं दैट इट्स अ गुड पॉलिसी इफ इम्प्लीमेंटेड वेल। तो मैं यही जानना चाह रही हूं कि इससे पहले भी बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं, लेकिन कॉन्क्रीट एक्शन तो तभी माना जाएगा जब पोल्यूशन कम होगा, आई एम श्योर। ये सब
7: तो
5: करने
7: आप
5: के
7: भी
5: बार...
7: यही हैं, मैं भी यही हूं, हम लोग देखते हैं, अगर कम होता है वो भी समझ में आएगा और कहां कमी रहती है तो उसके आगे बढ़ेंगे। आज जितना हम कर रहे हैं क्या पिछली किसी सरकार ने इतना किया? ऑड इवन, रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ, इंजन ऑफ, इसके अलावा क्या किया पिछली सरकारों ने? ईवी पॉलिसी लेकर के आए पर उसकी सब्सिडी नहीं दी, उस सब्सिडी को भी हमारी सरकार ने आने के बाद पे किया है। अगर हम चाहते तो वो पेमेंट ना करते पिछली सरकार के टाइम की, पर जनहित में 45 करोड़ रुपए वर्तमान की सरकार ने पिछली सरकार की लायबिलिटी को पे किया। तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में इस शहर को
9: बेहतर बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं, तो मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूं कि दिल्ली की जनता जो चाहती है हम वो काम कर रहे हैं। आज एक्चुअल में ये एफर्ट हो रहे हैं।
5: आई अग्री विद यू मैम, आई अग्री विद यू ऑन वन थिंग कि आप इस समय बहुत ही यूनिक टाइम पे चीफ मिनिस्टर बनी है। दिल्ली सरकार बीजेपी की है, नेबरिंग स्टेट्स बीजेपी के हैं, एलजी आपका साथ देते हैं, सेंटर बीजेपी का है। यू हैव द यूनिक अपॉर्चुनिटी टू रियली चेंज द फेस ऑफ दिल्ली। यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड वॉट आर योर टॉप थ्री प्रायोरिटीज, थिंग्स दैट यू वॉन्ट टू लीव एज रेखा गुप्ताज लेगेसी, कि ये तीन चीजें आपने बदली अपने समय पर जो आप करना चाहती हैं पर्सनली।
9: मैं दिल्ली की जनता के लिए चाहती हूं कि दिल्ली शहर में वेस्ट मैनेजमेंट
5: नंबर वन
9: प्रॉपरली होना चाहिए, जो कि आज तक नहीं था। आज दिल्ली शहर में यदि 14,000 मीट्रिक टन कूड़ा रोज जनरेट हो रहा है तो उसका डिस्पोजल केवल 6,000 मीट्रिक टन हो रहा है। वेस्ट मैनेजमेंट को पूरी तरीके से इफेक्टिव करने के लिए मेरी पहली प्रायोरिटी है
5: जी।
9: सेकेंडली, हमारा जो सीवेज का सिस्टम है वो आज भी आधी दिल्ली में सीवर की लाइनें नहीं है, जो कि कारण बनती है यमुना की गंदगी का। पूरी तरीके से दिल्ली के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज लाइनों को लाइनअप करने की जरूरत है, पूरा का पूरा सिस्टम चैनलाइज करने की जरूरत है, जिससे सीवेज प्रॉपरली डिस्पोज हो और यमुना गंदी ना हो। ये मेरी सेकेंड प्रायोरिटी है। और दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, उसमें स्कूल आते हैं, उसमें हॉस्पिटल आते हैं, उसमें हमारे रोड्स आते हैं, ड्रेनेज आती है, इन सबको बेहतर करें तो मुझे लगता है कि दिल्ली वालों का दिल जरूर खुश होगा और दिल्ली के लिए मैं वो कर जाऊं जो आज तक नहीं हो पाया।
5: चलिए मैम, यू हैव अ वेरी एस्पिरेशनल एंड वेरी ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। मैं यही कहूंगी कि दिल्ली वालों की तरफ से, मैं देखिए बाहर की हूं, मैं यहां पर काम करती हूं, मेरी कर्म भूमि है दिल्ली, मैं अपने बच्चे यहां पालती हूं, तो अ लॉट ऑफ पीपल लाइक मी रियली वॉन्ट दिल्ली टू डू वेल। एज अ रेजिडेंट ऑफ दिल्ली, आपको लगता है यहां की हवा ठीक नहीं है, यहां का पानी ठीक नहीं है, सड़क पे ट्रैफिक है, कई सारे लोग हैं, एक्सपैट्स भी हैं, जो अब दिल्ली में या भारतवर्ष के बारे में नहीं सोचते हैं उस तरह से, क्योंकि उनको लगता है यहां क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है। उस एक चीज को अगर आप चेंज कर सकती हैं, सो आई थिंक दैट विल बी द बिगेस्ट गेम चेंजर यू और एनीबडी एल्स कैन मेक। सो विद दैट आई लीव यू। एक आखिरी में आपसे क्या एक और चीज पूछ सकती हूं, मैंने ऑफ लेट नोटिस करा है कि आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हो गई हैं। या आई सी दैट यू आर मेकिंग रील्स, यू अप्रोच इट एंड यू हैव गॉट अ वेरी नाइस कैंडिड वे ऑफ स्पीकिंग टू पीपल। ये डिलिबरेट एफर्ट है टू रीच आउट, ये क्या सोच के कर रही हैं आप? मैंने आपसे पहले किसी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को ऐसे, दे आर गुड, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट्स मोटिवेटेड यू।
9: देखिए, मैं दिल्ली की बेटी हूं और दिल्ली की प्रॉब्लम, दिल्ली के लिए सॉल्यूशन जानती हूं, और मैं जनता के बीच में से आई हूं और जनता के बीच में रहना चाहती हूं। लोगों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन, मैं जनता की मुख्यमंत्री हूं, तो लोगों के बीच में रह के उनको सुन के उनकी बातों को जान करके काम करना चाहती हूं। तकलीफ जरूर हो सकती है, क्योंकि इससे पहले किसी मुख्यमंत्री ने किया नहीं कि आप लोगों के बीच में डायरेक्टली जाइए, उनसे पूछिए, बात कीजिए, कहीं किसी नाले की सफाई
5: सब करते थे, केजरीवाल ने भी करे,
9: किसी नाले की सफाई पे किस मुख्यमंत्री को आपने खड़े हुए देखा, कि किसी सड़क के बनने पे किस मुख्यमंत्री को खड़े हुए देखा, रात को, दिन में, सुबह, यमुना की सफाई से लेकर के कूड़ा, हर चीज जनता से जुड़ा हुआ जितने भी विषय हैं मैं उसमें इन्वॉल्व हूं, मैं उसका सॉल्यूशन चाहती हूं। जनता के साथ मिलकर के दिल्ली को बेहतर करना है, दिल्ली को संवारना है।
5: ऑल राइट, रेखा गुप्ता, गुड लक, थैंक यू सो मच, लाइक आई सेड, एनी फॉर टेकिंग ऑल द क्वेश्चंस डिस्पाइट नोइंग कि हम अपना काम करते रहेंगे, आप अपना काम कर रही हैं। आई लाइक दैट, थैंक यू सो मच, दिस इज अ गुड चैट,
9: थैंक यू सो मच।
4: यू आर वॉचिंग इंडिया टुडे।
1: Hey, it's Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
10: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
1: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of the action.
10: They score!
1: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
11: No drama, just the real Korean ritual. In every bottle of Aquajay, infused with Jeju-grown botanicals and powered by K-Beauty Science. Aquajay, now in India.
12: We are over, Jimmy.
13: Hey, life mein scratches to aayenge. गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।

0: जिमी।
1: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
2: No hacks, no drama, just the real Korean ritual. In every bottle of Aquajay, infused with Jeju-grown botanicals and powered by K-Beauty Science. Aquajay, now in India.

0: na Chandima Bhattacharya was one of the closest associate of Mamata Banerjee. Abhi wo bhi chhod ke chali gayi.
1: A massive political storm has erupted in Jammu and Kashmir over a controversial book allegedly cleared for government school libraries. The publication is accused of glorifying terrorists and separatist leaders, describing JKLF terrorist Maqbool Bhatt as a shaheed. It also allegedly presents separatist leaders Syed Ali Shah Gilani, Masarat Alam and Mirwais Omar Farooq in a favorable light and referring to the region as Indian-held Kashmir and Indian-occupied Kashmir. The controversy has triggered fierce backlash, with the BJP calling it an attempt to poison young minds and demand strict accountability.
2: ये जो बुक प्रकाशित हुई है और जिस बुक को जम्मू कश्मीर के शिक्षा विभाग ने अनेक विद्यालय के पुस्तकालयों में वितरित करने का काम किया है, जिस पुस्तक में हत्यारियों को, दोषियों को, आतंकवादियों, अलगाववादियों को, पत्थरबाजों को महिमा मंडित किया गया है, जिन दोषियों को सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाकर उनको आतंकवादी करार दिया था, ऐसे लोगों को इस पुस्तक में प्रकाशित करके शिक्षा की सामग्री बना के जम्मू कश्मीर के उन नौजवान बच्चों के मस्तिष्क में जहर भरने का काम किया है जो देश का भविष्य संवारने के लिए स्कूलों में जाते हैं।
3: जिन आतंकवादियों ने कश्मीर को दहलाया, जिन आतंकवादियों ने 30 साल तक कश्मीर में खून की होली खेली, और आप इनको शहीद कहोगे? आप मकबूल भट्ट जो टेररिस्ट है, मसरत आलम उसको लेजेंड कहोगे और मकबूल भट्ट को शहीद कहोगे? भारत का पैसा लेके भारत के खिलाफ आप यूज करोगे? भारत का पैसा भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए आप इस्तेमाल करोगे?
4: अफसोस इस बात का है कि हमारी जम्मू कश्मीर की इलेक्टेड सरकार ने, जिसने भारत के संविधान की शपथ ली है, उसने इसको अप्रूव किया और एक ऑर्डर इशू किया कि ये सभी सरकारी स्कूलों में, लाइब्रेरीज में रखी जाएगी, सभी सरकारी कॉलेजेस में। जिस किताब में ऐसा मेंशन है कि मकबूल भट्ट जो एक टेररिस्ट था, जो जम्मू कश्मीर को भारत से इलादा करना चाहता था, जो पाकिस्तान के इशारों पर यहाँ टेररिज्म स्टार्ट करना चाहता था और भारत से अलग करना चाहता था, उसको सजाए मौत दी गई जज साहब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करके, और उसको शहीद आजम बताया जाता।
1: What began as a case of missing cash has now snowballed into a major scandal involving gold, silver and possible evidence tampering. Ram Mandir donation theft row has shaken the faith of millions. Key accused have started signing and the SIT is now investigating to find the larger players. We are getting you all the details in this report.
5: As the Ram Mandir donation theft probe intensifies, more skeletons are tumbling out of the closet. New revelations are coming to light every single day. In a significant breakthrough, key accused Avinash Shukla has confessed to the crime. Avinash Shukla was confronted with the CCTV footage where he could be clearly seen stealing money. Police found that Avinash bought a car with the stolen money. He got a car registered in his brother's name to avoid suspicion. Avinash Shukla told investigators that all the accused knew each other well and that the money was distributed among them equally. This gang also met regularly near the secluded area of 14 Kosi Parikrama Mark in Ayodhya to divide the stolen amount.
6: न सिर्फ अविनाश शुक्ला बल्कि चढ़ावा चोरी के सभी आरोपी मिले थे। सभी आरोपियों के बीच में बैठकें होती थी, मीटिंग होती थी और इनके चढ़ावा चोरी की रकम से ही तमाम लोगों ने संपत्तियां बनाई। लवकुश मिश्रा ने मकान बनवाया, अविनाश शुक्ला ने ये कार खरीदी अपने भाई के नाम पर, यानी कि अभिषेक इस कार को चौथा खरीदार है जिसे चढ़ावा चोरी की रकम से अविनाश ने अपने भाई के नाम पर खरीदा था।
5: The SIT is also probing whether the arrested accused stole gold and silver ornaments from the temple. No gold or silver has been recovered from them. Probe teams have confirmed that around 1300 kilograms of silver and 20 kilograms of gold are currently accounted for in the Mandir treasury. However, the probe is on to find out if the ornaments were stolen and melted into gold biscuits in order to destroy the evidence. The donation theft has ignited a massive political storm. When RSS Chief Mohan Bhagwat was asked about the donation theft, he evaded.

0: are watching India Today.
1: Yes, the battle over the asli TMC that is escalating with every passing day. In the latest dramatic twist after the Trinamool Bhavan showdown that had happened, another close Mamata Banerjee aide, Chandrima Bhattacharya, who's resigned from the party, exposing further cracks within the TMC. Following that incident at Trinamool Bhavan, Chandrima Bhattacharya claimed Mamata Banerjee called her and accused her of handing over Trinamool Bhavan to the rebels. Chandrima said the remark deeply hurt her and insisted that there was no need for such a statement. Post this, she met with LOP and rebel leader Ritu Pratap Banerjee. Hitting back, TMC Supremo Mamata Banerjee said Chandrima had already expressed her desire to resign. She also claimed Bhattacharya's son had already patched up with the rebel faction, adding that she was unbothered by the resignation and remarking that some people come with baggage. The political turmoil comes after the rebel faction dramatically seized control of Trinamool Bhavan, the party headquarters in Kolkata. Rebel leaders entered the office, held a meeting inside, allegedly locked the gates and installed a new banner declaring Arup Roy as the chairman of the Trinamool Congress.
2: एक घटना हुई है आप देखे हैं तृणमूल भवन में तो वहां पर उसके बाद में हमसे ममता जी की बात हुई थी टेलीफोन में तो वो हमको उन्होंने हमको बोला कि आप दे दिए उनके हाथ में तृणमूल भवन तो ये हमें बहुत दुख लगा क्योंकि हम तो हर रोज तृणमूल भवन में ठीक टाइम में जाते थे और ठीक टाइम जितना कि हमारा टाइम था वही टाइम पे आते थे और कल भी हम वैसे ही आए
3: এবং আজকেই তার জন্য কাউকে পদত্যাগ করতে হলো আসল ঘটনা তা নয় উনি অনেক দিন ধরেই আমাকে বলছিলেন পদত্যাগ করবেন কারণ ওনার ছেলেরা গিয়ে ছেলে গিয়ে অলরেডি হাত মিলিয়েছেন আমার তার জন্য কিছু বলার নেই ভালো বুঝেছে হাত মিলিয়েছে তাদের লাগেজ ব্যাগে থাকতে পারে কিন্তু আমি তো হাত মেলাবো না আপনারা একজন কোথায় গেলেন কি না গেলেন আই ডোন্ট কেয়ার
4: দেখিয়ে কোই কুছ ডিসিশন লে সকতে হ্যায় লেকিন এক আদমি জো মমতা ব্যানার্জি চিফ মিনিস্টার জব থে তব সবসে বড়া লিস্ট जिसका था इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री का तब कोई अभिमान नहीं था अभी अभिमान दिखा रहा है
5: इस्तेहार देना चाहिए कि हमें सभापति चाहिए देखिए बंगाल में यदि कोई तैयार हो इसके लिए इंतजार करना चाहिए कि उन्होंने बंगाल को के जनता को जिस तरह से छला है उनका यही हश्र होने वाला था
6: उनका घरेलू मामला है उनका आपसी मामला है मियां बीबी का कोई झगड़ा होता है कोई हस्बैंड वाइफ का झमेला होता है आपके आस पड़ोस में आप उसमें पढ़ते हैं क्या पढ़ते तो नहीं हम भी नहीं पढ़ते तो करने दीजिए उनका घरेलू मामला है कौन तृणमूल कांग्रेस चोटी चाटा के साथ रहेगा कौन तृणमूल कांग्रेस बालिश चाटाओं के साथ रहेगा तो ये उनका मामला है आपसी मामला है घरेलू मामला है
7: आधा इस तरफ चला गया आधा उस तरफ चला गया अभी कोई साथ में है ही नहीं ये तो स्वाभाविक था क्योंकि टीएमसी ऐसा एक वो तो कोई पर्टिकुलर दल नहीं था वो ऐसा एक ये था कि ये पारिवारिक एक संस्था थी तो इसीलिए इसका हालत इतना बुरा हुआ है और भी बहुत बुरा होने वाले मतलब ममता बनर्जी के पास अभी कोई ऐसा कोई लोग बचे नहीं जो उनके साथ दे सकते हैं ये लोग इतना चंद्रिमा भट्टाचार्य वॉज वन ऑफ द क्लोजेस्ट एसोसिएट ऑफ ममता बनर्जी अभी वो भी छोड़ के चले गए
1: A massive political storm has erupted in Jammu and Kashmir over a controversial book allegedly cleared for government school libraries. The publication is accused of glorifying terrorists and separatist leaders, describing JKLF terrorist Maqbool Bhatt as a shaheed. It also allegedly presents separatist leaders Syed Ali Shah Gilani, Masarat Alam and Mirwais Omar Farooq in a favorable light and referring to the region as Indian-held Kashmir and Indian-occupied Kashmir. The controversy has triggered fierce backlash, with the BJP calling it an attempt to poison young minds and demand strict accountability.
8: ये जो बुक प्रकाशित हुई है और जिस बुक को जम्मू कश्मीर के शिक्षा विभाग ने अनेक विद्यालय के पुस्तकालयों में वितरित करने का काम किया है जिस पुस्तक में हत्यारियों को दोषियों को आतंकवादियों अलगाववादियों को पत्थरबाजों को महिमामंडित किया गया है जिन दोषियों को सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाकर उनको आतंकवादी करार दिया था ऐसे लोगों को इस पुस्तक में प्रकाशित करके शिक्षा की सामग्री बना के जम्मू कश्मीर के उन नौजवान बच्चों के मस्तिष्क में जहर भरने का काम किया है जो देश का भविष्य संवारने के लिए स्कूलों में जाते हैं
9: जिन आतंकवादियों ने कश्मीर को दहलाया जिन आतंकवादियों ने 30 साल तक कश्मीर में खून की होली खेली और आप इनको शहीद कहोगे, आप मकबूल भट्ट जो टेररिस्ट है मसरत आलम उसको लेजेंड कहोगे और मकबूल भट्ट को शहीद कहोगे, भारत का पैसा लेके भारत के खिलाफ आप यूज करोगे, भारत का पैसा भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए आप इस्तेमाल करोगे।
10: अफसोस इस बात का है कि हमारी जम्मू कश्मीर की इलेक्टेड सरकार ने जिसने भारत के संविधान की शपथ ली है उसने इसको अप्रूव किया और एक ऑर्डर इशू किया कि ये सभी सरकारी स्कूलों में लाइब्रेरीज में रखी जाएगी, सभी सरकारी कॉलेजेस में। जिस किताब में ऐसा मेंशन है कि मकबूल भट्ट जो एक टेररिस्ट था जो जम्मू कश्मीर को भारत से इलादा करना चाहता था, जो पाकिस्तान के इशारों पर यहाँ टेररिज्म स्टार्ट करना चाहता था और भारत से अलग करना चाहता था, उसको सजाए मौत दी गई जज साहब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करके और उसको शहीद आजम बताया जाता।
1: What began as a case of missing cash has now snowballed into a major scandal involving gold, silver and possible evidence tampering. Ram Mandir donation theft row has shaken the faith of millions. Key accused have started signing and the SIT is now investigating to find the larger players. We are getting you all the details in this report.
11: As the Ram Mandir donation theft probe intensifies, more skeletons are tumbling out of the closet. New revelations are coming to light every single day. In a significant breakthrough, key accused Avinash Shukla has confessed to the crime. Avinash Shukla was confronted with the CCTV footage where he could be clearly seen stealing money. Police found that Avinash bought a car with the stolen money. He got a car registered in his brother's name to avoid suspicion. Avinash Shukla told investigators that all the accused knew each other well and that the money was distributed among them equally. This gang also met regularly near the secluded area of 14 Kosi Parikrama Mark in Ayodhya to divide the stolen amount.
12: ना सिर्फ अविनाश शुक्ला बल्कि चढ़ावा चोरी के सभी आरोपी मिले थे। सभी आरोपियों के बीच में बैठकें होती थी, मीटिंग होती थी और इनके चढ़ावा चोरी की रकम से ही तमाम लोगों ने संपत्तियां बनाई। लवकुश मिश्रा ने मकान बनवाया, अविनाश शुक्ला ने ये कार खरीदी अपने भाई के नाम पर, यानी कि अभिषेक इस कार को चौथा खरीदार है जिसे चढ़ावा चोरी की रकम से अविनाश ने अपने भाई के नाम पर खरीदा था।
11: The SIT is also probing whether the arrested accused stole gold and silver ornaments from the temple. No gold or silver has been recovered from them. Probe teams have confirmed that around 1300 kilograms of silver and 20 kilograms of gold are currently accounted for in the Mandir treasury. However, the probe is on to find out if the ornaments were stolen and melted into gold biscuits in order to destroy the evidence. The donation theft has ignited a massive political storm. When RSS Chief Mohan Bhagwat was asked about the donation theft, he evaded the question.
13: प्रति आस्था को कुछ लोग धक्का पहुंचा रहे। प्रति आस्था को कुछ लोग धक्का पहुंचा रहे।
11: Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav has taken a dig at Chanda Chores by releasing an AI-generated video song.

0: Even saints and seers have expressed concerns over the style of functioning of the Ram Mandir Trust.
1: अयोग्य लोगों को जब आप काम देंगे तो यही परिणाम प्राप्त होगा जो अयोध्या में प्राप्त हुआ है. अयोध्या जैसे धर्म स्थलों को, द्वारका, बद्रीनाथ, तिरुपति जी, इन धर्म स्थलों को परमात्मा की तपो

0: are watching India Today.
1: Yes, the battle over the asli TMC, that is escalating with every passing day. In the latest dramatic twist after the Trinamool Bhavan showdown that had happened, another close Mamata Banerjee aide, Chandrima Bhattacharya, who's resigned from the party, exposing further cracks within the TMC. Following that incident at Trinamool Bhavan, Chandrima Bhattacharya claimed Mamata Banerjee called her and accused her of handing over Trinamool Bhavan to the rebels. Chandrima said the remark deeply hurt her and insisted that there was no need for such a statement. Post this, she met with LOP and rebel leader Ritu Pratap Banerjee. Hitting back, TMC Supremo Mamata Banerjee said Chandrima had already expressed her desire to resign. She also claimed Bhattacharya's son had already patched up with the rebel faction, adding that she was unbothered by the resignation and remarking that some people come with baggage. The political turmoil comes after the rebel faction dramatically seized control of Trinamool Bhavan, the party headquarters in Kolkata. Rebel leaders entered the office, held a meeting inside, allegedly locked the gates and installed a new banner declaring Arup Roy as the chairman of the Trinamool Congress.
2: एक घटना हुई है, आप देखे हैं तृणमूल भवन में, तो वहां पर उसके बाद में हमसे ममता जी की बात हुई थी टेलीफोन में, तो वो हमको उन्होंने हमको बोला कि आप दे दिए उनके हाथ में तृणमूल भवन, तो ये हमें बहुत दुख लगा क्योंकि हम तो हर रोज तृणमूल भवन में ठीक टाइम में जाते थे और ठीक टाइम जितना कि हमारा टाइम था वही टाइम पे आते थे और कल भी हम वैसे ही आए
3: এবং আজকেই তার জন্য কাউকে পদত্যাগ করতে হলো। আসল ঘটনা তা নয়, উনি অনেকদিন ধরেই আমাকে বলছিলেন পদত্যাগ করবেন, কারণ ওনার ছেলেরা গিয়ে ছেলে গিয়ে অলরেডি হাত মিলিয়েছেন। আমার তার জন্য কিছু বলার নেই, ভালো বুঝেছে হাত মিলিয়েছে, তাদের লাগেজ ব্যাগে থাকতে পারে, কিন্তু আমি তো হাত মেলাবো না। আপনারা একজন কোথায় গেলেন কি না গেলেন, আই ডোন্ট কেয়ার।
4: देखिए कोई कुछ डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन एक आदमी जो ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर जब थे तब सबसे बड़ा लिस्ट जिसका था इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री का, तब कोई अभिमान नहीं था, अभी अभिमान दिखा रहा है।
5: इश्तेहार देना चाहिए कि हमें सभापति चाहिए। देखिए बंगाल में यदि कोई तैयार हो इसके लिए इंतजार करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बंगाल को के जनता को जिस तरह से छला है उनका यही हश्र होने वाला था।
6: उनका घरेलू मामला है, उनका आपसी मामला है, मियां बीबी का कोई झगड़ा होता है, कोई हस्बैंड वाइफ का झमेला होता है आपके पास पड़ोस में, आप उसमें पढ़ते हैं क्या? पढ़ते तो नहीं, हम भी नहीं पढ़ते, तो करने दीजिए, उनका घरेलू मामला है। कौन तृणमूल कांग्रेस चोटी चाटा के साथ रहेगा, कौन तृणमूल कांग्रेस बालिश चाटाओं के साथ रहेगा, तो ये उनका मामला है, आपसी मामला है, घरेलू मामला है।
7: आधा इस तरफ चला गया, आधा उस तरफ चला गया, अभी कोई साथ में है ही नहीं। ये तो स्वाभाविक था क्योंकि टीएमसी ऐसा एक, वो तो कोई पर्टिकुलर दल नहीं था, वो ऐसा एक ये था कि ये पारिवारिक एक संस्था थी, तो इसीलिए इसका हालत इतना बुरा हुआ है और भी बहुत बुरा होने वाले, मतलब ममता बनर्जी के पास अभी कोई ऐसा कोई लोग बचे नहीं जो उनके साथ दे सकते हैं। ये लोग इतना, चंद्रिमा भट्टाचार्य वॉज वन ऑफ द क्लोजेस्ट एसोसिएट ऑफ ममता बनर्जी, अभी वो भी छोड़ के चली गई।
1: A massive political storm has erupted in Jammu and Kashmir over a controversial book allegedly cleared for government school libraries. The publication is accused of glorifying terrorists and separatist leaders, describing JKLF terrorist Maqbool Bhatt as a shaheed. It also allegedly presents separatist leaders Syed Ali Shah Gilani, Masarat Alam and Mirwais Omar Farooq in a favorable light and referring to the region as Indian-held Kashmir and Indian-occupied Kashmir. The controversy has triggered fierce backlash, with the BJP calling it an attempt to poison young minds and demand strict accountability.
8: ये जो बुक प्रकाशित हुई है और जिस बुक को जम्मू कश्मीर के शिक्षा विभाग ने अनेक विद्यालय के पुस्तकालयों में वितरित करने का काम किया है, जिस पुस्तक में हत्यारियों को, दोषियों को, आतंकवादियों, अलगाववादियों को, पत्थरबाजों को महिमा मंडित किया गया है, जिन दोषियों को सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाकर उनको आतंकवादी करार दिया था, ऐसे लोगों को इस पुस्तक में प्रकाशित करके शिक्षा की सामग्री बना के जम्मू कश्मीर के उन नौजवान बच्चों के मस्तिष्क में जहर भरने का काम किया है जो देश का भविष्य संवारने के लिए स्कूलों में जाते हैं।
9: जिन आतंकवादियों ने कश्मीर को दहलाया, जिन आतंकवादियों ने 30 साल तक कश्मीर में खून की होली खेली और आप इनको शहीद कहोगे, आप मकबूल भट्ट जो टेररिस्ट है मसरत आलम उसको लेजेंड कहोगे और मकबूल भट्ट को शहीद कहोगे, भारत का पैसा लेके भारत के खिलाफ आप यूज करोगे, भारत का पैसा भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए आप इस्तेमाल करोगे।
10: अफसोस इस बात का है कि हमारी जम्मू कश्मीर की इलेक्टेड सरकार ने जिसने भारत के संविधान की शपथ ली है उसने इसको अप्रूव किया और एक ऑर्डर इशू किया कि ये सभी सरकारी स्कूलों में लाइब्रेरीज में रखी जाएगी, सभी सरकारी कॉलेजेस में। जिस किताब में ऐसा मेंशन है कि मकबूल भट्ट जो एक टेररिस्ट था जो जम्मू कश्मीर को भारत से इलादा करना चाहता था, जो पाकिस्तान के इशारों पर यहाँ टेररिज्म स्टार्ट करना चाहता था और भारत से अलग करना चाहता था, उसको सजाए मौत दी गई जज साहब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करके और उसको शहीद आजम बताया जाता।
1: What began as a case of missing cash has now snowballed into a major scandal involving gold, silver and possible evidence tampering. Ram Mandir donation theft row has shaken the faith of millions. Key accused have started signing and the SIT is now investigating to find the larger players. We are getting you all the details in this report.
11: As the Ram Mandir donation theft probe intensifies, more skeletons are tumbling out of the closet. New revelations are coming to light every single day. In a significant breakthrough, key accused Avinash Shukla has confessed to the crime. Avinash Shukla was confronted with the CCTV footage where he could be clearly seen stealing money. Police found that Avinash bought a car with the stolen money. He got a car registered in his brother's name to avoid suspicion. Avinash Shukla told investigators that all the accused knew each other well and that the money was distributed among them equally. This gang also met regularly near the secluded area of 14 Kosi Parikrama Mark in Ayodhya to divide the stolen amount.
12: Na sirf Avinash Shukla balki chalhawa chori ke sabhi aaropi mile the, sabhi aaropiyon ke beech mein baithakein hoti thi, meeting hoti thi aur inke chalhawa chori ki rakam se hi tamam logon ne संपत्तियां बनाई। लवकुश मिश्रा ने मकान बनवाया, अविनाश शुक्ला ने ये कार खरीदी अपने भाई के नाम पर, यानी कि अभिषेक इस कार को चौथा खरीदार है जिसे चढ़ावा चूबरी की रकम से अविनाश ने अपने भाई के नाम पर खरीदा था।
11: The SIT is also probing whether the arrested accused stole gold and silver ornaments from the temple. No gold or silver has been recovered from them. Probe teams have confirmed that around 1,300 kilograms of silver and 20 kilograms of gold are currently accounted for in the Mandir treasury. However, the probe is on to find out if the ornaments were stolen and melted into gold biscuits in order to destroy the evidence. The donation theft has ignited a massive political storm. When RSS Chief Mohan Bhagwat was asked about the donation theft, he evaded the question. Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav has taken a dig at Chanda Chores by releasing an AI-generated video song.

0: are watching India Today.
1: Yes, the battle over the asli TMC that is escalating with every passing day. In the latest dramatic twist after the Trinamool Bhavan showdown that had happened, another close Mamata Banerjee aide, Chandrima Bhattacharya, who's resigned from the party, exposing further cracks within the TMC. Following that incident at Trinamool Bhavan, Chandrima Bhattacharya claimed Mamata Banerjee called her and accused her of handing over Trinamool Bhavan to the rebels. Chandrima said the remark deeply hurt her and insisted that there was no need for such a statement. Post this, she met with LOP and rebel leader Ritha Pratap Banerjee. Hitting back, TMC Supremo Mamata Banerjee said Chandrima had already expressed her desire to resign. She also claimed Bhattacharya's son had already patched up with the rebel faction, adding that she was unbothered by the resignation and remarking that some people come with baggage. The political turmoil comes after the rebel faction dramatically seized control of Trinamool Bhavan, the party headquarters in Kolkata. Rebel leaders entered the office, held a meeting inside, allegedly locked the gates and installed a new banner declaring Arup Roy as the chairman of the Trinamool Congress.
2: एक घटना हुई है आप देखे हैं तृणमूल भवन में तो वहां पर उसके उसके बाद में हमसे ममता जी की बात हुई थी टेलीफोन में तो वो हमको उन्होंने हमको बोला कि आप दे दिए उनके हाथ में तृणमूल भवन तो ये हमें बहुत दुख लगा क्योंकि हम तो हर रोज तृणमूल भवन में ठीक टाइम में जाते थे और ठीक टाइम जितना कि हमारा टाइम था वही टाइम पे आते थे और कल भी हम वैसे ही आए
3: এবং আজকেই তার জন্য কাউকে পদত্যাগ করতে হলো আসল ঘটনা তা নয় উনি অনেকদিন ধরেই আমাকে বলছিলেন পদত্যাগ করবেন কারণ ওনার ছেলেরা গিয়ে ছেলে গিয়ে অলরেডি হাত মিলিয়েছেন আমার তার জন্য কিছু বলার নেই ভালো বুঝেছে হাত মিলিয়েছে তাদের লাগেজ ব্যাগে থাকতে পারে কিন্তু আমি তো হাত মেলাবো না আপনারা একজন কোথায় গেলেন কি না গেলেন আই ডোন্ট কেয়ার
4: देखिए कोई कुछ डिसीजन ले सकता है लेकिन एक आदमी जो ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर जब थे तब सबसे बड़ा लिस्ट जिसका था इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री का तब कोई अभिमान नहीं था अभी अभिमान दिखा रहा है
5: इश्तेहार देना चाहिए कि हमें सभापति चाहिए देखिए बंगाल में यदि कोई तैयार हो इसके लिए इंतजार करना चाहिए कि उन्होंने बंगाल को के जनता को जिस तरह से छला है उनका यही हश्र होने वाला था
6: उनका घरेलू मामला है उनका आपसी मामला है मियाँ बीबी का कोई झगड़ा होता है कोई हस्बैंड वाइफ का झमेला होता है आपके पास पड़ोस में आप उसमें पढ़ते हैं क्या पढ़ते तो नहीं है हम भी नहीं पढ़ते तो करने दीजिए उनका घरेलू मामला है कौन तृणमूल कांग्रेस चोटी चाटा के साथ रहेगा कौन तृणमूल कांग्रेस बालिश चाटाओं के साथ रहेगा तो ये उनका मामला है आपसी मामला है घरेलू मामला है
7: आधा इस तरफ चला गया आधा उस तरफ चला गया अभी कोई साथ में है ही नहीं ये तो स्वाभाविक था क्योंकि टीएमसी ऐसा एक वो तो कोई पर्टिकुलर दल नहीं था वो ऐसा एक ये था कि ये पारिवारिक एक संस्था थी तो इसीलिए इसका हालत इतना बुरा हुआ है और भी बहुत बुरा होने वाले मतलब ममता बनर्जी के पास अभी कोई ऐसा कोई लोग बचे नहीं जो उनके साथ दे सकते हैं ये लोग इतना चंद्रिमा भट्टाचार्य वॉज वन ऑफ द क्लोजेस्ट एसोसिएट ऑफ ममता बनर्जी अभी वो भी छोड़ के चले गए
1: A massive political storm has erupted in Jammu and Kashmir over a controversial book allegedly cleared for government school libraries. The publication is accused of glorifying terrorists and separatist leaders, describing JKLF terrorist Maqbool Bhatt as a shaheed. It also allegedly presents separatist leaders Syed Ali Shah Gilani, Masarat Alam and Mirwais Omar Farooq in a favorable light and referring to the region as Indian-held Kashmir and Indian-occupied Kashmir. The controversy has triggered fierce backlash, with the BJP calling it an attempt to poison young minds and demand strict accountability.
8: ये जो बुक प्रकाशित हुई है और जिस बुक को जम्मू कश्मीर के शिक्षा विभाग ने अनेक विद्यालय के पुस्तकालयों में वितरित करने का काम किया है जिस पुस्तक में हत्यारियों को दोषियों को आतंकवादियों अलगाववादियों को पत्थरबाजों को महिमामंडित किया गया है जिन दोषियों को सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाकर उनको आतंकवादी करार दिया था ऐसे लोगों को इस पुस्तक में प्रकाशित करके शिक्षा की सामग्री बना के जम्मू कश्मीर के उन नौजवान बच्चों के मस्तिष्क में जहर भरने का काम किया है जो देश का भविष्य संवारने के लिए स्कूलों में जाते हैं
9: जिन आतंकवादियों ने कश्मीर को दहलाया जिन आतंकवादियों ने 30 साल तक कश्मीर में खून की होली खेली और आप इनको शहीद कहोगे, आप मकबूल भट्ट जो टेररिस्ट है मसरत आलम उसको लेजेंड कहोगे और मकबूल भट्ट को शहीद कहोगे, भारत का पैसा लेके भारत के खिलाफ आप यूज करोगे, भारत का पैसा भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए आप इस्तेमाल करोगे।
10: अफसोस इस बात का है कि हमारी जम्मू कश्मीर की इलेक्टेड सरकार ने जिसने भारत के संविधान की शपथ ली है उसने इसको अप्रूव किया और एक ऑर्डर इशू किया कि ये सभी सरकारी स्कूलों में लाइब्रेरीज में रखी जाएगी, सभी सरकारी कॉलेजेस में। जिस किताब में ऐसा मेंशन है कि मकबूल भट्ट जो एक टेररिस्ट था जो जम्मू कश्मीर को भारत से इलादा करना चाहता था, जो पाकिस्तान के इशारों पर यहाँ टेररिज्म स्टार्ट करना चाहता था और भारत से अलग करना चाहता था, उसको सजाए मौत दी गई जज साहब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करके और उसको शहीद आजम बताया जाता।
1: What began as a case of missing cash has now snowballed into a major scandal involving gold, silver and possible evidence tampering. Ram Mandir donation theft row has shaken the faith of millions. Key accused have started signing and the SIT is now investigating to find the larger players. We are getting you all the details in this report.
11: As the Ram Mandir donation theft probe intensifies, more skeletons are tumbling out of the closet. New revelations are coming to light every single day. In a significant breakthrough, key accused Avinash Shukla has confessed to the crime. Avinash Shukla was confronted with the CCTV footage where he could be clearly seen stealing money. Police found that Avinash bought a car with the stolen money. He got a car registered in his brother's name to avoid suspicion. Avinash Shukla told investigators that all the accused knew each other well and that the money was distributed among them equally. This gang also met regularly near the secluded area of 14 Kosi Parikrama Mark in Ayodhya to divide the stolen amount.
12: ना सिर्फ अविनाश शुक्ला बल्कि चढ़ावा चोरी के सभी आरोपी मिले थे। सभी आरोपियों के बीच में बैठकें होती थी, मीटिंग होती थी और इनके चढ़ावा चोरी की रकम से ही तमाम लोगों ने संपत्तियां बनाई। लवकुश मिश्रा ने मकान बनवाया, अविनाश शुक्ला ने ये कार खरीदी अपने भाई के नाम पर, यानी कि अभिषेक इस कार को चौथा खरीदार है जिसे चढ़ावा चोरी की रकम से अविनाश ने अपने भाई के नाम पर खरीदा था।
11: The SIT is also probing whether the arrested accused stole gold and silver ornaments from the temple. No gold or silver has been recovered from them. Probe teams have confirmed that around 1300 kilograms of silver and 20 kilograms of gold are currently accounted for in the Mandir treasury. However, the probe is on to find out if the ornaments were stolen and melted into gold biscuits in order to destroy the evidence. The donation theft has ignited a massive political storm. When RSS Chief Mohan Bhagwat was asked about the donation theft, he evaded the question.
13: प्रति आस्था को कुछ लोग धक्का पहुंचा रहे। प्रति आस्था को कुछ लोग धक्का पहुंचा रहे।
11: Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav has taken a dig at Chanda Chores by releasing an AI-generated video song.

0: However, police asked about it, and she immediately handed over that phone to them.
1: Okay, so she
0: cooperated.
1: Okay. But they were seeking for lie detector test.
0: Today they did not press that application, so I think they do not require it now.
2: Police had sought a 3-day extension of custody for both accused, saying that the investigation had revealed that Sia and Chetan used code words during their conversations. According to the police, only Sia and Chetan can explain the true meaning of these code words, making further interrogation crucial to the investigation.
1: पिछली बार आपने जो मांग की थी आज आपने वही फिर से दोहराना चाहा कि जो कुछ भी बातें हो चुकी थी ये रिपीटेटिव हो रहा है
3: जी बिल्कुल बिल्कुल और जो रीजंस दिए जाते हैं पुलिस रिमांड रिपोर्ट में कि हमें इतने दिन की पुलिस कस्टडी और चाहिए पुलिस कस्टडी एक बहुत इन्वेजिव मेथड ऑफ इंटरोगेशन है हमारी आर्ग्यूमेंट यही थी कि जो रीजंस दिए गए हैं वो उनको जुडिशियल कस्टडी में रखते हुए भी पुलिस ये सारे काम कर सकती है इस बात को आज कोर्ट ने मानते हुए उनको जुडिशियल कस्टडी में रिमांड किया
2: Police have also seized Sia's second mobile phone, which could hold key evidence to support the investigation. The noose is tightening on Sia. Her family has distanced themselves. Police are gathering evidence, and senior lawyer Ujjwal Nikam has been roped in to represent Ketan's family. Yet she remains defiant, seemingly making obscene gestures at the media. And this is what her father said about her act.
4: जब पुलिस वेरिफिकेशन के साथ घर पे वो आई थी. उस टाइम की बात है कि उसकी दो उंगली गाड़ी के दरवाजे में थोड़ी आ गई थी तो उसने एक हाथ पे बैंडेड बांधी हुई है और एक उसकी उंगली पूरी सूजी हुई है उसका नेल्स भी पूरा ब्लू पड़ा हुआ है वो भी हमने देखा है यानी कि और सोशल मीडिया पे ये जो बात आ रही है इस घटिया तरीके से तो ये अच्छी बात नहीं है तो मैंने इसमें भी देखा उसकी पूरी उंगली सूजी हुई है पूरा नेल्स उसका ब्लू हुआ है
2: If the probe holds, it may only be a matter of time before Sia learns what happens when the law takes its course. With Omkar Wable, Bureau Report, India Today.
5: As the war in West Asia disrupted global oil supplies and pushed economies into an energy crisis, Prime Minister Modi says India stayed ahead of the storm. Claiming swift government action prevented fuel shortages, Prime Minister has also accused the opposition of spreading panic while the centre secured the nation's energy needs. Take a look at this report.
6: A world battling an energy shock. But India seemingly insulated from it all. Addressing a public gathering in Rajasthan after inaugurating the state's long-awaited refinery project, Prime Minister Modi said that the war in West Asia pushed the global economy into turmoil, triggering what he called the biggest energy crisis of the 21st century.
7: Paschimi Asia mein yuddh ki wajah se पूरी दुनिया में हाहाकार मचा इस युद्ध ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया नए भारत की इच्छा शक्ति और भारत के प्रयास इस संकटों पर भारी पड़े हैं
6: After war escalated across West Asia, Iran tightened its grip over the Hormuz Strait, disrupting energy markets and sending shockwaves through economies worldwide. Even after the June 18th understanding between US President Donald Trump and Iranian President Masoud Pezeshkian, Tehran has continued to project control over the waterway as a strategic lever. But Prime Minister Modi asserted that India weathered the storm through swift decision-making and coordinated planning.
7: जो हालात थे उनमें घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 2000 रुपये तक जा सकती थी लेकिन हमारे यहां अभी भी घरेलू एलपीजी सिलेंडर 950 रुपये से भी कम में दिया जा रहा है कई देशों में तो डीजल पेट्रोल कोटे के

0: என் நெஞ்சில் குடியிருக்கும்.
1: For over three decades, he ruled the silver screen like few ever could.
0: See Joseph Vijayanam Nan.
1: But in 2024, Vijay made a choice that changed everything. With the launch of Tamilaga Vetri Karagam, the superstar turned a new page. Path that eventually led him to the highest office in the state. But every new beginning comes with a goodbye. And for Vijay, that goodbye was cinema. Here's what makes the story even more emotional. The final chapter of Talapathy's cinematic journey is still waiting to meet its audience. Jananayagan was meant to be Vijay's grand farewell to the silver screen. Yet, despite the massive anticipation, release plans and fan frenzy, the film has faced multiple delays and is still awaiting its complete theatrical journey. From its title, which translates to People's Leader, to reports surrounding its political themes.
2: Come, let's play a game. Innilarna pompadavdanar, India yen kaladila vandha varum.
3: Enna plan?
1: Jananayagan has sparked conversations about how closely the film may reflect Vijay's real-world image.
4: You are watching India Today.
5: Yes, the battle over the asli TMC, that is escalating with every passing day. In the latest dramatic twist after the Trinamool Bhavan showdown that had happened, another close Mamata Banerjee aide, Chandrima Bhattacharya, who's resigned from the party, exposing further cracks within the TMC. Following that incident at Trinamool Bhavan, Chandrima Bhattacharya claimed Mamata Banerjee called her and accused her of handing over Trinamool Bhavan to the rebels. Chandrima said the remark deeply hurt her and insisted that there was no need for such a statement. Post this, she met with LOP and rebel leader Ritu Pratap Banerjee. Hitting back, TMC Supremo Mamata Banerjee said Chandrima had already expressed her desire to resign. She also claimed Bhattacharya's son had already patched up with the rebel faction, adding that she was unbothered by the resignation and remarking that some people come with baggage. The political turmoil comes after the rebel faction dramatically seized control of Trinamool Bhavan, the party headquarters in Kolkata. Rebel leaders entered the office, held a meeting inside, allegedly locked the gates and installed a new banner declaring Arup Roy as the chairman of the Trinamool Congress.
6: एक घटना हुई है, आप देखे हैं तृणमूल भवन में, तो वहां पर उसके उसके बाद में हमसे ममता जी की बात हुई थी टेलीफोन में, तो वो हमको उन्होंने हमको बोला कि आप दे दिए उनके हाथ में तृणमूल भवन, तो ये हमें बहुत दुख लगा क्योंकि हम तो हर रोज तृणमूल भवन में ठीक टाइम में जाते थे और ठीक टाइम जितना कि हमारा टाइम था वही टाइम पे आते थे और कल भी हम वैसे ही आए
7: এবং আজকেই তার জন্য কাউকে পদত্যাগ করতে হলো। আসল ঘটনা তা নয়, উনি অনেকদিন ধরেই আমাকে বলছিলেন পদত্যাগ করবেন, কারণ ওনার ছেলেরা গিয়ে ছেলে গিয়ে অলরেডি হাত মিলিয়েছেন। আমার তার জন্য কিছু বলার নেই, ভালো বুঝেছে হাত মিলিয়েছে, তাদের লাগেজ ব্যাগে থাকতে পারে, কিন্তু আমি তো হাত মেলাবো না। আপনারা একজন কোথায় গেলেন কি না গেলেন, আই ডোন্ট কেয়ার।
8: देखिए कोई कुछ डिसीजन ले सकता है, लेकिन एक आदमी जो ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर जब थे तब सबसे बड़ा लिस्ट जिसका था इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री का, तब कोई अभिमान नहीं था, अभी अभिमान दिखा रहा है।
9: इश्तेहार देना चाहिए कि हमें सभापति चाहिए। देखिए बंगाल में यदि कोई तैयार हो इसके लिए इंतजार करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बंगाल को के जनता को जिस तरह से छला है उनका यही हश्र होने वाला था।
3: उनका घरेलू मामला है, उनका आपसी मामला है। मियां बीबी का कोई झगड़ा होता है, कोई कोई हस्बैंड वाइफ का झमेला होता है आपके पास पड़ोस में, आप उसमें पढ़ते हैं क्या? पढ़ते तो नहीं है, हम भी नहीं पढ़ते हैं। तो करने दीजिए, उनका घरेलू मामला है। कौन तृणमूल कांग्रेस चोटी चाटा के साथ रहेगा, कौन तृणमूल कांग्रेस बालिश चाटाओं के साथ रहेगा, तो ये उनका मामला है, आपसी मामला है, घरेलू मामला है।
10: आधा इस तरफ चला गया, आधा उस तरफ चला गया, अभी कोई साथ में है ही नहीं। ये तो स्वाभाविक था, क्योंकि टीएमसी ऐसा एक, वो तो कोई पर्टिकुलर दल नहीं था, वो ऐसा एक ये था कि ये पारिवारिक एक संस्था थी, तो इसीलिए इसका हालत इतना बुरा हुआ है। और भी बहुत बुरा होने वाले, मतलब ममता बनर्जी के पास अभी कोई ऐसा कोई लोग बचे नहीं जो उनके साथ दे सकते हैं। ये लोग इतना, चंद्रिमा भट्टाचार्य वॉज वन ऑफ द क्लोजेस्ट एसोसिएट ऑफ ममता बनर्जी, अभी वो भी छोड़ के चली गई।
5: A massive political storm has erupted in Jammu and Kashmir over a controversial book allegedly cleared for government school libraries. The publication is accused of glorifying terrorists and separatist leaders, describing JKLF terrorist Maqbool Bhatt as a shaheed. It also allegedly presents separatist leaders Syed Ali Shah Gilani, Masarat Alam and Mirwais Omar Farooq in a favorable light and referring to the region as Indian-held Kashmir and Indian-occupied Kashmir. The controversy has triggered fierce backlash, with the BJP calling it an attempt to poison young minds and demand strict accountability.
11: ये जो बुक प्रकाशित हुई है और जिस बुक को जम्मू कश्मीर के शिक्षा विभाग ने अनेक विद्यालय के पुस्तकालयों में वितरित करने का काम किया है, जिस पुस्तक में हत्यारियों को, दोषियों को, आतंकवादियों, अलगाववादियों को, पत्थरबाजों को महिमा मंडित किया गया है, जिन दोषियों को सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाकर उनको आतंकवादी करार दिया था, ऐसे लोगों को इस पुस्तक में प्रकाशित करके शिक्षा की सामग्री बना के जम्मू कश्मीर के उन नौजवान बच्चों के मस्तिष्क में जहर भरने का काम किया है जो देश का भविष्य संवारने के लिए स्कूलों में जाते हैं।
12: जिन आतंकवादियों ने कश्मीर को दहलाया, जिन आतंकवादियों ने 30 साल तक कश्मीर में खून की होली खेली, और आप इनको शहीद कहोगे? आप मकबूल भट्ट जो टेररिस्ट है, मसरत आलम उसको लेजेंड कहोगे और मकबूल भट्ट को शहीद कहोगे? भारत का पैसा लेके भारत के खिलाफ आप यूज करोगे? भारत का पैसा भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए आप इस्तेमाल करोगे?
13: अफसोस इस बात का है कि हमारी जम्मू कश्मीर की इलेक्टेड सरकार ने, जिसने भारत के संविधान की शपथ ली है, उसने इसको अप्रूव किया और एक ऑर्डर इशू किया कि ये सभी सरकारी स्कूलों में, लाइब्रेरीज में रखी जाएगी, सभी सरकारी कॉलेजेस में। जिस किताब में ऐसा मेंशन है कि मकबूल भट्ट जो एक टेररिस्ट था, जो जम्मू कश्मीर को भारत से इलादा करना चाहता था, जो पाकिस्तान के इशारों पर यहाँ टेररिज्म स्टार्ट करना चाहता था और भारत से अलग करना चाहता था, उसको सजाए मौत दी गई जज साहब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करके, और उसको शहीद आजम बताया जाता।
5: What began as a case of missing cash has now snowballed into a major scandal involving gold, silver and possible evidence tampering. Ram Mandir donation theft row has shaken the faith of millions. Key accused have started signing and the SIT is now investigating to find the larger players. We are getting you all the details in this report.
14: As the Ram Mandir donation theft probe intensifies, more skeletons are tumbling out of the closet. New revelations are coming to light every single day. In a significant breakthrough, key accused Avinash Shukla has confessed to the crime. Avinash Shukla was confronted with the CCTV footage where he could be clearly seen stealing money. Police found that Avinash bought a car with the stolen money. He got a car registered in his brother's name to avoid suspicion. Avinash Shukla told investigators that all the accused knew each other well and that the money was distributed among them equally. This gang also met regularly near the secluded area of 14 Kosi Parikrama Mark in Ayodhya to divide the stolen amount.
15: न सिर्फ अविनाश शुक्ला बल्कि चढ़ावा चोरी के सभी आरोपी मिले थे। सभी आरोपियों के बीच में बैठकें होती थी, मीटिंग होती थी, और इनके चढ़ावा चोरी की रकम से ही तमाम लोगों ने संपत्तियां बनाई, लवकुश मिश्रा ने मकान बनवाया, अविनाश शुक्ला ने ये कार खरीदी अपने भाई के नाम पर, यानी कि अभिषेक इस कार को चौथा खरीदार है जिसे चढ़ावा चूबरी की रकम से अविनाश ने अपने भाई के नाम पर खरीदा था।
16: The SIT is also probing whether the arrested accused stole gold and silver ornaments from the temple. No gold or silver has been recovered from them. Probe teams have confirmed that around 1300 kilograms of silver and 20 kilograms of gold are currently accounted for in the Mandir treasury. However, the probe is on to find out if the ornaments were stolen and melted into gold biscuits in order to destroy the evidence. The donation theft has ignited a massive political storm. When RSS Chief Mohan Bhagwat was asked about the donation theft, he evaded the question.
17: प्रति आस्था को कुछ लोग धक्का पहुंचा रहे हैं। प्रति आस्था को कुछ लोग धक्का पहुंचा रहे
16: हैं। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव has taken a dig at Chanda Chores by releasing an AI-generated video song.

आज हम राजस्थान रिफाइनरी का उद्घाटन यहां कर रहे हैं। हमने 2017 में इसके लिए एमओयू साइन किया था, लेकिन 2018 से 2023 तक राजस्थान में कांग्रेस सरकार रही। कांग्रेस के असहयोग के कारण यहां का काम लगभग ठप ही रह गया, लेकिन जैसे ही डबल इंजन सरकार आई, इसका काम तेजी से आगे बढ़ा और आज हम इसका लोकार्पण भी कर रहे हैं। और आप तो जानते हैं मेरी कार्यशैली, जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका लोकार्पण भी हम ही करते हैं।

0: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.
1: You are watching India Today.
2: Yes, the battle over the asli TMC that is escalating with every passing day. In the latest dramatic twist after the Trinamool Bhavan showdown that had happened, another close Mamata Banerjee aide Chandrima Bhattacharya, who's resigned from the party, exposing further cracks within the TMC. Following that incident at Trinamool Bhavan, Chandrima Bhattacharya claimed Mamata Banerjee called her and accused her of handing over Trinamool Bhavan to the rebels. Chandrima said the remark deeply hurt her and insisted that there was no need for such a statement. Post this, she met with LOP and rebel leader Ritha Pratap Banerjee. Hitting back, TMC Supremo Mamata Banerjee said Chandrima had already expressed her desire to resign. She also claimed Bhattacharya's son had already patched up with the rebel faction, adding that she was unbothered by the resignation and remarking that some people come with baggage. The political turmoil comes after the rebel faction dramatically seized control of Trinamool Bhavan, the party headquarters in Kolkata. Rebel leaders entered the office, held a meeting inside, allegedly locked the gates and installed a new banner declaring Arup Roy as the chairman of the Trinamool Congress.
3: एक घटना हुई है, आप देखे हैं तृणमूल भवन में, तो वहां पर उसके बाद में हमसे ममता जी की बात हुई थी टेलीफोन में, तो वो हमको उन्होंने हमको बोला कि आप दे दिए उनके हाथ में तृणमूल भवन, तो ये हमें बहुत दुख लगा क्योंकि हम तो हर रोज तृणमूल भवन में ठीक टाइम में जाते थे और ठीक टाइम जितना कि हमारा टाइम था वही टाइम पे आते थे और कल भी हम वैसे ही आए
4: এবং আজকেই তার জন্য কাউকে পদত্যাগ করতে হলো। আসল ঘটনা তা নয়, উনি অনেকদিন ধরেই আমাকে বলছিলেন পদত্যাগ করবেন, কারণ ওনার ছেলে গিয়ে অলরেডি হাত মিলিয়েছেন। আমার তার জন্য কিছু বলার নেই, ভালো বুঝেছে হাত মিলিয়েছে, তাদের লাগেজ ব্যাগে থাকতে পারে, কিন্তু আমি তো হাত মেলাবো না। আপনারা একজন কোথায় গেলেন কি না গেলেন, আই ডোন্ট কেয়ার।
5: দেখিয়ে কোই কুছ ডিসিশন লে সকতে হ্যায়, লেকিন এক আদমি জো মমতা ব্যানার্জী চিফ মিনিস্টার জব থে তব সবসে বড়া লিস্ট জিসকা থা ইম্পর্টেন্ট মিনিস্ট্রি কা তব কোই অভিমান নেহি থা, আবি অভিমান দিখা রাহা হ্যায়।
6: ইস্তাহার দেনা চাহিয়ে কি হামে সভাপতি চাহিয়ে, দেখিয়ে বঙ্গাল মে যদি কোই তৈয়ার হো ইসকে লিয়ে ইন্তজার করনা চাহিয়ে, কি উনহোনে বঙ্গাল কো কে জনতা কো জিস তরহ সে ছলা হ্যায় উনকা ইয়েহি হাস্র হোনে ওয়ালা থা।
7: উনকা ঘরেলু মামলা হ্যায়, উনকা আপসি মামলা হ্যায়, মিয়া বিবি কা কোই ঝগড়া হোতা হ্যায়, কোই হাজবেন্ড ওয়াইফ কা ঝামেলা হোতা হ্যায় আপকে আস পড়োস মে, আপ উসমে পড়তে হ্যায় ক্যা? পড়তে তো নেই, হাম ভি নেই পড়তে, তো করনে দিজিয়ে, উনকা ঘরেলু মামলা হ্যায়। কন তৃণমূল কংগ্রেস চোটি চাটা কে সাথ রহেগা, কন তৃণমূল কংগ্রেস বালিশ চাটাও কে সাথ রহেগা, তো ইয়ে উনকা মামলা হ্যায়, আপসি মামলা হ্যায়, ঘরেলু মামলা হ্যায়।
8: আধা ইস তরফ চলা গিয়া, আধা উস তরফ চলা গিয়া, আবি কোই সাথ মে হ্যায়ই নেই। ইয়ে তো স্বাভাবিক থা কিউকি টিএমসি এসা এক, ও তো কোই পার্টিকুলার দল নেই থা, वो ऐसा एक ये था कि ये पारिवारिक एक संस्था थी, तो इसीलिए इसका हालत इतना बुरा हुआ है और भी बहुत बुरा होने वाले, मतलब ममता बनर्जी के पास अभी कोई ऐसा कोई लोग बचे नहीं जो उनके साथ दे सकते हैं। ये लोग इतना, चंद्रिमा भट्टाचार्य वॉज वन ऑफ द क्लोजेस्ट एसोसिएट ऑफ ममता बनर्जी, अभी वो भी छोड़ के चले गए।
2: A massive political storm has erupted in Jammu and Kashmir over a controversial book allegedly cleared for government school libraries. The publication is accused of glorifying terrorists and separatist leaders, describing JKLF terrorist Maqbool Bhatt as a shaheed. It also allegedly presents separatist leaders Syed Ali Shah Gilani, Masarat Alam and Mirwais Omar Farooq in a favorable light and referring to the region as Indian-held Kashmir and Indian-occupied Kashmir. The controversy has triggered fierce backlash, with the BJP calling it an attempt to poison young minds and demand strict accountability.
9: ये जो बुक प्रकाशित हुई है और जिस बुक को जम्मू कश्मीर के शिक्षा विभाग ने अनेक विद्यालय के पुस्तकालयों में वितरित करने का काम किया है, जिस पुस्तक में हत्यारियों को, दोषियों को, आतंकवादियों, अलगाववादियों को, पत्थरबाजों को महिमामंडित किया गया है, जिन दोषियों को सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाकर उनको आतंकवादी करार दिया था, ऐसे लोगों को इस पुस्तक में प्रकाशित करके शिक्षा की सामग्री बना के जम्मू कश्मीर के उन नौजवान बच्चों के मस्तिष्क में जहर भरने का काम किया है जो देश का भविष्य संवारने के लिए स्कूलों में जाते हैं।
10: जिन आतंकवादियों ने कश्मीर को दहलाया, जिन आतंकवादियों ने 30 साल तक कश्मीर में खून की होली खेली, और आप इनको शहीद कहोगे? आप मकबूल भट जो टेररिस्ट है, मसरत आलम, उसको लेजेंड कहोगे और मकबूल भट को शहीद कहोगे? भारत का पैसा लेके भारत के खिलाफ आप यूज करोगे? भारत का पैसा भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए आप इस्तेमाल करोगे?
11: अफसोस इस बात का है कि हमारी जम्मू कश्मीर की इलेक्टेड सरकार ने, जिसने भारत के संविधान की शपथ ली है, उसने इसको अप्रूव किया और एक ऑर्डर इशू किया कि ये सभी सरकारी स्कूलों में, लाइब्रेरीज में रखी जाएगी, सभी और सरकारी कॉलेजेस में। जिस किताब में ऐसा मेंशन है कि मकबूल भट, जो एक टेररिस्ट था, जो जम्मू कश्मीर को भारत से इलादा करना चाहता था, जो पाकिस्तान के इशारों पर यहाँ टेररिज्म स्टार्ट करना चाहता था और भारत से अलग करना चाहता था, उसको सजाए मौत दी गई जज साहब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करके, और उसको शहीद आजम बताया जाता।
2: What began as a case of missing cash has now snowballed into a major scandal involving gold, silver and possible evidence tampering. Ram Mandir donation theft row has shaken the faith of millions. Key accused have started signing and the SIT is now investigating to find the larger players. We are getting you all the details in this report.
12: As the Ram Mandir donation theft probe intensifies, more skeletons are tumbling out of the closet. New revelations are coming to light every single day. In a significant breakthrough, key accused Avinash Shukla has confessed to the crime. Avinash Shukla was confronted with the CCTV footage where he could be clearly seen stealing money. Police found that Avinash bought a car with the stolen money. He got a car registered in his brother's name to avoid suspicion. Avinash Shukla told investigators that all the accused knew each other well and that the money was distributed among them equally. This gang also met regularly near the secluded area of 14 Kosi Parikrama Mark in Ayodhya to divide the stolen amount.
13: न सिर्फ अविनाश शुक्ला बल्कि चढ़ावा चोरी के सभी आरोपी मिले थे। सभी आरोपियों के बीच में बैठकें होती थी, मीटिंग होती थी और इनके चढ़ावा चोरी की रकम से ही तमाम लोगों ने संपत्तियां बनाई। लवकुश मिश्रा ने मकान बनवाया, अविनाश शुक्ला ने ये कार खरीदी अपने भाई के नाम पर, यानी कि अभिषेक इस कार को चौथा खरीदार है जिसे चढ़ावा चोरी की रकम से अविनाश ने अपने भाई के नाम पर खरीदा था।
12: The SIT is also probing whether the arrested accused stole gold and silver ornaments from the temple. No gold or silver has been recovered from them. Probe teams have confirmed that around 1300 kilograms of silver and 20 kilograms of gold are currently accounted for in the Mandir treasury. However, the probe is on to find out if the ornaments were stolen and melted into gold biscuits in order to destroy the evidence. The donation theft has ignited a massive political storm. When RSS Chief Mohan Bhagwat was asked about the donation theft, he evaded the question.
14: प्रति आस्था को कुछ लोग धक्का पहुंचा रहे। प्रति आस्था को कुछ लोग धक्का पहुंचा रहे।
12: Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav has taken a dig at Chanda Chores by releasing an AI-generated video song.

0: are watching India Today.
1: Yes, the battle over the asli TMC, that is escalating with every passing day. In the latest dramatic twist after the Trinamool Bhavan showdown that had happened, another close Mamata Banerjee aide, Chandrima Bhattacharya, who's resigned from the party, exposing further cracks within the TMC. Following that incident at Trinamool Bhavan, Chandrima Bhattacharya claimed Mamata Banerjee called her and accused her of handing over Trinamool Bhavan to the rebels. Chandrima said the remark deeply hurt her and insisted that there was no need for such a statement. Post this, she met with LOP and rebel leader Ritha Pratap Banerjee. Hitting back, TMC Supremo Mamata Banerjee said Chandrima had already expressed her desire to resign. She also claimed Bhattacharya's son had already patched up with the rebel faction, adding that she was unbothered by the resignation and remarking that some people come with baggage. The political turmoil comes after the rebel faction dramatically seized control of Trinamool Bhavan, the party headquarters in Kolkata. Rebel leaders entered the office, held a meeting inside, allegedly locked the gates and installed a new banner declaring Arup Roy as the chairman of the Trinamool Congress.
2: एक घटना हुई है, आप देखे हैं तृणमूल भवन में, तो वहां पर उसके उसके बाद में हमसे ममता जी की बात हुई थी टेलीफोन में, तो वो हमको उन्होंने हमको बोला कि आप दे दिए उनके हाथ में तृणमूल भवन, तो ये हमें बहुत दुख लगा क्योंकि हम तो हर रोज तृणमूल भवन में ठीक टाइम में जाते थे और ठीक टाइम जितना कि हमारा टाइम था वही टाइम पे आते थे और कल भी हम वैसे ही आए
3: এবং আজকেই তার জন্য কাউকে পদত্যাগ করতে হলো। আসল ঘটনা তা নয়, উনি অনেকদিন ধরেই আমাকে বলছিলেন পদত্যাগ করবেন, কারণ ওনার ছেলেরা গিয়ে ছেলে গিয়ে অলরেডি হাত মিলিয়েছেন। আমার তার জন্য কিছু বলার নেই, ভালো বুঝেছে হাত মিলিয়েছে, তাদের লাগেজ ব্যাগে থাকতে পারে, কিন্তু আমি তো হাত মেলাবো না। আপনারা একজন কোথায় গেলেন কি না গেলেন, আই ডোন্ট কেয়ার।
4: देखिए कोई कुछ डिसीजन ले सकता है, लेकिन एक आदमी जो ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर जब थे तब सबसे बड़ा लिस्ट जिसका था इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री का, तब कोई अभिमान नहीं था, अभी अभिमान दिखा रहा है।
5: इश्तेहार देना चाहिए कि हमें सभापति चाहिए। देखिए बंगाल में यदि कोई तैयार हो इसके लिए इंतजार करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बंगाल को के जनता को जिस तरह से छला है उनका यही हश्र होने वाला था।
6: उनका घरेलू मामला है, उनका आपसी मामला है, मियां बीबी का कोई झगड़ा होता है, कोई कोई हस्बैंड वाइफ का झमेला होता है आपके पास पड़ोस में, आप उसमें पढ़ते हैं क्या? पढ़ते तो नहीं है, हम भी नहीं पढ़ते हैं, तो करने दीजिए, उनका घरेलू मामला है। कौन तृणमूल कांग्रेस चोटी चाटा के साथ रहेगा, कौन तृणमूल कांग्रेस बालिश चाटाओं के साथ रहेगा, तो ये उनका मामला है, आपसी मामला है, घरेलू मामला है।
7: आधा इस तरफ चला गया, आधा उस तरफ चला गया, अभी कोई साथ में है ही नहीं। ये तो स्वाभाविक था क्योंकि टीएमसी ऐसा एक, वो तो कोई पर्टिकुलर दल नहीं था, वो ऐसा एक ये था कि ये पारिवारिक एक संस्था थी, तो इसीलिए इसका हालत इतना बुरा हुआ है और भी बहुत बुरा होने वाले, मतलब ममता बनर्जी के पास अभी कोई ऐसा कोई लोग बचे नहीं जो उनके साथ दे सकते हैं। ये लोग इतना, चंद्रिमा भट्टाचार्य वॉज वन ऑफ द क्लोजेस्ट एसोसिएट ऑफ ममता बनर्जी, अभी वो भी छोड़ के चली गई।
1: A massive political storm has erupted in Jammu and Kashmir over a controversial book allegedly cleared for government school libraries. The publication is accused of glorifying terrorists and separatist leaders, describing JKLF terrorist Maqbool Bhatt as a shaheed. It also allegedly presents separatist leaders Syed Ali Shah Gilani, Masarat Alam and Mirwais Omar Farooq in a favourable light and referring to the region as Indian-held Kashmir and Indian-occupied Kashmir. The controversy has triggered fierce backlash, with the BJP calling it an attempt to poison young minds and demand strict accountability.
8: ये जो बुक प्रकाशित हुई है और जिस बुक को जम्मू कश्मीर के शिक्षा विभाग ने अनेक विद्यालय के पुस्तकालयों में वितरित करने का काम किया है, जिस पुस्तक में हत्यारियों को, दोषियों को, आतंकवादियों, अलगाववादियों को, पत्थरबाजों को महिमा मंडित किया गया है, जिन दोषियों को सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाकर उनको आतंकवादी करार दिया था, ऐसे लोगों को इस पुस्तक में प्रकाशित करके शिक्षा की सामग्री बना के जम्मू कश्मीर के उन नौजवान बच्चों के मस्तिष्क में जहर भरने का काम किया है जो देश का भविष्य संवारने के लिए स्कूलों में जाते हैं।
9: जिन आतंकवादियों ने कश्मीर को दहलाया, जिन आतंकवादियों ने 30 साल तक कश्मीर में खून की होली खेली और आप इनको शहीद कहोगे, आप मकबूल भट्ट जो टेररिस्ट है मसरत आलम उसको लेजेंड कहोगे और मकबूल भट्ट को शहीद कहोगे, भारत का पैसा लेके भारत के खिलाफ आप यूज करोगे, भारत का पैसा भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए आप इस्तेमाल करोगे।
10: अफसोस इस बात का है कि हमारी जम्मू कश्मीर की इलेक्टेड सरकार ने जिसने भारत के संविधान की शपथ ली है उसने इसको अप्रूव किया और एक ऑर्डर इशू किया कि ये सभी सरकारी स्कूलों में लाइब्रेरीज में रखी जाएगी, सभी सरकारी कॉलेजेस में। जिस किताब में ऐसा मेंशन है कि मकबूल भट्ट जो एक टेररिस्ट था जो जम्मू कश्मीर को भारत से इलादा करना चाहता था, जो पाकिस्तान के इशारों पर यहाँ टेररिज्म स्टार्ट करना चाहता था और भारत से अलग करना चाहता था, उसको सजाए मौत दी गई जज साहब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करके और उसको शहीद आजम बताया जाता।
1: What began as a case of missing cash has now snowballed into a major scandal involving gold, silver and possible evidence tampering. Ram Mandir donation theft row has shaken the faith of millions. Key accused have started signing and the SIT is now investigating to find the larger players. We are getting you all the details in this report.
11: As the Ram Mandir donation theft probe intensifies, more skeletons are tumbling out of the closet. New revelations are coming to light every single day. In a significant breakthrough, key accused Avinash Shukla has confessed to the crime. Avinash Shukla was confronted with the CCTV footage where he could be clearly seen stealing money. Police found that Avinash bought a car with the stolen money. He got a car registered in his brother's name to avoid suspicion. Avinash Shukla told investigators that all the accused knew each other well and that the money was distributed among them equally. This gang also met regularly near the secluded area of 14 Kosi Parikrama Mark in Ayodhya to divide the stolen amount.
12: न सिर्फ अविनाश शुक्ला बल्कि चढ़ावा चोरी के सभी आरोपी मिले थे। सभी आरोपियों के बीच में बैठकें होती थी, मीटिंग होती थी और इनके चढ़ावा चोरी की रकम से ही तमाम लोगों ने संपत्तियां बनाई। लवकुश मिश्रा ने मकान बनवाया, अविनाश शुक्ला ने ये कार खरीदी अपने भाई के नाम पर, यानी कि अभिषेक इस कार को चौथा खरीदार है जिसे चढ़ावा चोरी की रकम से अविनाश ने अपने भाई के नाम पर खरीदा था।
11: The SIT is also probing whether the arrested accused stole gold and silver ornaments from the temple. No gold or silver has been recovered from them. Probe teams have confirmed that around 1300 kilograms of silver and 20 kilograms of gold are currently accounted for in the Mandir treasury. However, the probe is on to find out if the ornaments were stolen and melted into gold biscuits in order to destroy the evidence. The donation theft has ignited a massive political storm. When RSS Chief Mohan Bhagwat was asked about the donation theft, he evaded the question.
13: प्रति आस्था को कुछ लोग धक्का पहुंचा रहे। प्रति आस्था को कुछ लोग धक्का पहुंचा रहे।
11: Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav has taken a dig at Chanda Chores by releasing an AI-generated video song.

0: are watching India Today.
1: Yes, the battle over the asli TMC, that is escalating with every passing day. In the latest dramatic twist after the Trinamool Bhavan showdown that had happened, another close Mamata Banerjee aide, Chandrima Bhattacharya, who's resigned from the party, exposing further cracks within the TMC. Following that incident at Trinamool Bhavan, Chandrima Bhattacharya claimed Mamata Banerjee called her and accused her of handing over Trinamool Bhavan to the rebels. Chandrima said the remark deeply hurt her and insisted that there was no need for such a statement. Post this, she met with LOP and rebel leader Rita Pratap Banerjee. Hitting back, TMC Supremo Mamata Banerjee said Chandrima had already expressed her desire to resign. She also claimed Bhattacharya's son had already patched up with the rebel faction, adding that she was unbothered by the resignation and remarking that some people come with baggage. The political turmoil comes after the rebel faction dramatically seized control of Trinamool Bhavan, the party headquarters in Kolkata. Rebel leaders entered the office, held a meeting inside, allegedly locked the gates and installed a new banner declaring Arup Roy as the chairman of the Trinamool Congress.
2: एक घटना हुई है, आप देखे हैं तृणमूल भवन में, तो वहां पर उसके उसके बाद में हमसे ममता जी की बात हुई थी टेलीफोन में, तो वो हमको उन्होंने हमको बोला कि आप दे दिए उनके हाथ में तृणमूल भवन, तो ये हमें बहुत दुख लगा क्योंकि हम तो हर रोज तृणमूल भवन में ठीक टाइम में जाते थे और ठीक टाइम जितना कि हमारा टाइम था वही टाइम पे आते थे और कल भी हम वैसे ही आए
3: এবং আজকেই তার জন্য কাউকে পদত্যাগ করতে হলো। আসল ঘটনা তা নয়, উনি অনেকদিন ধরেই আমাকে বলছিলেন পদত্যাগ করবেন, কারণ ওনার ছেলেরা গিয়ে ছেলে গিয়ে অলরেডি হাত মিলিয়েছেন। আমার তার জন্য কিছু বলার নেই, ভালো বুঝেছে হাত মিলিয়েছে, তাদের লাগেজ ব্যাগে থাকতে পারে, কিন্তু আমি তো হাত মেলাবো না। আপনারা একজন কোথায় গেলেন কি না গেলেন, আই ডোন্ট কেয়ার।
4: देखिए कोई कुछ डिसीजन ले सकता है, लेकिन एक आदमी जो ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर जब थे तब सबसे बड़ा लिस्ट जिसका था इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री का, तब कोई अभिमान नहीं था, अभी अभिमान दिखा रहा है।
5: इश्तेहार देना चाहिए कि हमें सभापति चाहिए। देखिए बंगाल में यदि कोई तैयार हो इसके लिए इंतजार करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बंगाल को के जनता को जिस तरह से छला है उनका यही हश्र होने वाला था।
6: उनका घरेलू मामला है, उनका आपसी मामला है, मियां बीबी का कोई झगड़ा होता है, कोई कोई हस्बैंड वाइफ का झमेला होता है आपके पास पड़ोस में, आप उसमें पढ़ते हैं क्या? पढ़ते तो नहीं है, हम भी नहीं पढ़ते हैं, तो करने दीजिए, उनका घरेलू मामला है। कौन तृणमूल कांग्रेस चोटी चाटा के साथ रहेगा, कौन तृणमूल कांग्रेस बालिश चाटाओं के साथ रहेगा, तो ये उनका मामला है, आपसी मामला है, घरेलू मामला है।
7: आधा इस तरफ चला गया, आधा उस तरफ चला गया, अभी कोई साथ में है ही नहीं। ये तो स्वाभाविक था क्योंकि टीएमसी ऐसा एक, वो तो कोई पर्टिकुलर दल नहीं था, वो ऐसा एक ये था कि ये पारिवारिक एक संस्था थी, तो इसीलिए इसका हालत इतना बुरा हुआ है और भी बहुत बुरा होने वाले, मतलब ममता बनर्जी के पास अभी कोई ऐसा कोई लोग बचे नहीं जो उनके साथ दे सकते हैं। ये लोग इतना, चंद्रिमा भट्टाचार्य वॉज वन ऑफ द क्लोजेस्ट एसोसिएट ऑफ ममता बनर्जी, अभी वो भी छोड़ के चली गई।
1: A massive political storm has erupted in Jammu and Kashmir over a controversial book allegedly cleared for government school libraries. The publication is accused of glorifying terrorists and separatist leaders, describing JKLF terrorist Maqbool Bhatt as a shaheed. It also allegedly presents separatist leaders Syed Ali Shah Gilani, Masarat Alam and Mirwais Omar Farooq in a favorable light and referring to the region as Indian-held Kashmir and Indian-occupied Kashmir. The controversy has triggered fierce backlash, with the BJP calling it an attempt to poison young minds and demand strict accountability.
8: ये जो बुक प्रकाशित हुई है और जिस बुक को जम्मू कश्मीर के शिक्षा विभाग ने अनेक विद्यालय के पुस्तकालयों में वितरित करने का काम किया है, जिस पुस्तक में हत्यारियों को, दोषियों को, आतंकवादियों, अलगाववादियों को, पत्थरबाजों को महिमा मंडित किया गया है, जिन दोषियों को सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाकर उनको आतंकवादी करार दिया था, ऐसे लोगों को इस पुस्तक में प्रकाशित करके शिक्षा की सामग्री बना के जम्मू कश्मीर के उन नौजवान बच्चों के मस्तिष्क में जहर भरने का काम किया है जो देश का भविष्य संवारने के लिए स्कूलों में जाते हैं।
9: जिन आतंकवादियों ने कश्मीर को दहलाया, जिन आतंकवादियों ने 30 साल तक कश्मीर में खून की होली खेली और आप इनको शहीद कहोगे, आप मकबूल भट्ट जो टेररिस्ट है मसरत आलम उसको लेजेंड कहोगे और मकबूल भट्ट को शहीद कहोगे, भारत का पैसा लेके भारत के खिलाफ आप यूज करोगे, भारत का पैसा भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए आप इस्तेमाल करोगे।
10: अफसोस इस बात का है कि हमारी जम्मू कश्मीर की इलेक्टेड सरकार ने जिसने भारत के संविधान की शपथ ली है उसने इसको अप्रूव किया और एक ऑर्डर इशू किया कि ये सभी सरकारी स्कूलों में लाइब्रेरीज में रखी जाएगी, सभी सरकारी कॉलेजेस में। जिस किताब में ऐसा मेंशन है कि मकबूल भट्ट जो एक टेररिस्ट था जो जम्मू कश्मीर को भारत से इलादा करना चाहता था, जो पाकिस्तान के इशारों पर यहाँ टेररिज्म स्टार्ट करना चाहता था और भारत से अलग करना चाहता था, उसको सजाए मौत दी गई जज साहब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करके और उसको शहीद आजम बताया जाता।
1: What began as a case of missing cash has now snowballed into a major scandal involving gold, silver and possible evidence tampering. Ram Mandir donation theft row has shaken the faith of millions. Key accused have started signing and the SIT is now investigating to find the larger players. We are getting you all the details in this report.
11: As the Ram Mandir donation theft probe intensifies, more skeletons are tumbling out of the closet. New revelations are coming to light every single day. In a significant breakthrough, key accused Avinash Shukla has confessed to the crime. Avinash Shukla was confronted with the CCTV footage where he could be clearly seen stealing money. Police found that Avinash bought a car with the stolen money. He got a car registered in his brother's name to avoid suspicion. Avinash Shukla told investigators that all the accused knew each other well and that the money was distributed among them equally. This gang also met regularly near the secluded area of 14 Kosi Parikrama Mark in Ayodhya to divide the stolen amount.
12: न सिर्फ अविनाश शुक्ला बल्कि चढ़ावा चोरी के सभी आरोपी मिले थे। सभी आरोपियों के बीच में बैठकें होती थी, मीटिंग होती थी और इनके चढ़ावा चोरी की रकम से ही तमाम लोगों ने संपत्तियां बनाई। लवकुश मिश्रा ने मकान बनवाया, अविनाश शुक्ला ने ये कार खरीदी अपने भाई के नाम पर, यानी कि अभिषेक इस कार को चौथा खरीदार है जिसे चढ़ावा चोरी की रकम से अविनाश ने अपने भाई के नाम पर खरीदा था।
11: The SIT is also probing whether the arrested accused stole gold and silver ornaments from the temple. No gold or silver has been recovered from them. Probe teams have confirmed that around 1300 kilograms of silver and 20 kilograms of gold are currently accounted for in the Mandir treasury. However, the probe is on to find out if the ornaments were stolen and melted into gold biscuits in order to destroy the evidence. The donation theft has ignited a massive political storm. When RSS Chief Mohan Bhagwat was asked about the donation theft, he evaded the question.
13: प्रति आस्था को कुछ लोग धक्का पहुंचा रहे। प्रति आस्था को कुछ लोग धक्का पहुंचा रहे।
11: Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav has taken a dig at Chanda Chores by releasing an AI-generated video song.

0: என் நெஞ்சில் குடியிருக்கும்.
1: For over three decades, he ruled the silver screen like few ever could.
0: See Joseph Vijayanam Nan.
1: But in 2024, Vijay made a choice that changed everything. With the launch of Tamilaga Vetri Karagam, the superstar turned a new page. Part that eventually led him to the highest office in the state. But every new beginning comes with a goodbye. And for Vijay, that goodbye was cinema. Here's what makes the story even more emotional. The final chapter of Talapathy's cinematic journey is still waiting to meet its audience. Jananayagan was meant to be Vijay's grand farewell to the silver screen. Yet, despite the massive anticipation, release plans and fan frenzy, the film has faced multiple delays and is still awaiting its complete theatrical journey. From its title, which translates to People's Leader, to reports surrounding its political themes.
2: Come, let's play a game. Innilirna pompadavdanar, India yen kaaladila vandha varum.
3: Enna plan?
1: Jananayagan has sparked conversations about how closely the film may reflect Vijay's real-world image.
4: You are watching India Today.
5: Yes, the battle over the asli TMC that is escalating with every passing day. In the latest dramatic twist after the Trinamool Bhavan showdown that had happened, another close Mamata Banerjee aide Chandrima Bhattacharya, who's resigned from the party, exposing further cracks within the TMC. Following that incident at Trinamool Bhavan, Chandrima Bhattacharya claimed Mamata Banerjee called her and accused her of handing over Trinamool Bhavan to the rebels. Chandrima said the remark deeply hurt her and insisted that there was no need for such a statement. Post this, she met with LOP and rebel leader Ritha Pratap Banerjee. Hitting back, TMC Supremo Mamata Banerjee said Chandrima had already expressed her desire to resign. She also claimed Bhattacharya's son had already patched up with the rebel faction, adding that she was unbothered by the resignation and remarking that some people come with baggage. The political turmoil comes after the rebel faction dramatically seized control of Trinamool Bhavan, the party headquarters in Kolkata. Rebel leaders entered the office, held a meeting inside, allegedly locked the gates and installed a new banner declaring Arup Roy as the chairman of the Trinamool Congress.
6: एक घटना हुई है, आप देखे हैं तृणमूल भवन में, तो वहां पर उसके बाद में हमसे ममता जी की बात हुई थी टेलीफोन में, तो वो हमको उन्होंने हमको बोला कि आप दे दिए उनके हाथ में तृणमूल भवन, तो ये हमें बहुत दुख लगा क्योंकि हम तो हर रोज तृणमूल भवन में ठीक टाइम में जाते थे और ठीक टाइम जितना कि हमारा टाइम था वही टाइम पे तृणमूल भवन में ठीक टाइम में जाते थे और ठीक टाइम जितना कि हमारा टाइम था वही टाइम पे
7: আমার তার জন্য কিছু বলার নেই, ভালো বুঝেছে হাত মিলিয়েছে, তাদের লাগেজ ব্যাগে থাকতে পারে, কিন্তু আমি তো হাত মেলাবো না। আপনারা একজন কোথায় গেলেন কি না গেলেন, আই ডোন্ট
8: কেয়ার। মমতা ব্যানার্জি চিফ মিনিস্টার জব থে তব সবসে বড়া লিস্ট জিসকা থা ইম্পর্টেন্ট মিনিস্ট্রি কা তব কোই অভিমান নহীঁ থা, আবি অভিমান দিখা রহা হ্যায়।
9: इश्तहार देना चाहिए कि हमें सभापति चाहिए। देखिए बंगाल में यदि कोई तैयार हो इसके लिए इंतजार करना चाहिए, क्यों उन्होंने बंगाल को के जनता को जिस तरह से छला है उनका यही हश्र होने वाला था।
3: उनका घरेलू मामला है, उनका आपसी मामला है। मियां बीबी का कोई झगड़ा होता है, कोई कोई हस्बैंड वाइफ का झमेला होता है आपके पास पड़ोस में, आप उसमें पढ़ते हैं क्या? पढ़ते तो नहीं है, हम भी नहीं पढ़ते हैं। तो करने दीजिए, उनका घरेलू मामला है। कौन तृणमूल कांग्रेस चोटी चाटा के साथ रहेगा, कौन तृणमूल कांग्रेस बालिश चाटाओं के साथ रहेगा, तो ये उनका मामला है, आपसी मामला है, घरेलू मामला है।
10: आधा इस तरफ चला गया, आधा उस तरफ चला गया, अभी कोई साथ में है ही नहीं। ये तो स्वाभाविक था, क्योंकि टीएमसी ऐसा एक, वो तो कोई पर्टिकुलर दल नहीं था, वो ऐसा एक ये था कि ये पारिवारिक एक संस्था थी, तो इसीलिए इसका हालत इतना बुरा हुआ है। और भी बहुत बुरा होने वाले, मतलब ममता बनर्जी के पास अभी कोई ऐसा कोई लोग बचे नहीं जो उनके साथ दे सकते हैं। ये लोग इतना, चंद्रिमा भट्टाचार्य वॉज वन ऑफ द क्लोजेस्ट एसोसिएट ऑफ ममता बनर्जी, अभी वो भी छोड़ के चली गई।
5: A massive political storm has erupted in Jammu and Kashmir over a controversial book allegedly cleared for government school libraries. The publication is accused of glorifying terrorists and separatist leaders, describing JKLF terrorist Maqbool Bhatt as a shaheed. It also allegedly presents separatist leaders Syed Ali Shah Gilani, Masarat Alam and Mirwais Omar Farooq in a favorable light and referring to the region as Indian-held Kashmir and Indian-occupied Kashmir. The controversy has triggered fierce backlash, with the BJP calling it an attempt to poison young minds and demand strict accountability.
11: ये जो बुक प्रकाशित हुई है और जिस बुक को जम्मू कश्मीर के शिक्षा विभाग ने अनेक विद्यालय के पुस्तकालयों में वितरित करने का काम किया है, जिस पुस्तक में हत्यारियों को, दोषियों को, आतंकवादियों, अलगाववादियों को, पत्थरबाजों को महिमा मंडित किया गया है, जिन दोषियों को सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाकर उनको आतंकवादी करार दिया था, ऐसे लोगों को इस पुस्तक में प्रकाशित करके शिक्षा की सामग्री बना के जम्मू कश्मीर के उन नौजवान बच्चों के मस्तिष्क में जहर भरने का काम किया है जो देश का भविष्य संवारने के लिए स्कूलों में जाते हैं।
12: जिन आतंकवादियों ने कश्मीर को दहलाया, जिन आतंकवादियों ने 30 साल तक कश्मीर में खून की होली खेली, और आप इनको शहीद कहोगे? आप मकबूल भट्ट जो टेररिस्ट है, मसरत आलम, उसको लेजेंड कहोगे और मकबूल भट्ट को शहीद कहोगे? भारत का पैसा लेके भारत के खिलाफ आप यूज करोगे? भारत का पैसा भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए आप इस्तेमाल करोगे?
13: अफसोस इस बात का है कि हमारी जम्मू कश्मीर की इलेक्टेड सरकार ने, जिसने भारत के संविधान की शपथ ली है, उसने इसको अप्रूव किया और एक ऑर्डर इशू किया कि ये सभी सरकारी स्कूलों में, लाइब्रेरीज में रखी जाएगी, सभी सरकारी कॉलेजेस में। जिस किताब में ऐसा मेंशन है कि मकबूल भट्ट, जो एक टेररिस्ट था, जो जम्मू कश्मीर को भारत से इलादा करना चाहता था, जो पाकिस्तान के इशारों पर यहाँ टेररिज्म स्टार्ट करना चाहता था और भारत से अलग करना चाहता था, उसको सजाए मौत दी गई जज साहब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करके, और उसको शहीद आजम बताया जाता।
5: What began as a case of missing cash has now snowballed into a major scandal involving gold, silver and possible evidence tampering. Ram Mandir donation theft row has shaken the faith of millions. Key accused have started signing and the SIT is now investigating to find the larger players. We are getting you all the details in this report.
14: As the Ram Mandir donation theft probe intensifies, more skeletons are tumbling out of the closet. New revelations are coming to light every single day. In a significant breakthrough, key accused Avinash Shukla has confessed to the crime. Avinash Shukla was confronted with the CCTV footage where he could be clearly seen stealing money. Police found that Avinash bought a car with the stolen money. He got a car registered in his brother's name to avoid suspicion. Avinash Shukla told investigators that all the accused knew each other well and that the money was distributed among them equally. This gang also met regularly near the secluded area of 14 Kosi Parikrama Mark in Ayodhya to divide the stolen amount.
15: न सिर्फ अविनाश शुक्ला बल्कि चढ़ावा चोरी के सभी आरोपी मिले थे। सभी आरोपियों के बीच में बैठकें होती थी, मीटिंग होती थी, और इनके चढ़ावा चोरी की रकम से ही तमाम लोगों ने संपत्तियां बनाई, लवकुश मिश्रा ने मकान बनवाया, अविनाश शुक्ला ने ये कार खरीदी अपने भाई के नाम पर, यानी कि अभिषेक इस कार को चौथा खरीदार है जिसे चढ़ावा चुबरी की रकम से अविनाश ने अपने भाई के नाम पर खरीदा था।
16: The SIT is also probing whether the arrested accused stole gold and silver ornaments from the temple. No gold or silver has been recovered from them. Probe teams have confirmed that around 1300 kilograms of silver and 20 kilograms of gold are currently accounted for in the Mandir treasury. However, the probe is on to find out if the ornaments were stolen and melted into gold biscuits in order to destroy the evidence. The donation theft has ignited a massive political storm. When RSS Chief Mohan Bhagwat was asked about the donation theft, he evaded the question.
17: प्रति आस्था को कुछ लोग धक्का पहुंचा रहे। प्रति आस्था को कुछ लोग धक्का पहुंचा रहे।
16: Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav has taken a dig at Chanda Chores by releasing an AI-generated video song.

0: Yes. Because sometimes the most beautiful love stories don't just inspire songs, they become one. With Alice, Entertainment Bureau, India Today.
1: It's a wrap on this edition. For more news and updates, you can log on to our website, indiatoday.in. You can also download our app. Thank you so much for watching.
2: You are watching India Today.
3: You may already think of TuneIn as your go-to audio app, but it's also your go-everywhere audio app. Because TuneIn works on just about every device you already use. Smart speakers? Yep. In your car? Absolutely. Phone or tablet? Yeah, of course. Wherever you are, your audio comes with you. And if you want to go hands-free, just say open TuneIn Live on your Alexa-enabled device and follow the interactive prompts to find the station you're looking for. No tapping, no searching. Just press play with your voice.
2: You are watching India Today.
1: Yes, the battle over the asli TMC, that is escalating with every passing day. In the latest dramatic twist after the Trinamool Bhavan showdown that had happened, another close Mamata Banerjee aide, Chandrima Bhattacharya, who's resigned from the party, exposing further cracks within the TMC. Following that incident at Trinamool Bhavan, Chandrima Bhattacharya claimed Mamata Banerjee called her and accused her of handing over Trinamool Bhavan to the rebels. Chandrima said the remark deeply hurt her and insisted that there was no need for such a statement. Post this, she met with LOP and rebel leader Ritha Pratap Banerjee. Hitting back, TMC Supremo Mamata Banerjee said Chandrima had already expressed her desire to resign. She also claimed Bhattacharya's son had already patched up with the rebel faction, adding that she was unbothered by the resignation and remarking that some people come with baggage. The political turmoil comes after the rebel faction dramatically seized control of Trinamool Bhavan, the party headquarters in Kolkata. Rebel leaders entered the office, held a meeting inside, allegedly locked the gates and installed a new banner declaring Arup Roy as the chairman of the Trinamool Congress.
4: एक घटना हुई है, आप देखे हैं तृणमूल भवन में, तो वहां पर उसके उसके बाद में हमसे ममता जी की बात हुई थी टेलीफोन में, तो वो हमको उन्होंने हमको बोला कि आप दे दिए उनके हाथ में तृणमूल भवन, तो ये हमें बहुत दुख लगा क्योंकि हम तो हर रोज तृणमूल भवन में ठीक टाइम में जाते थे और ठीक टाइम जितना कि हमारा टाइम था वही टाइम पे आते थे और कल भी हम वैसे ही आए
5: এবং আজকেই তার জন্য কাউকে পদত্যাগ করতে হলো। আসল ঘটনা তা নয়, উনি অনেকদিন ধরেই আমাকে বলছিলেন পদত্যাগ করবেন, কারণ ওনার ছেলেরা গিয়ে ছেলে গিয়ে অলরেডি হাত মিলিয়েছেন। আমার তার জন্য কিছু বলার নেই, ভালো বুঝেছে হাত মিলিয়েছে, তাদের লাগেজ ব্যাগে থাকতে পারে, কিন্তু আমি তো হাত মেলাবো না। আপনারা একজন কোথায় গেলেন কি না গেলেন, আই ডোন্ট কেয়ার।
6: देखिए कोई कुछ डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन एक आदमी जो ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर जब थे तब सबसे बड़ा लिस्ट जिसका था इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री का, तब कोई अभिमान नहीं था, अभी अभिमान दिखा रहा है।
7: इश्तेहार देना चाहिए कि हमें सभापति चाहिए। देखिए बंगाल में यदि कोई तैयार हो इसके लिए इंतजार करना चाहिए, क्यों उन्होंने बंगाल को के जनता को जिस तरह से छला है उनका यही हस्त्र होने वाला था।
8: उनका घरेलू मामला है, उनका आपसी मामला है, मियां बीबी का कोई झगड़ा होता है, कोई कोई हस्बैंड वाइफ का झमेला होता है आपके पास पड़ोस में, आप उसमें पढ़ते हैं क्या? पढ़ते तो नहीं, हम भी नहीं पढ़ते, तो करने दीजिए, उनका घरेलू मामला है। कौन तृणमूल कांग्रेस चोटी चाटा के साथ रहेगा, कौन तृणमूल कांग्रेस बालिश चाटाओं के साथ रहेगा, तो ये उनका मामला है, आपसी मामला है, घरेलू मामला है।
9: आधा इस तरफ चला गया, आधा उस तरफ चला गया, अभी कोई साथ में है ही नहीं। ये तो स्वाभाविक था क्योंकि टीएमसी ऐसा एक, वो तो कोई पर्टिकुलर दल नहीं था, वो ऐसा एक ये था कि ये पारिवारिक एक संस्था थी, तो इसीलिए इसका हालत इतना बुरा हुआ है और भी बहुत बुरा होने वाले। मतलब ममता बनर्जी के पास अभी कोई ऐसा कोई लोग बचे नहीं जो उनके साथ दे सकते हैं। ये लोग इतना, चंद्रिमा भट्टाचार्य वॉज वन ऑफ द क्लोजेस्ट एसोसिएट ऑफ ममता बनर्जी, अभी वो भी छोड़ के चले गए।
1: A massive political storm has erupted in Jammu and Kashmir over a controversial book allegedly cleared for government school libraries. The publication is accused of glorifying terrorists and separatist leaders, describing JKLF terrorist Maqbool Bhatt as a shaheed. It also allegedly presents separatist leaders Syed Ali Shah Gilani, Masarat Alam and Mirwais Omar Farooq in a favourable light and referring to the region as Indian-held Kashmir and Indian-occupied Kashmir. The controversy has triggered fierce backlash, with the BJP calling it an attempt to poison young minds and demand strict accountability.
10: ये जो बुक प्रकाशित हुई है और जिस बुक को जम्मू कश्मीर के शिक्षा विभाग ने अनेक विद्यालय के पुस्तकालयों में वितरित करने का काम किया है, जिस पुस्तक में हत्यारियों को, दोषियों को, आतंकवादियों, अलगाववादियों को, पत्थरबाजों को महिमा मंडित किया गया है, जिन दोषियों को सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाकर उनको आतंकवादी करार दिया था, ऐसे लोगों को इस पुस्तक में प्रकाशित करके शिक्षा की सामग्री बना के जम्मू कश्मीर के उन नौजवान बच्चों के मस्तिष्क में जहर भरने का काम किया है जो देश का भविष्य संवारने के लिए स्कूलों में जाते हैं।
11: जिन आतंकवादियों ने कश्मीर को दहलाया, जिन आतंकवादियों ने 30 साल तक कश्मीर में खून की होली खेली, और आप इनको शहीद कहोगे? आप मकबूल भट्ट जो टेररिस्ट है, मसरत आलम, उसको लेजेंड कहोगे और मकबूल भट्ट को शहीद कहोगे? भारत का पैसा लेके भारत के खिलाफ आप यूज करोगे? भारत का पैसा भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए आप इस्तेमाल करोगे?
12: अफसोस इस बात का है कि हमारी जम्मू कश्मीर की इलेक्टेड सरकार ने, जिसने भारत के संविधान की शपथ ली है, उसने इसको अप्रूव किया और एक ऑर्डर इशू किया कि ये सभी सरकारी स्कूलों में, लाइब्रेरीज में रखी जाएगी, सभी सरकारी कॉलेजेस में। जिस किताब में ऐसा मेंशन है कि मकबूल भट्ट, जो एक टेररिस्ट था, जो जम्मू कश्मीर को भारत से इलादा करना चाहता था, जो पाकिस्तान के इशारों पर यहाँ टेररिज्म स्टार्ट करना चाहता था और भारत से अलग करना चाहता था, उसको सजाए मौत दी गई जज साहब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करके, और उसको शहीद आजम बताया जाता।
1: What began as a case of missing cash has now snowballed into a major scandal involving gold, silver and possible evidence tampering. Ram Mandir donation theft row has shaken the faith of millions. Key accused have started signing and the SIT is now investigating to find the larger players. We are getting you all the details in this report.
13: As the Ram Mandir donation theft probe intensifies, more skeletons are tumbling out of the closet. New revelations are coming to light every single day. In a significant breakthrough, key accused Avinash Shukla has confessed to the crime. Avinash Shukla was confronted with the CCTV footage where he could be clearly seen stealing money. Police found that Avinash bought a car with the stolen money. He got a car registered in his brother's name to avoid suspicion. Avinash Shukla told investigators that all the accused knew each other well and that the money was distributed among them equally. This gang also met regularly near the secluded area of 14 Kosi Parikrama Mark in Ayodhya to divide the stolen amount.
14: न सिर्फ अविनाश शुक्ला बल्कि चढ़ावा चोरी के सभी आरोपी मिले थे। सभी आरोपियों के बीच में बैठकें होती थी, मीटिंग होती थी, और इनके चढ़ावा चोरी की रकम से ही तमाम लोगों ने संपत्तियां बनाई। लवकुश मिश्रा ने मकान बनवाया, अविनाश शुक्ला ने ये कार खरीदी अपने भाई के नाम पर, यानी कि अभिषेक इस कार को चौथा खरीदार है जिसे चढ़ावा चोरी की रकम से अविनाश ने अपने भाई के नाम पर खरीदा था।
13: The SIT is also probing whether the arrested accused stole gold and silver ornaments from the temple. No gold or silver has been recovered from them. Probe teams have confirmed that around 1300 kilograms of silver and 20 kilograms of gold are currently accounted for in the Mandir treasury. However, the probe is on to find out if the ornaments were stolen and melted into gold biscuits in order to destroy the evidence. The donation theft has ignited a massive political storm. When RSS Chief Mohan Bhagwat was asked about the donation theft, he evaded the question.
15: प्रति आस्था को कुछ लोग धक्का पहुंचा रहे। प्रति आस्था को कुछ लोग धक्का पहुंचा रहे।
13: Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav has taken a dig at Chanda Chores by releasing an AI-generated video song.

0: are watching India Today.
1: Yes, the battle over the asli TMC, that is escalating with every passing day. In the latest dramatic twist after the Trinamool Bhavan showdown that had happened, another close Mamata Banerjee aide, Chandrima Bhattacharya, who's resigned from the party, exposing further cracks within the TMC. Following that incident at Trinamool Bhavan, Chandrima Bhattacharya claimed Mamata Banerjee called her and accused her of handing over Trinamool Bhavan to the rebels. Chandrima said the remark deeply hurt her and insisted that there was no need for such a statement. Post this, she met with LOP and rebel leader Ritha Pratap Banerjee. Hitting back, TMC Supremo Mamata Banerjee said Chandrima had already expressed her desire to resign. She also claimed Bhattacharya's son had already patched up with the rebel faction, adding that she was unbothered by the resignation and remarking that some people come with baggage. The political turmoil comes after the rebel faction dramatically seized control of Trinamool Bhavan, the party headquarters in Kolkata. Rebel leaders entered the office, held a meeting inside, allegedly locked the gates and installed a new banner declaring Arup Roy as the chairman of the Trinamool Congress.
2: एक घटना हुई है, आप देखे हैं तृणमूल भवन में, तो वहां पर उसके बाद में हमसे ममता जी की बात हुई थी टेलीफोन में, तो वो हमको उन्होंने हमको बोला कि आप दे दिए उनके हाथ में तृणमूल भवन, तो ये हमें बहुत दुख लगा क्योंकि हम तो हर रोज तृणमूल भवन में ठीक टाइम में जाते थे और ठीक टाइम जितना कि हमारा टाइम था वही टाइम पे आते थे और कल भी हम वैसे ही आए
3: এবং আজকেই তার জন্য কাউকে পদত্যাগ করতে হলো। আসল ঘটনা তা নয়, উনি অনেক দিন ধরেই আমাকে বলছিলেন পদত্যাগ করবেন, কারণ ওনার ছেলেরা গিয়ে অলরেডি হাত মিলিয়েছেন। আমার তার জন্য কিছু বলার নেই, ভালো বুঝেছে হাত মিলিয়েছে, তাদের লাগেজ ব্যাগে থাকতে পারে, কিন্তু আমি তো হাত মেলাবো না। আপনারা একজন কোথায় গেলেন কি না গেলেন, আই ডোন্ট
4: কেয়ার। एक आदमी जो ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर जब थे तब सबसे बड़ा लिस्ट जिसका था इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री का, तब कोई अभिमान नहीं था, अभी अभिमान दिखा रहा है।
5: इश्तेहार देना चाहिए कि हमें सभापति चाहिए। देखिए बंगाल में यदि कोई तैयार हो इसके लिए इंतजार करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बंगाल को के जनता को जिस तरह से छला है उनका यही हश्र होने वाला था।
6: उनका घरेलू मामला है, उनका आपसी मामला है, मियां बीबी का कोई झगड़ा होता है, कोई हस्बैंड वाइफ का झमेला होता है आपके पास पड़ोस में, आप उसमें पढ़ते हैं क्या? पढ़ते तो नहीं है, हम भी नहीं पढ़ते, तो करने दीजिए, उनका घरेलू मामला है। कौन तृणमूल कांग्रेस चोटी चाटा के साथ रहेगा, कौन तृणमूल कांग्रेस बालिश चाटाओं के साथ रहेगा, तो ये उनका मामला है, आपसी मामला है, घरेलू मामला है।
7: आधा इस तरफ चला गया, आधा उस तरफ चला गया, अभी कोई साथ में है ही नहीं। ये तो स्वाभाविक था क्योंकि टीएमसी ऐसा एक, वो तो कोई पर्टिकुलर दल नहीं था, वो ऐसा एक ये था कि ये पारिवारिक एक संस्था थी, तो इसीलिए इसका हालत इतना बुरा हुआ है और भी बहुत बुरा होने वाले, मतलब ममता बनर्जी के पास अभी कोई ऐसा कोई लोग बचे नहीं जो उनके साथ दे सकते हैं। ये लोग इतना, चंद्रिमा भट्टाचार्य वॉज वन ऑफ द क्लोजेस्ट एसोसिएट ऑफ ममता बनर्जी, अभी वो भी छोड़ के चले गए।
1: A massive political storm has erupted in Jammu and Kashmir over a controversial book allegedly cleared for government school libraries. The publication is accused of glorifying terrorists and separatist leaders, describing JKLF terrorist Maqbool Bhatt as a shaheed. It also allegedly presents separatist leaders Syed Ali Shah Gilani, Masarat Alam and Mirwais Omar Farooq in a favourable light and referring to the region as Indian-held Kashmir and Indian-occupied Kashmir. The controversy has triggered fierce backlash, with the BJP calling it an attempt to poison young minds and demand strict accountability.
8: ये जो बुक प्रकाशित हुई है और जिस बुक को जम्मू कश्मीर के शिक्षा विभाग ने अनेक विद्यालय के पुस्तकालयों में वितरित करने का काम किया है, जिस पुस्तक में हत्यारियों को, दोषियों को, आतंकवादियों, अलगाववादियों को, पत्थरबाजों को महिमा मंडित किया गया है, जिन दोषियों को सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाकर उनको आतंकवादी करार दिया था, ऐसे लोगों को इस पुस्तक में प्रकाशित करके शिक्षा की सामग्री बना के जम्मू कश्मीर के उन नौजवान बच्चों के मस्तिष्क में जहर भरने का काम किया है जो देश का भविष्य संवारने के लिए स्कूलों में जाते हैं।
9: जिन आतंकवादियों ने कश्मीर को दहलाया, जिन आतंकवादियों ने 30 साल तक कश्मीर में खून की होली खेली और आप इनको शहीद कहोगे, आप मकबूल भट्ट जो टेररिस्ट है मसरत आलम उसको लेजेंड कहोगे और मकबूल भट्ट को शहीद कहोगे, भारत का पैसा लेके भारत के खिलाफ आप यूज करोगे, भारत का पैसा भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए आप इस्तेमाल करोगे।
10: अफसोस इस बात का है कि हमारी जम्मू कश्मीर की इलेक्टेड सरकार ने जिसने भारत के संविधान की शपथ ली है उसने इसको अप्रूव किया और एक ऑर्डर इशू किया कि ये सभी सरकारी स्कूलों में लाइब्रेरीज में रखी जाएगी, सभी सरकारी कॉलेजेस में। जिस किताब में ऐसा मेंशन है कि मकबूल भट्ट जो एक टेररिस्ट था जो जम्मू कश्मीर को भारत से इलादा करना चाहता था, जो पाकिस्तान के इशारों पर यहाँ टेररिज्म स्टार्ट करना चाहता था और भारत से अलग करना चाहता था, उसको सजाए मौत दी गई जज साहब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करके और उसको शहीद आजम बताया जाता।
1: What began as a case of missing cash has now snowballed into a major scandal involving gold, silver and possible evidence tampering. Ram Mandir donation theft row has shaken the faith of millions. Key accused have started signing and the SIT is now investigating to find the larger players. We are getting you all the details in this report.
11: As the Ram Mandir donation theft probe intensifies, more skeletons are tumbling out of the closet. New revelations are coming to light every single day. In a significant breakthrough, key accused Avinash Shukla has confessed to the crime. Avinash Shukla was confronted with the CCTV footage where he could be clearly seen stealing money. Police found that Avinash bought a car with the stolen money. He got a car registered in his brother's name to avoid suspicion. Avinash Shukla told investigators that all the accused knew each other well and that the money was distributed among them equally. This gang also met regularly near the secluded area of 14 Kosi Parikrama Mark in Ayodhya to divide the stolen amount.
12: Na sirf Avinash Shukla balki chalhawa chori ke sabhi aaropi mile the, sabhi aaropiyon ke beech mein baithakein hoti thi, meeting hoti thi aur inke chalhawa chori ki rakam se hi tamam logon ne संपत्तियां बनाई। लवकुश मिश्रा ने मकान बनवाया, अविनाश शुक्ला ने ये कार खरीदी अपने भाई के नाम पर, यानी कि अभिषेक इस कार को चौथा खरीदार है जिसे चढ़ावा चूरी की रकम से अविनाश ने अपने भाई के नाम पर खरीदा था।
11: The SIT is also probing whether the arrested accused stole gold and silver ornaments from the temple. No gold or silver has been recovered from them. Probe teams have confirmed that around 1300 kilograms of silver and 20 kilograms of gold are currently accounted for in the Mandir treasury. However, the probe is on to find out if the ornaments were stolen and melted into gold biscuits in order to destroy the evidence. The donation theft has ignited a massive political storm. When RSS Chief Mohan Bhagwat was asked about the donation theft, he evaded the question.
13: प्रति आस्था को कुछ लोग धक्का पहुंचा रहे प्रति आस्था को कुछ लोग धक्का पहुंचा रहे
11: समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश

0: are watching India Today.
1: Yes, the battle over the asli TMC, that is escalating with every passing day. In the latest dramatic twist after the Trinamool Bhavan showdown that had happened, another close Mamata Banerjee aide, Chandrima Bhattacharya, who's resigned from the party, exposing further cracks within the TMC. Following that incident at Trinamool Bhavan, Chandrima Bhattacharya claimed Mamata Banerjee called her and accused her of handing over Trinamool Bhavan to the rebels. Chandrima said the remark deeply hurt her and insisted that there was no need for such a statement. Post this, she met with LOP and rebel leader Ritu Pratap Banerjee. Hitting back, TMC Supremo Mamata Banerjee said Chandrima had already expressed her desire to resign. She also claimed Bhattacharya's son had already patched up with the rebel faction, adding that she was unbothered by the resignation and remarking that some people come with baggage. The political turmoil comes after the rebel faction dramatically seized control of Trinamool Bhavan, the party headquarters in Kolkata. Rebel leaders entered the office, held a meeting inside, allegedly locked the gates and installed a new banner declaring Arup Roy as the chairman of the Trinamool Congress.
2: एक घटना हुई है, आप देखे हैं तृणमूल भवन में, तो वहां पर उसके बाद में हमसे ममता जी की बात हुई थी टेलीफोन में, तो वो हमको उन्होंने हमको बोला कि आप दे दिए उनके हाथ में तृणमूल भवन, तो ये हमें बहुत दुख लगा क्योंकि हम तो हर रोज तृणमूल भवन में ठीक टाइम में जाते थे और ठीक टाइम जितना कि हमारा टाइम था वही टाइम पे आते थे और कल भी हम वैसे ही आए
3: এবং আজকেই তার জন্য কাউকে পদত্যাগ করতে হলো। আসল ঘটনা তা নয়, উনি অনেকদিন ধরেই আমাকে বলছিলেন পদত্যাগ করবেন, কারণ ওনার ছেলেরা গিয়ে ছেলে গিয়ে অলরেডি হাত মিলিয়েছেন। আমার তার জন্য কিছু বলার নেই, ভালো বুঝেছে হাত মিলিয়েছে, তাদের লাগেজ ব্যাগে থাকতে পারে, কিন্তু আমি তো হাত মেলাবো না। আপনারা একজন কোথায় গেলেন কি না গেলেন, আই ডোন্ট কেয়ার।
4: देखिए कोई कुछ डिसीजन ले सकता है, लेकिन एक आदमी जो ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर जब थे तब सबसे बड़ा लिस्ट जिसका था इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री का, तब कोई अभिमान नहीं था, अभी अभिमान दिखा रहा है।
5: इश्तेहार देना चाहिए कि हमें सभापति चाहिए। देखिए बंगाल में यदि कोई तैयार हो इसके लिए इंतजार करना चाहिए, क्यों उन्होंने बंगाल को के जनता को जिस तरह से छला है उनका यही हश्र होने वाला था।
6: उनका घरेलू मामला है, उनका आपसी मामला है, मियां बीबी का कोई झगड़ा होता है, कोई हस्बैंड वाइफ का झमेला होता है आपके पास पड़ोस में, आप उसमें पढ़ते हैं क्या? पढ़ते तो नहीं है, हम भी नहीं पढ़ते हैं, तो करने दीजिए, उनका घरेलू मामला है। कौन तृणमूल कांग्रेस चोटी चाटा के साथ रहेगा, कौन तृणमूल कांग्रेस बालिश चाटाओं के साथ रहेगा, तो ये उनका मामला है, आपसी मामला है, घरेलू मामला है।
7: आधा इस तरफ चला गया, आधा उस तरफ चला गया, अभी कोई साथ में है ही नहीं। ये तो स्वाभाविक था क्योंकि टीएमसी ऐसा एक, वो तो कोई पर्टिकुलर दल नहीं था, वो ऐसा एक ये था कि ये पारिवारिक एक संस्था थी, तो इसीलिए इसका हालत इतना बुरा हुआ है और भी बहुत बुरा होने वाले, मतलब ममता बनर्जी के पास अभी कोई ऐसा कोई लोग बचे नहीं जो उनके साथ दे सकते हैं। ये लोग इतना, चंद्रिमा भट्टाचार्य वॉज वन ऑफ द क्लोजेस्ट एसोसिएट ऑफ ममता बनर्जी, अभी वो भी छोड़ के चले गई।
1: A massive political storm has erupted in Jammu and Kashmir over a controversial book allegedly cleared for government school libraries. The publication is accused of glorifying terrorists and separatist leaders, describing JKLF terrorist Maqbool Bhatt as a shaheed. It also allegedly presents separatist leaders Syed Ali Shah Gilani, Masarat Alam and Mirwais Omar Farooq in a favorable light and referring to the region as Indian-held Kashmir and Indian-occupied Kashmir. The controversy has triggered fierce backlash, with the BJP calling it an attempt to poison young minds and demand strict accountability.
8: ये जो बुक प्रकाशित हुई है और जिस बुक को जम्मू कश्मीर के शिक्षा विभाग ने अनेक विद्यालय के पुस्तकालयों में वितरित करने का काम किया है, जिस पुस्तक में हत्यारियों को, दोषियों को, आतंकवादियों, अलगाववादियों को, पत्थरबाजों को महिमा मंडित किया गया है, जिन दोषियों को सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाकर उनको आतंकवादी करार दिया था, ऐसे लोगों को इस पुस्तक में प्रकाशित करके शिक्षा की सामग्री बना के जम्मू कश्मीर के उन नौजवान बच्चों के मस्तिष्क में जहर भरने का काम किया है जो देश का भविष्य संवारने के लिए स्कूलों में जाते हैं।
9: जिन आतंकवादियों ने कश्मीर को दहलाया, जिन आतंकवादियों ने 30 साल तक कश्मीर में खून की होली खेली और आप इनको शहीद कहोगे, आप मकबूल भट्ट जो टेररिस्ट है मसरत आलम उसको लेजेंड कहोगे और मकबूल भट्ट को शहीद कहोगे, भारत का पैसा लेके भारत के खिलाफ आप यूज करोगे, भारत का पैसा भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए आप इस्तेमाल करोगे।
10: अफसोस इस बात का है कि हमारी जम्मू कश्मीर की इलेक्टेड सरकार ने जिसने भारत के संविधान की शपथ ली है उसने इसको अप्रूव किया और एक ऑर्डर इशू किया कि ये सभी सरकारी स्कूलों में लाइब्रेरीज में रखी जाएगी, सभी सरकारी कॉलेजेस में। जिस किताब में ऐसा मेंशन है कि मकबूल भट्ट जो एक टेररिस्ट था जो जम्मू कश्मीर को भारत से इलादा करना चाहता था, जो पाकिस्तान के इशारों पर यहाँ टेररिज्म स्टार्ट करना चाहता था और भारत से अलग करना चाहता था, उसको सजाए मौत दी गई जज साहब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करके और उसको शहीद आजम बताया जाता।
1: What began as a case of missing cash has now snowballed into a major scandal involving gold, silver and possible evidence tampering. Ram Mandir donation theft row has shaken the faith of millions. Key accused have started signing and the SIT is now investigating to find the larger players. We are getting you all the details in this report.
11: As the Ram Mandir donation theft probe intensifies, more skeletons are tumbling out of the closet. New revelations are coming to light every single day. In a significant breakthrough, key accused Avinash Shukla has confessed to the crime. Avinash Shukla was confronted with the CCTV footage where he could be clearly seen stealing money. Police found that Avinash bought a car with the stolen money. He got a car registered in his brother's name to avoid suspicion. Avinash Shukla told investigators that all the accused knew each other well and that the money was distributed among them equally. This gang also met regularly near the secluded area of 14 Kosi Parikrama Mark in Ayodhya to divide the stolen amount.
12: Na sirf Avinash Shukla balki chadhawa chori ke sabhi aaropi mile the, sabhi aaropiyon ke beech mein baithakein hoti thi, meeting hoti thi aur inke chadhawa chori ki rakam se hi tamam logon ne संपत्तियां बनाई। लवकुश मिश्रा ने मकान बनवाया, अविनाश शुक्ला ने ये कार खरीदी अपने भाई के नाम पर, यानी कि अभिषेक इस कार को चौथा खरीदार है जिसे चढ़ावा चूरी की रकम से अविनाश ने अपने भाई के नाम पर खरीदा था।
11: The SIT is also probing whether the arrested accused stole gold and silver ornaments from the temple. No gold or silver has been recovered from them. Probe teams have confirmed that around 1,300 kilograms of silver and 20 kilograms of gold are currently accounted for in the Mandir treasury. However, the probe is on to find out if the ornaments were stolen and melted into gold biscuits in order to destroy the evidence. The donation theft has ignited a massive political storm. When RSS Chief Mohan Bhagwat was asked about the donation theft, he evaded the question. Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav has taken a dig at Chanda Chores by releasing an AI-generated video song.

0: Even saints and seers have expressed concerns over the style of functioning of the Ram Mandir Trust.
1: अयोग्य लोगों को जब आप काम देंगे तो यही परिणाम प्राप्त होगा जो अयोध्या में प्राप्त हुआ है. अयोध्या जैसे धर्म स्थलों को, द्वारका, बद्रीनाथ, तिरुपति जी, इन धर्म स्थलों को परमात्मा की तपोभूमि, ऋषि महर्षियों की तपोभूमि मानते हैं. और सरकार और शासन और नेता लोग उन्हें पर्यटन स्थल मानते हैं. यही मतभेद है.
0: While politics heats up, the SIT continues its probe. With fresh confessions and mounting questions over missing valuables, the investigation will soon be entering a decisive phase. With Santosh Sharma in Ayodhya, Bureau Report, India Today.
2: Ketan Agarwal murder case takes a fresh twist. An alleged Snapchat chat that happened between Sia and her friend that has now come to light. Dated the 25th of May, the chat shows Sia asking her friend to send messages of the front and back of an Aadhaar card to book

0: என் நெஞ்சில் குடியிருக்கும்.
1: For over three decades, he ruled the silver screen like few ever could. But in 2024, Vijay made a choice that changed everything. With the launch of Tamilaga Vetri Karagam, the superstar turned a new page. Path that eventually led him to the highest office in the state. But every new beginning comes with a goodbye. And for Vijay, that goodbye was cinema. Here's what makes the story even more emotional. The final chapter of Talapathy's cinematic journey is still waiting to meet its audience. Jananayagan was meant to be Vijay's grand farewell to the silver screen. Yet, despite the massive anticipation, release plans and fan frenzy, the film has faced multiple delays and is still awaiting its complete theatrical journey. From its title, which translates to People's Leader, to reports surrounding its political themes.
2: Come, let's play a game. In Nilarna Pompadavdanar, India and Kaladilavandavaro.
3: In the plan.
1: Jananayagan has sparked conversations about how closely the film may reflect Vijay's real world image.
4: You are watching India Today.
5: Yes, the battle over the asli TMC that is escalating with every passing day. In the latest dramatic twist after the Trinamool Bhavan showdown that had happened, another close Mamata Banerjee aide, Chandrima Bhattacharya, who's resigned from the party, exposing further cracks within the TMC. Following that incident at Trinamool Bhavan, Chandrima Bhattacharya claimed Mamata Banerjee called her and accused her of handing over Trinamool Bhavan to the rebels. Chandrima said the remark deeply hurt her and insisted that there was no need for such a statement. Post this, she met with LOP and rebel leader Ritha Pratap Banerjee. Hitting back, TMC Supremo Mamata Banerjee said Chandrima had already expressed her desire to resign. She also claimed Bhattacharya's son had already patched up with the rebel faction, adding that she was unbothered by the resignation and remarking that some people come with baggage. The political turmoil comes after the rebel faction dramatically seized control of Trinamool Bhavan, the party headquarters in Kolkata. Rebel leaders entered the office, held a meeting inside, allegedly locked the gates and installed a new banner declaring Arup Roy as the chairman of the Trinamool Congress.
6: एक घटना हुई है, आप देखे हैं तृणमूल भवन में, तो वहां पर उसके बाद में हमसे ममता जी की बात हुई थी टेलीफोन में, तो वो हमको उन्होंने हमको बोला कि आप दे दिए उनके हाथ में तृणमूल भवन, तो ये हमें बहुत दुख लगा क्योंकि हम तो हर रोज तृणमूल भवन में ठीक टाइम में जाते थे और ठीक टाइम जितना कि हमारा टाइम था वही टाइम पे आते थे और कल भी हम वैसे ही आए
7: এবং আজকেই তার জন্য কাউকে পদত্যাগ করতে হলো। আসল ঘটনা তার নয়, উনি অনেকদিন ধরেই আমাকে বলছিলেন পদত্যাগ করবেন, কারণ ওনার ছেলেরা গিয়ে ছেলে গিয়ে অলরেডি হাত মিলিয়েছেন। আমার তার জন্য কিছু বলার নেই, ভালো বুঝেছে হাত মিলিয়েছে, তাদের লাগেজ ব্যাগে থাকতে পারে, কিন্তু আমি তো হাত মেলাবো না। আপনারা একজন কোথায় গেলেন কি না গেলেন, আই ডোন্ট
8: কেয়ার। तब सबसे बड़ा लिस्ट जिसका था इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री का, तब कोई अभिमान नहीं था, अभी अभिमान दिखा रहा है।
9: इश्तेहार देना चाहिए कि हमें सभापति चाहिए। देखिए बंगाल में यदि कोई तैयार हो, इसके लिए इंतजार करना चाहिए कि उन्होंने बंगाल को के जनता को जिस तरह से छला है, उनका यही हश्र होने वाला था।
0: उनका घरेलू मामला है, उनका आपसी मामला है। मियां बीबी का कोई झगड़ा होता है, कोई हस्बैंड वाइफ का झमेला होता है आपके पास पड़ोस में, आप उसमें पढ़ते हैं क्या? पढ़ते तो नहीं है, हम भी नहीं पढ़ते हैं। तो करने दीजिए, उनका घरेलू मामला है। कौन तृणमूल कांग्रेस चोटी चाटा के साथ रहेगा, कौन तृणमूल कांग्रेस बालिश चाटाओं के साथ रहेगा, तो ये उनका मामला है, आपसी मामला है, घरेलू मामला है।
3: आधा इस तरफ चला गया, आधा उस तरफ चला गया, अभी कोई साथ में है ही नहीं। ये तो स्वाभाविक था, क्योंकि टीएमसी ऐसा एक, वो तो कोई पर्टिकुलर दल नहीं था, वो ऐसा एक ये था कि ये पारिवारिक एक संस्था थी, तो इसीलिए इसका हालत इतना बुरा हुआ है। और भी बहुत बुरा होने वाले, मतलब ममता बनर्जी के पास अभी कोई ऐसा कोई लोग बचे नहीं जो उनके साथ दे सकते हैं। ये लोग इतना, चंदिमा भट्टाचार्य वॉज वन ऑफ द क्लोजेस्ट एसोसिएट ऑफ ममता बनर्जी, अभी वो भी छोड़ के चले गए।
5: A massive political storm has erupted in Jammu and Kashmir over a controversial book allegedly cleared for government school libraries. The publication is accused of glorifying terrorists and separatist leaders, describing JKLF terrorist Maqbool Bhatt as a shaheed. It also allegedly presents separatist leaders Syed Ali Shah Gilani, Masarat Alam and Mirwais Omar Farooq in a favorable light and referring to the region as Indian-held Kashmir and Indian-occupied Kashmir. The controversy has triggered fierce backlash, with the BJP calling it an attempt to poison young minds and demand strict accountability.
10: ये जो बुक प्रकाशित हुई है और जिस बुक को जम्मू कश्मीर के शिक्षा विभाग ने अनेक विद्यालय के पुस्तकालयों में वितरित करने का काम किया है, जिस पुस्तक में हत्यारियों को, दोषियों को, आतंकवादियों, अलगाववादियों को, पत्थरबाजों को महिमा मंडित किया गया है, जिन दोषियों को सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाकर उनको आतंकवादी करार दिया था, ऐसे लोगों को इस पुस्तक में प्रकाशित करके शिक्षा की सामग्री बना के जम्मू कश्मीर के उन नौजवान बच्चों के मस्तिष्क में जहर भरने का काम किया है जो देश का भविष्य संवारने के लिए स्कूलों में जाते हैं।
11: जिन आतंकवादियों ने कश्मीर को दहलाया, जिन आतंकवादियों ने 30 साल तक कश्मीर में खून की होली खेली, और आप इनको शहीद कहोगे? आप मकबूल भट्ट जो टेररिस्ट है, मसरत आलम, उसको लेजेंड कहोगे और मकबूल